मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1946 के वैशाख मास की 26वीं तिथि तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय प्रातः की 5:56 में है। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव एवं FM पर एक साथ आरंभ होती है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों

0: द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी

0: एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य वित्त के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत में आज इबादत करेंगे सबसे पहले यीशु मसीह के नाम से। परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत के लिए, उसे सही गलत की पहचान कराने के लिए और जिंदगी खुशगवार गुजारने के लिए भेजे 124,000 पैगंबर, जिनमें एक नाम है ईसा मसीह का, जिन्हें यीशु भी कहते हैं, जिन्होंने बंदों को नेकी की हिदायत की और सही रास्ता दिखाया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आज के कलाकार थे जयश्री, अजीज नासा और मोहम्मद रफी। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: पिताजी ने शरीर पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग पर कहां कहां बैठे थे इसकी याद मुझे आज भी जैसी की वैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, मेरे मन ने उस समय नहीं की थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था, ब्याहने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था, इसलिए उस समय के स्मरण ताज़े हैं। मंडप में बैठे फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधु साथ में रहने लगे। वो पहली रात दो निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। हम दोनों एक दूसरे से डरते थे ऐसा मुझे लगता है, एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। बातें कैसे करना, क्या करना सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है? जहां संस्कार बलवान है वहां सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी के उम्र के थे पर मैंने तो पति की सत्ता

0: चलाना शुरू कर दिया। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पैसे पैसे की या पाई पाई की मिला करती थीं। उनमें दंपति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत तो थी ही कि मैं पढ़े हुए में से जो पसंद आए उसे याद कर लेता था और जो न पसंद आए उसे भूल जाता था। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसी से ये भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहने चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना बहुत कम ही रहती है। पर इन सद विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को भी एक पतिव्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए में से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंच गया। और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी करनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी? मुझे हमेशा ये जानना ही चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकती। ये चीज हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी न जा सकना तो एक तरह की कैद ही हो गई। पर कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहां इच्छा होती वो मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वो अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज बन गई। कस्तूरबाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वो देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी को मिल जाने पर दबाव क्यों सहन करे? अगर मैं उस पर दबाव डालता हूँ तो वो मुझ पर क्यों न डाले? ये तो अब समझ में आ रहा है। उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था।
1: ये थे बापू के विचार और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का

0: ये थी गांधी चर्चा। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज सुनिए तंबाकू का शरीर पर बुरा प्रभाव विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शहजाद खान। आपसे जानकारी ले रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
1: आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। विषय है तंबाकू का शरीर पर हानिकारक प्रभाव। समाज में बहुत सारे लोग विभिन्न रूपों में तंबाकू का सेवन करते हैं। क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे इसे रोका जा सकता है, हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद खान जो कि सलाहकार हैं तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जनपद रामपुर के। तंबाकू का सेवन बहुत पुराने समय से चल रहा है और अभी भी जारी है, किन किन रूपों में इसका सेवन समाज में लोग करते हैं
2: जी? मुख्यतः तंबाकू दो तरीके से प्रयोग होता है, एक जलाने वाला तंबाकू जैसे हम कहेंगे बीड़ी सिगरेट या हुक्का, और एक दूसरा तंबाकू जो मुंह में रखकर इस्तेमाल किया जाता है जैसे खेनी गुटखा या इस समय एक मंजन के तौर पर गुल मंजन जो कि तंबाकू ही है उसका भी प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः ये कुछ फॉर्म है तंबाकू की जो हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाती है समाज में।
1: इसकी आदत क्यों पड़ जाती है, कैसे पड़ जाती है, क्या खाने में रुचिकर होता है या क्या मामला है?
2: जी देखिए, इसमें ना निकोटीन नाम का एक तत्व होता है, निकोटीन से हमें इसका एडिक्शन होता है, हमें इसकी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। करीब 70% लोग इस निकोटीन के कारण ही इसे नहीं छोड़ पाते हैं। निकोटीन एक मादकता देने वाला तत्व है
1: जी,
2: जिसके कारण लोग इसे नहीं छोड़ पाते।
1: और अब बात आती है कि किस उम्र के लोग ज्यादा इससे प्रभावित है, यानी
2: देखिए अगर हम देखें तो इसमें तो बच्चों में भी हमने काफी लोग बच्चे हमें इस तरीके के मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग विशेष तौर पर हमारा इससे ज्यादा प्रभावित है। हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ था जिसे ग्लोबल टोबैको सर्वे कहा गया था, उसमें देखा गया था करीब 34% भारतीय विभिन्न प्रकार के तंबाकुओं का इस्तेमाल करते हैं। इस सर्वे में जो एज देखा गया था जिसको माना गया था 15 वर्ष से ऊपर का माना गया था, तो उसमें चेक किया गया था, तो उसमें 34% भारतीय विभिन्न प्रकार के तंबाकुओं का सेवन कर रहे हैं।
1: ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से हानिकारक है?
2: देखिए बहुत ही हानिकारक है तंबाकू। तंबाकू की कोई भी किस्म, चाहे वो मुंह में रखने वाली किस्म हो या धुएं के रूप में लेने वाली किस्म हो, हर तरीके के तंबाकू और किसी भी मात्रा में भी ये सुरक्षित नहीं है। एक अत्यंत कम मात्रा में लेने वाले भी उसी प्रकार हानिकारक हैं जैसे ज्यादा मात्रा में लेने वाले। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर में मुख्यतः जिसको माना जाता है कैंसर या और बहुत सारी हृदय संबंधी रोग हैं या फेफड़े संबंधी रोग हैं, मुख्यतः 40% कारण तंबाकू बढ़ा देता है शरीर में कैंसर होने के। और जो मुंह में रखने वाली तंबाकू है जिसे हम गुटखा या खेनी के नाम से जानते हैं, वो 95% कारण होता है मुंह के कैंसर का। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हृदय रोग जैसे हृदयघात होना या धमनियों में ब्लॉकेज हो जाना, मस्तिष्क में कहीं ब्लॉक हो जाना, ये बहुत सारे पक्षाघात हो जाना, ये सारी बीमारियां तंबाकू कारण हो सकती हैं।
1: शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, इससे शरीर पर क्या नुकसान होता है। बाद में जब वो समझते हैं तो छोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर उनका कहना ये होता है कि हम छोड़ नहीं पाते हैं।
2: जी बिल्कुल, इसको निकोटीन जैसे मैंने आपको बताया, निकोटीन हमारे शरीर में हमारे दिमाग में निकोटीन रिसेप्टर होते हैं, जब वो एक बार एक्टिवेटेड हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो वो शरीर से मांग करते हैं निकोटीन की, इसीलिए इसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें दृढ़ निश्चय होना बहुत आवश्यक है। आपको जैसे छोड़ना है तो एक दृढ़ निश्चय कीजिए इसको छोड़ने के लिए, और कोई भी शारीरिक कष्ट आता है जैसे कुछ लोग बताते हैं पेट खराब रह रहा है या घबराहट होती है या नींद नहीं आती है, तो इसमें चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और उस पे इसके लिए सलाह लें।
1: ये भी कहा जाता है कि कई स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसे कुछ प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जहां पर नशा या इस प्रकार की प्रवृत्ति से जुड़े लोगों को छुड़ाने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है या कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं।
2: जी बिल्कुल, समस्त चिकित्सा अधिकारी इसके लिए सक्षम है इसकी सलाह देने के लिए, और विशेष तौर पर जितने भी चिकित्सालय हैं हमारे, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला चिकित्सालय हो, यहाँ काउंसलर्स की व्यवस्था की गई है जो कि इसके लिए काउंसलिंग करते हैं, और जिन लोगों को मेडिसिन की जरूरत है उनको चिकित्सक द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है।
1: तंबाकू से बने हुए कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर यह सावधानी भी लिखी होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदायक है। इसके बावजूद भी इसके सेवन करने वालों में मतलब अच्छी खासी कमी देखने को भी नहीं मिली है जितनी उम्मीद की जाती है।
2: जी बिल्कुल, इसमें कोई भी तंबाकू उत्पाद तब तक भारतवर्ष में नहीं बेचा जा सकता जब तक उस पर वैधानिक चेतावनी ना हो। वैधानिक चेतावनी के अंदर एक कैंसर के मरीज का फोटो है और अब एक टोल फ्री नंबर भी है जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उस पर टोल फ्री नंबर।
1: बुराई तो है ही है, एक सामाजिक बुराई भी है, इसलिए सभी लोगों को सहयोग करने की जरूरत है, तभी हम इस समस्या से समाज से लोगों को मुक्त कर पाएंगे। डॉक्टर शहजाद खान जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने।
0: कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शहजाद खान की वार्ता।

कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तंबाकू का शरीर पर हानिकारक प्रभाव विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शहजाद खान। आपसे जानकारी ले रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले सभा के शेष और दूसरी सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:45 पर रोजाना की भांति सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। 7:00 कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता का विषय होगा भारतीय संस्कृति में परिवार का महत्व। वार्ताकार होंगी प्रीति अरोरा। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे हम लेकर हाजिर होंगे 7:31 पर 102.9 मॉर्निंग हिट्स में नए फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे 8:45 पर। प्रेरक प्रसंग में 9:25 पर सुनिएगा राम कृष्ण परमहंस के जीवन से प्रसंग। उर्दू प्रोग्राम 9:30 पर नशर किया जनाब मजहर अली मोहतरमा फरीदा बेगम जनाब आमिर। कार्यक्रम में 11:30 पर एक ही शीर्षक से गीत सुनवाए जाएंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम आप तक पहुंचेगा 12:10 पर। नातों कव्वाली 1:15 पर आप समाप्त फरमाएंगे। आज के फनकार होंगे इफ्तिखार अहमद और साथी। कुमकुम कार्यक्रम में हमारी बहनें सुनेंगी वार्ता सोशल मीडिया स्मार्टफोन और बच्चे विषय पर। ये वार्ताकार होंगी रीना मौर्य। समय याद रखिएगा 12:30 पर। दोपहर 2:30 पर सुनहरा दौर में आप सुनेंगे 2000 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। आज शाम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 5:00 दूसरी सभा के आरंभ में। 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:20 पर किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी फसल चक्र का महत्व। कार्यक्रम लोकमंजरी में फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनेंगे। साथ ही सुकर पालन लाभकारी व्यवसाय विषय पर जानकारी होगी।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे महबूब हुसैन का क्लार्नेट पर बजाया राग अहीर भैरव। सुगम संगीत में 7:31 पर सुनवाई जाएंगी रेखा भारद्वाज की गायी गजलें। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

0: स्पोर्ट्स राउंड अप का कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम राग रंग। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष और दूसरी सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है श्री रामचरित मानस से आज की प्रसंग का। आज सुनिए भाग संख्या 291,
1: एपिसोड नंबर 291, 291।

लंका के लिए कूच करने को तत्पर श्री राम की सेना वानर राज सुग्रीव का आदेश पाते ही गर्जन तर्जन करती प्रस्थान करती है। विशाल रूप धारण कर वानर और रीच वृक्षों तथा पर्वतों का शस्त्र लेकर थल और आकाश मार्ग से चल पड़ते हैं। दिशाएं भयंकर नाद से गूंजने लगती हैं। पर्वत चंचल हो जाते हैं और समुद्र मानो खौलने लगते हैं। श्री राम की सेना सागर पार कर लंका में उतर गई है, ये समाचार सुनकर मंदोदरी आतंकित हो जाती है। वो रावण से विनती करती है कि वो श्री हरि का विरोध छोड़ दें, क्योंकि सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

श्री रामचरितमानस से अभी आप सुन रहे थे प्रसंग, आज सुनी भाग संख्या 291। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: स्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मोंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिम प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के अंतर्गत सुनिए भारतीय संस्कृति में परिवार का महत्व विषय पर वार्ता। वार्ताकार है प्रीति अरोरा।
2: चलिए आज फिर अतीत में खो जाते हैं। जरा याद तो करिए वो गर्मी की रातें, जब बीच आंगन खुले आकाश के नीचे तारों की गिनती करके माँ को सुनाते थे और माँ मंद मंद मुस्कुरा देती थी। भाई बहनों के साथ वो छोटी छोटी बातों पर लड़ना, पापा की उंगली पकड़ वो नुक्कड़ वाली दुकान पर टॉफी लेने जाना, वो दादा दादी की गोद में सर रख कर प्रेरक कहानियाँ सुनना, कितने सुहाने थे वो दिन। ये सब खुशियों के पल, वो यादें कहाँ से पाते हैं हम? परिवार से। भारतीय संस्कृति में परिवार सिर्फ एक इकाई ही नहीं, यह है हमारे संस्कारों की प्रथम पाठशाला, भावनाओं की तिजोरी, जहां हर सदस्य के एहसास सिंचित हैं। परिवार ही वह स्थान है जहां से बच्चा प्रारंभ से ही मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति सीखता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय ग्रंथों की ही बात करते हैं। रामायण, जहां भरत जैसा भाई अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए सिंहासन भी छोड़ देता है। लक्ष्मण का 14 बरस का वनवास सिर्फ भाई के प्रेम की खातिर, ये है परिवार। महाभारत के 5 पांडव अलग अलग स्वभाव के परंतु एकता के सूत्र में पिरोए हुए, जानते हैं क्यों? क्योंकि माता कुंती ने उन्हें संस्कारों में बांध रखा था। अगर हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं तो उन्हें दादा दादी नाना नानी की छत्रछाया में ही पालना होगा, परंतु इसके लिए हमें संयुक्त परिवार की प्रणाली को अपनाना होगा तथा एकाकी परिवारों की खोखली नीति को नकारना होगा। परिवार वह स्थान है जहां प्रत्येक सदस्य स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। किसी भी विपत्ति के आने पर वह डगमगाता नहीं बल्कि आत्मविश्वास से उसका सामना करता है, क्योंकि वह जानता है उसका परिवार उसका हाथ थामे हुए है। भारतीय संस्कृति में परिवार की महत्ता को मैं अपनी स्वरचित पंक्तियों में आप तक पहुंचाना चाहूंगी।

आगा है। परिवार है एक सुंदर बगिया, हर एक फूल इसका सुगंधित है। जहां विश्वास की खुशबू महके, आंगन एहसासों से मंडित है। परिवार है एक सुंदर बगिया, हर एक फूल इसका सुगंधित है। जहां विश्वास की खुशबू महके, आंगन एहसासों से मंडित है। दादा दादी की छाया तले संस्कारों का सुंदर स्वर्ग बना है। दादा दादी की छाया तले संस्कारों का सुंदर स्वर्ग बना है। कभी खत्म ना हो प्यार जहां, भावनाओं का इसमें मर्म रमा है। कभी खत्म ना हो प्यार जहां, भावनाओं का इसमें मर्म रमा है। भावनाओं का इसमें मर्म रमा है। विश्वासों की नींव पर ये खड़ा परिवार तो मंदिर सम होता है। विश्वासों की नींव पर ये खड़ा परिवार तो मंदिर सम होता है। चोट लगे यदि एक सदस्य को, पूरा परिवार आहत होता है। चोट लगे यदि एक सदस्य को, पूरा परिवार आहत होता है। लेकिन वर्तमान में रिश्तों की चमक मोबाइल की चमकती स्क्रीन के आगे फीकी पड़ती जा रही है। संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। खाने की मेज पर हम एक साथ तो होते हैं, फिर भी हमारे मन अलग-अलग होते हैं। अगर रिश्तों की हंसी फिर गूंजने लगेगी, बुढ़ापे में कपकपाते हाथों को फिर बच्चों का सहारा मिल जाएगा। बस जरूरत है तो सिर्फ रिश्तों की जड़ों में अपनेपन की खाद डालने की, जिससे रिश्तों के वृक्ष पर लगे फल अधिक मिठास भरे हो सके। परिवार सुनने में तो सिर्फ एक शब्द है, पर इसके आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। इस पारिवारिक दिवस पर फिर हम अपनों को गले लगाते हैं, बड़ों के आशीर्वाद तले फिर अपने कांटों भरे पथ को सुगम बनाते हैं। माना कि हमारे सपनों की पतंग को बहुत दूर तक उड़ जाना है, लेकिन उसकी डोर परिवार की चरखी में बंधी रहनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत छोटी है जिंदगानी, बहुत छोटी है जिंदगानी, इसे परिवार संग बिताइए। बहुत छोटी है जिंदगानी, इसे परिवार संग बिताइए। ईश्वर का श्रेष्ठ उपहार है ये, इसकी गरिमा को समझ जाइए। ईश्वर का श्रेष्ठ उपहार है ये, इसकी गरिमा को समझ जाइए। भारतीय संस्कृति में परिवार सदस्यों का एक समूह ही नहीं, बल्कि जीवन की नींव तथा सामाजिक संरचना की प्राथमिक इकाई है। संगठित परिवार ही संगठित देश की आधारशिला है। परिवार में मनाए जाने वाले त्योहारों की एक अपनी ही रौनक होती है। दीपावली के दियों की चमक अधिक खूबसूरत लगती है। होली के रंग पक्के हो जाते हैं और बहनों के द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र का धागा और भी मजबूत हो जाता है जब बहन अपने संयुक्त परिवार में आती है। चाचा चाची ताई दादी सबसे मिलकर अपने मन की बात करना उसे बड़ा ही सुहाता है। परिवार में बड़ा ही सुहाना होता है वो दिन जब माँ सुबह सुबह तुलसी के आगे दीपक जलाती है, मंदिरों में घंटी बजाती है, तो घर का माहौल बड़ा ही पवित्र हो जाता है। सभी सदस्यों का जल्दी जल्दी एकत्रित होके आना, यही तो परिवार है। घर के किसी भी सदस्य के खाना ना खाने पर माँ बेचैन हो जाती है। ये सब भावनाएं परिवार से ही संभव हैं। परिवार है तो हमारा अस्तित्व है, इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं। परिवार वो स्थान है जहाँ पारिवारिक सदस्यों का ही नहीं बल्कि अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत होता है। भारतीय संस्कृति में परिवार का मूल मंत्र है अतिथि देवो भवा तथा वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात मेहमान ही ईश्वर हैं तथा पूरी धरती ही हमारा परिवार है।

कार्यक्रम में विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भारतीय संस्कृति में परिवार का महत्व विषय पर जानकारी। वार्ताकार थी प्रीति अरोरा। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। APJ अब्दुल कलाम। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे।

अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है। लक्ष्य हमेशा महान होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अपनी पहली सफलता के बाद आराम ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से लोग ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल भाग्य थी। एपीजे अब्दुल कलाम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की, कहा संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई।
4: इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
5: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, आपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि

0: के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
4: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित किया।
1: कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
5: निराश्रित गोवंश भी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और

0: का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध संख्याओं को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
1: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा। कबूल कीजिए प्यार भरा आदाब नमस्कार। की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत नगमे के साथ।

दोस्तों, कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं सबसे पहले आज के इतिहास की। आज 15 मई है। आज के इतिहास में भारत और विश्व में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म और पुण्यतिथि के लिए भी ये मशहूर है। 1756 में इंग्लैंड ने फ्रांस से 7 वर्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था। 1995 में एलिसन गारग्रीव्स बिना ऑक्सीजन

ऑक्सीजन सिलेंडर की एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 1930 में एलेन चर्च दुनिया की पहली एयर होस्टेस बनी, जिन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस में अपनी सेवा प्रदान की। 1948 में आज ही के दिन ब्रिटिश जनादेश की समाप्ति के बाद मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक और सऊदी अरब की सेनाओं ने इसराइल पर हमला किया था। 1998 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 3 अंतरिक्षयान लॉन्च किया। कुवैत सरकार ने महिलाओं को संसदीय चुनाव में मतदान करने का अधिकार 1999 में आज ही के दिन दिया था। 2008 में भारतीय मूल की मंजुला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी। 1907 में सुखदेव थापर का जन्म हुआ, जिनको भगत सिंह राजगुरु के साथ फांसी दी गई। 1817 में प्रसिद्ध समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। भारतीय हास्य कलाकार जॉनी वॉकर का जन्म भी 1923 में आज ही के दिन हुआ। आज ही के दिन मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था 1965 में। 1993 को भारत के पहले आर्मी कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एस करियप्पा का निधन हुआ था। श्रोताओं, ये था आज का इतिहास और अब सुनिए कुछ संदेश।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: साथियों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। आकाशवाणी के 90 साल

0: हवाओं में तैरती आवाज हूं मैं, हर दिल की धड़कन का साज हूं मैं। कभी खबरें, कभी नगमे, कभी अपनों की बातें, हाँ सदियों पुराना आकाशवाणी का अंदाज हूं मैं। दोस्तों, हमारा और आपका रिश्ता आकाशवाणी के जरिए कितना अटूट और पुराना हो गया है, ये आप और हम सभी जानते हैं। ये सिर्फ समय नहीं है बल्कि एक साधना है हमारे लिए। स्टूडियो की ये चार दीवारी कभी तंग महसूस हुई ही नहीं, क्योंकि हमारी आवाज़ के पंख तो सरहदों के पार, पहाड़ों की चोटियों और गांवों की पगडंडियों तक हमारे श्रोताओं के साथ हुए। स्टूडियो की ये लाल बत्ती जिस पर ऑन AIR लिखा है, ये सिर्फ एक संकेत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जैसे ही माइक्रोफोन ऑन होता है, हम अपनी दुनिया को छोड़कर आपकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। आपने हमें कभी देखा नहीं, सिर्फ हमारी आवाज से ही हमें और हमारे मूड को पहचान लेते हैं। आज आवाज में खनक है तो आज थकी सी लग रही हैं, ये सब आप जब हमें खतों में लिखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप हमें कितना सुनते हैं। दोस्तों, हमने बदलते दौर को देखा है, एनालॉग के भारी स्कूल से लेकर आज के डिजिटल क्लिक तक, लेकिन जो नहीं बदला है वो है शब्दों की गरिमा और आवाज का वो जादू। जब हम कहते हैं ये आकाशवाणी है तो मानिए दिल में गर्व की एक लहर दौड़ जाती है। आवाज का ये सफर यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि जब तक आप जैसे सुनने वाले हैं तब तक हम सुनाने वाले हैं। दोस्तों, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, जिसको 90 वर्ष हो चले हैं। इसी खुशी में आकाशवाणी मना रहा है सुनहरा सफर, जिसमें बात होगी 9 दशकों की उस अटूट यात्रा और सम्मान की, जिसने भारत के हर गांव और हर शहर को एक सूत्र में पिरोया है। सुरों की महफिल हो या खेतों की खलियानों की बातें, समाचारों की विश्वसनीयता हो या खेलों का रोमांच, आकाशवाणी हमेशा आपके साथ रही है। आइए इस 90 साल के सफर की सुनहरी यादों को एक बार फिर से जिए। आकाशवाणी के सुनहरे सफर में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ से उनके विचार।
1: भारत में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी स्थापना के 90 वर्षों में न केवल प्रसारण के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक जीवन में भी गहरा योगदान दिया है। सुरमई सफर के 90 वर्ष केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक यात्रा का सम्मान है जिसने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। आकाशवाणी के सुरमई सफर के 90 साल केवल एक संस्थान की वर्षगांठ नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के एक जीवंत अध्याय का उत्सव है। ये यात्रा हमें उस दौर में ले जाती है जब रेडियो संचार का सबसे प्रभावी माध्यम था और आकाशवाणी ने देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाई। आकाशवाणी की शुरुआत सन 1936 में हुई। स्वतंत्रता से पूर्व ये सीमित दायरे में कार्य करता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका तीव्र गति से विकास हुआ। 1857 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। देश के दूरदराज क्षेत्रों तक रेडियो प्रसारण पहुंचाया गया। विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी केंद्रों ने अहम महत्वपूर्ण कार्य किए। आकाशवाणी ने देश की एकता को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन केंद्रों से राष्ट्रीय कार्यक्रमों, समाचारों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जोड़ा। आपदा, युद्ध और संकट के समय इन केंद्रों ने सटीक जानकारी उपलब्ध कराई। इसके साथ ही आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति को सजोने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और नाटक का प्रसारण विविध भारती

जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों की शुरुआत, नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना जैसे अहम कार्य आकाशवाणी द्वारा किए गए। इसके साथ रेडियो का शिक्षा का सशक्त माध्यम बनाया गया। स्कूल प्रसारण और शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि स्वास्थ्य और विज्ञान से जुड़े अनेक कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष जानकारी इन केंद्रों से उपलब्ध कराई गई। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने किसानों और ग्रामीण जनता तक जानकारी पहुंचाई, मौसम, खेती और नई तकनीकों की जानकारी, सरकारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार, ग्रामीण समस्याओं पर चर्चा, कुछ ऐसे अहम कार्य थे जो आकाशवाणी ने 90 वर्षों में किए हैं। इसके साथ समाचार प्रसारण और उसकी विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आकाशवाणी केंद्रों ने निष्पक्ष और त्वरित समाचार, विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी, ऐसे तमाम कार्य ऑल इंडिया रेडियो से किए गए। इसके साथ समय के साथ आकाशवाणी ने तकनीकी विकास को भी अपनाया। एफएम चैनलों की शुरुआत की गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्स विकसित किए गए, इंटरनेट, रेडियो और पॉडकास्ट जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया। आकाशवाणी ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी प्रयास किया। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जन जागरूकता अभियान, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संदेश, तमाम ऐसे कार्य आकाशवाणी केंद्रों द्वारा किए गए। 90 वर्षों की इस यात्रा में देश के आकाशवाणी केंद्रों ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, तकनीकी बदलाव, नए माध्यमों का उदय और श्रोताओं की बदलती रुचियां। फिर भी इन केंद्रों ने अपनी मूल भावना, सांस्कृतिक संरक्षण और जनसेवा को बनाए रखा। अनेक प्रसिद्ध कलाकारों, कवियों और वक्ताओं ने यहां से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे ये केंद्र प्रतिभाओं का एक महत्वपूर्ण मंच बना। आकाशवाणी का 90 वर्षों का ये सुरमई सफर भारतीय समाज की धड़कन के साथ जुड़ा हुआ है। इससे न केवल सूचना और मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया।

आकाशवाणी के 90 साल के इस सुनहरे सफर में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अब्दुल लतीफ के विचार। और अब बात करते हैं आज के विशेष दिवस की। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। आज 15 मई है। दोस्तों, परिवार उस सुरक्षा घेरे, उस इकाई का नाम है जिसमें लोग प्यार मोहब्बत एक इत्तेफाक से रहते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के काम आना और सबकी खुशियों में दर्द में साथ रहना ही एक परिवार की खूबी है। परिवार इंसान के मान सम्मान जान को सुरक्षित करता है। परिवार के लोग एक दूसरे से खून के रिश्तों से जुड़े होते हैं, साथ ही एक बंधन होता है भावनाओं का, संस्कारों का। एक दूसरे पर विश्वास और लगाव ही इन रिश्तों को जोड़े रखता है।

फैमिली इज द इंटरनल स्कूल ऑफ द सोशल लाइफ। परिवार इंसान का पहला स्कूल है जिसमें रहकर वो सब कुछ सीखता है। भाषा, व्यवहार, नैतिकता, संस्कृति सब कुछ एक वक्त को दुनिया साथ छोड़ देती है, मगर परिवार हमारे बुरे वक्त में ताकत बनकर खड़ा हो जाता है, हमें हौसला देता है। आर्थिक हो या मानसिक तौर पर हमें परिवार से सुरक्षा मिलती है। आजकल लोग संयुक्त परिवार के बजाय एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं दोस्तों, लेकिन वो कितना नुकसानदेह है ये सबको तब पता चलता है जब एकल परिवार में रहा जाता है। इसमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवार में अनुशासन, सम्मान, प्रेम, त्याग की भावनाएं जन्म लेती हैं। ऐसे परिवार में सुख, शांति और अपनापन होता है। आज 15 मई है, आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 के प्रस्ताव के बाद हुई, 1994 से हुई थी। ये दिन परिवार के प्रति प्रेम, सहयोग और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। परिवार से जुड़े आर्थिक सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता करता है। दोस्तों, परिवार हमेशा साथ निभाता है, चाहे वक्त कैसा भी गुजरे, चाहे हमारी छोटी बड़ी गलतियां हों, उन सब पे पर्दा डालकर हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है।

दोस्तों अब बात करें क्रांतिकारी सुखदेव जयंती पर। सुखदेव थापर का जन्म पंजाब के शहर लुधियाना में हिंदू खत्री परिवार में 15 मई 1907 को श्री रामलाल थापर और श्रीमती रली देवी के घर हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था, भगत सिंह का मार्गदर्शन किया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 को एक साथ फांसी पर लटकाया गया था। इनके बलिदान को आज भी देशवासी सम्मान की नज़र से देखते हैं। बचपन से ही देश की आज़ादी का सपना आँखों में पाले थे सुखदेव। सुखदेव ने महात्मा गांधी के नाम एक अंग्रेजी पत्र लिखा था जो गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में था, जो साफ लफ्जों में अपने विचार व्यक्त करते हुए गांधी जी के को अवगत कराया था कि उनका उद्देश्य बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं बल्कि देश के हित के लिए हम क्रांतिकारी कितनी भी हद तक जा सकते हैं। सैंडर्स को योजना बनाकर मारने के दंड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों ऐसे महान देशभक्त वीर सिपाही बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। ऐसे देशभक्तों पर, क्रांतिकारियों पर हमारा शत शत नमन।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाओ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। UAE के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।
3: विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
4: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन

0: बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ

0: मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sandor World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supply to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Bint Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत की जेरे सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सेंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन-उल-अक़वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% जरूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू ज़हबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमूई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों मुमालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिले तश्दीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तिजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकतदारी अब कुदरती गैस, काबिले तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजहबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग

0: रहे हैं, जिससे बाहमी तिजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से एलएनजी तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत यूएई शराकतदारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तिसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वजराए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फरोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वजराए खारजा की मीटिंग के दौरान हुई, जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वजराए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमनो सलामती आलमी इस्तेकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़कर 97.77 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपए से बढ़कर 90.67 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106.68 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की 93.14 रुपए फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.74 रुपए, जबकि फी लीटर डीजल 95.13 रुपए हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटेरियल दरामद करने की इजाजत देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाजतनामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
2: DGFT ने पहली दफा दरखास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीक नामा उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें पेशगी तस्दीक नामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुतालिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नजरसानी शुदा मुसविदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत व तिजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में जवाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था, जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन जवाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अदविया एंटीमाइक्रोबियल से पाक हों। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा पांचवें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारी प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मजकूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराए ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोजा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर जिला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर जिले का मशहूर मेला है, जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमाई मौसमियात ने अंडमानो निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का ये पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारिजा इजलास को सफे अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के लिए कदम उठाएं एस जयशंकर। मुल्क में SIR के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंतखाबी कमीशन ने 16 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी जामे नजरसानी कराने का फैसला किया। अखबारात ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद इन्हसारी पर जोर देने के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के मुअस्सर इकदामात को भी नुमाया जगह दी है। अखबारात में शाया होने वाली बैनुल अक्वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा, शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन के तल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम हैं।
1: और अब आखिर में खास

0: आज खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत की जेरे सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 में हैं। अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

शान और अनुष्का मनचंदा की आवाजों में सुनिए ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम

0: आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का राम
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है SM सभा का।
2: मिर्जापुर में जनगणना 2027 की प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य चलाया जा रहा है। आम जनता द्वारा खुद से स्वगणना कर लेने से आपका एवं प्रगणन को सुविधा एवं समय की होगी बचत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मिर्जापुर के सभी नागरिकों से अपील किया है कि जनगणना 2027 को सटीक और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वगणना पोर्टल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए स्वगणना पोर्टल पर पंजीयन करते हुए अपने मकान की गणना की प्रविष्टि पूर्ण करें। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार।
3: स्वगणना कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से sc.census.gov.in वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हुए अपने मकान के बारे में जो उसमें प्रश्न दिए गए उनके उनका चयन करते हुए अपने उसको स्वयं गणना कर सकता है। उसके बाद जो ID से जनरेट होगी वो SC ID को जब प्रगणक घर पर जाएंगे तो उनको ID बताएंगे तो प्रगणक पर उनका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, तो जिससे एक उस समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
2: मिर्जापुर में समूह की महिलाओं को बागवानी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं को नर्सरी स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इतनी ही धनराशि समूह की महिलाओं को स्वयं लगानी होगी, जिससे समूह की महिलाएं फल सब्जी और विभिन्न प्रजाति के फूलों की नर्सरी को तैयार कर आसानी से बेच सकेंगी। इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाएं अधिक रूप से मजबूत भी होंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब ग्रामीणों को बागवानी के लिए फल फूल और सब्जी का पौधा खरीदने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं के माध्यम से एक नर्सरी स्थापित कराई जाएगी। लगभग 17 बिस्वा में स्थापित की जाने वाली नर्सरी पर कुल 22 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 50% धनराशि उद्यान विभाग से समूह की महिलाओं को अनुदान मिलेगा। वहीं शेष 11 लाख रुपए समूह की महिलाओं को खर्च करना होगा। समूह की महिलाएं शासन से नर्सरी के लिए मिलने वाली धनराशि से नर्सरी में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नर्सरी वाली भूमि के चारों तरफ बाड़ बनवा सकेंगी। इसके अलावा नर्सरी के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उसी पैसे से विकसित किया जाएगा। NRMM की इस योजना से समूह की महिलाओं को न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। मिर्जापुर के परिषदी सहायता प्राप्त राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बनाने के बाद परोसने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। इसके लिए सभी प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भोजन बनने के बाद व परोसने से पहले प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी उस भोजन को चखेंगे, उसकी गुणवत्ता आदि की जाँच करेंगे। इसके बाद ही बच्चों को वह भोजन परोसा जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति जी ने गत दिनों मिर्जापुर में बनने वाले मंडली होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ पर्यटन वाले जनपदों में होमगार्ड विभाग का निरीक्षण गृह बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा प्रदेश के हर थाना में होमगार्ड के लिए दो दो कक्ष का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। होमगार्ड मंडली प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों के लिए 3 लाख बीमा राशि को 5 लाख रुपया कर दिया है। गत दिनों लखनऊ में आयोजित सृजन अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम में मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिद्धि के शिक्षक दयानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से निस्तारण में माह अप्रैल में मिर्जापुर को प्रदेश में जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत तौफिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश सिंह के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी IGRS नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRS

0: आरएफ के माध्यम से प्राप्त होने वाली जान शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। एकीकृत शिकायत के निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2026 में जारी रैंकिंग में जनपद मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
1: मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख है सावन कुमार श्रीवास्तव का।
2: सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगहबानी अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों और ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर स्थायी कैमरा और शौचालय के निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर एसएसपी 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंजिंग रही है। सीमा पर निगहबानी और अच्छी तरह से हो सके इसके लिए पहले फेज में सीमा के कुछ चिन्हित स्थानों पर 32 की संख्या में उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सुनने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे जिले के सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने शिरकत की और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिक्षा मित्र की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से लंबित इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। भारत की 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के आवास और कार्यालय पर स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद ने अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर जनगणना आईडी प्राप्त की और लोगों से मोबाइल के जरिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना था और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां से नेपाल तक गाड़ियां जाती हैं जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जी एन द्वारा ककरही टड़िया गायघाट सड़क का निरीक्षण किया गया। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ था। निरीक्षण के दौरान जगह जगह सड़क में पैच पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैच की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कमल किशोर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शोहरतगढ़ की टीचर्स कॉलोनी से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर पंचायत कार्यालय होते हुए शोहरतगढ़ के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दोबारा टीचर्स कॉलोनी में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल पारित न होने से आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी की। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में मत डालकर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडिया ने हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग। आज सुनिए रामकृष्ण परमहंस के जीवन से ये प्रसंग।

आज का प्रेरक प्रसंग स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस करुणा और स्नेह की प्रतिमूर्ति, दया के सागर थे। एक बार मथुरा बाबू नामक सज्जन उनसे मिलने आए। उन्होंने प्रस्ताव रखा, आइए आपको नाव में घुमा लाएं। नदी पार करके वो लोग राणा घाट के पास कलाई घाट में गरीबों की बस्ती में पहुंचे। वहां के लोगों की दीनहीन दशा देखकर परमहंस रो उठे। वो मां काली के परम भक्त थे। मां काली का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मां तेरे रहते तेरे इतने बेटे बेटियां भूखे नंगे और दुखी, मां तेरे संसार में इतना दुख। मथुरा बाबू परमहंस का मन जानते थे। फिर वो अकेले ही शहर लौटे। बाजार से उन्होंने गरीबों के लिए नए वस्त्र और भोजन खरीदे। फिर लौटे उसी बस्ती में। परमहंस अब भी मां का नाम लेकर रो रहे थे। जब मथुरा बाबू ने सभी को अन्न और वस्त्र दे दिए, तब कहीं जाकर परमहंस शांत हुए और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, मां एक तू ही। उन्हीं के जीवन का एक और प्रसंग है। एक बार जब तोतापुरी श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसे ना होते तो मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक कैसे ठहरता। तोतापुरी की विशेषता थी कि वो कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं ठहरा करते थे, परंतु असाधारण शिष्य पाकर वो 11 महीने तक दक्षिणेश्वर में ही रहे। इस बीच गुरु और शिष्य में एक मनोरंजक द्वंद खड़ा हो गया। तोतापुरी निर्गुण सत्ता में विश्वास रखते थे और स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस सगुण की सत्यता को मानते थे। एक दिन शारीरिक कष्ट ने तोतापुरी को भीतर तक इतना झकझोर दिया कि उनका मन निर्विकल्प समाधि में लग न सका और वो गंगा में डूबने को उद्यत हो गए। गंगा की ओर चलते चलते उन्हें कहीं भी डूबने के लिए गहरा जल नहीं मिला। तोतापुरी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, ये कैसी विडंबना है, क्या गंगा का सारा जल सूख गया है। इतने में साक्षात रूप से मां प्रकट हुई और उनको यह अनुभव हुआ कि निर्गुण और सगुण में कोई मतभेद ही नहीं रहा। मां की कृपा दृष्टि द्वारा उनके सारे दुख और भ्रम का अंत हो गया और वो दक्षिणेश्वर लौट आए। तोतापुरी ने स्वीकार कर लिया कि उनका ज्ञान पहले अधूरा था, वो अब पूर्ण हुआ है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्री राम कृष्ण को परमहंस कहकर संबोधित किया। दक्षिणेश्वर से प्रस्थान करने से पहले उन्हें ये एहसास हुआ कि वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभेद्य है, ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। कभी कभी श्री राम कृष्ण की बाह्य चेतना इतनी शून्य हो जाती थी, सन्यासी लोगों को भोग विलास से दूर रहना पड़ता है, परंतु श्री राम कृष्ण की बात ही कुछ और थी। उन्होंने अपनी माता के दुखों के भय से उन्हें बिना बताए ही संन्यास लिया था। श्री रामकृष्ण ने जब अपनी पत्नी को बुलाया तो भैरवी सन्यासिनी को लगा कि श्री रामकृष्ण का पत्नी से इस प्रकार घनिष्ठता बढ़ाना उचित है। यद्यपि भैरवी सन्यासिनी के प्रति श्री रामकृष्ण की असीम श्रद्धा थी, परंतु वो उनकी सभी बात मानने को तैयार नहीं थे। वो वही कार्य करते थे जो उनको सही लगता था। श्री रामकृष्ण की पत्नी ने जब ये देखा कि उनके पति भैरवी सन्यासिनी में श्रद्धा रखते हैं, तो उन्होंने भी भैरवी सन्यासिनी को अपनी सास के समान आदर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार एक किस्सा सुनाया था कि एक योगी अपने गुरु के पास गया, कहने लगा, मैंने 14 वर्ष तक जंगल में रहकर योगाभ्यास किया है, अब मैंने पानी के ऊपर चलने की दैवीय शक्ति प्राप्त कर ली है, मेरी योग साधना सफल हुई। गुरु ने उत्तर दिया, तुमने क्यों 14 वर्ष का व्यर्थ कष्ट झेला, 1.5 पैसे में मांझी तुम्हें पार पहुंच

0: प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रामकृष्ण परमहंस के जीवन से ये प्रसंग। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेशी खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम को लेकर आपके मेजबान फरीदुल्लाह खान
2: और आयशा राहत
1: हाजिर हैं सलामे खुलूस के साथ।
3: समीन आज के इस प्रोग्राम में यानी जुमे के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं नातिया नशिस्त। तो आज इस खूबसूरत नशिस्त को शुरू करते हैं बारगाह रिसालत मआब में नजराने अकीदत पेश करने के लिए। हमारे मुअज्जिज़ मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। पहले उनका हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं जनाब मज़हर अली, मोहतरमा फरीदा बेगम और जनाब आमिर रब्बानी। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की ये नातिया नशिस्त। आप सभी मेहमान का हमारे स्टूडियो में समीमे कल्ब से खैर मकदम है। सबसे पहले मैं दावत सुखन दूंगी मज़हर अली साहब को कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं।
4: नाते पाक का मतला मुलाहजा कीजिए।
3: अता

0: हर जगह कारोबार उनका है,
1: सुभान अल्लाह।
0: हर जगह

0: रोजे महशर वो बख्शवा
1: रोजे महशर वो बख्शवा लेंगे।
0: रोजे महशर वो बख्शवा लेंगे, बस वहाँ इख्तियार उनका
1: बेशक
0: है,
1: बेशक
0: बस वहाँ इख्तियार उनका है। शेर मुलाहिदा करें,
1: अतः
0: अपनी उम्मत के वास्ते कितना

0: बेशक बेशक,
1: शेर मुलादा करें।
0: इनायत।
1: सबसे बेहतर है वो जमाना,

मतलब कुछ शेर और मुलायजा कीजिए। जुल्फों की महक वल्लैल सजा, जुल्फों की महक

0: उस हुस्ने दो आलम के आगे, उस हुस्ने दो आलम के आगे कुछ भी तो नहीं है। जोहरा जबी शेर मुलायजा करें,
1: इनायत
0: वो जिसका तकल्लुफ

0: है जिसका उस रिफअत को पहुंचा है कोई, आजिज है जहां जिबरीले
1: बहुत खूब।
0: अमीन उस रिफअत को पहुंचा।

0: युवती का फतरवा जिससे कहा, दिलवाया जिसे बख्शिश का
1: बेशक
0: यकीन। जुल्फों की महक वल्लैले सजा, चेहरे की दमक खुर्शीदे मुबीन। और ये शेर बतौर खास,
1: इनायत।
0: आलिम हो के फाजिल हो कोई, हाजी हो नमाजी हो कितना, आलिम हो के फाजिल

0: कितना सरकार से जिसको इश्क नहीं कुछ भी वो नहीं, कुछ
1: बहुत खूब,
0: भी वो
1: बहुत खूब।
0: नहीं। जुल्फों की महक वल्ले ले सजा, चेहरे की दमक खुर्शीदे मुबीन। और ये मक्ता रूपोश रूपोश है।

0: दानशीन जुल्फों की महक वल्लैले सजा चेहरे की दमक खुशी दे मुबी।
1: बहुत खूब बहुत खूब। जुल्फों की महक वल्लैले सजा चेहरे की दमक खुर्शीद मुबीं, उस हुस्न दो आलम के आगे कुछ भी तो नहीं है जोरा जबी। ऐसे ही बेशकीमती नातिया कलाम के साथ हमारे साथ थे मज़र अली साहब। सामिन, ये शमाए अदब अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। एक और मुतबर शायरा जो हमारे दरमियान हैं वो हैं फरीदा बेगम साहिबा। मैं उनसे इल्तिमास करूँगी कि आप अपने कलाम से हमें नवाजें। फरीदा बेगम,
2: शेर पेश खिदमत है
1: इनायत।
2: जहाँ में जिस घड़ी तशरीफ आपकी आई, जहाँ में जिस घड़ी तशरीफ आपकी आई, गुलाब हंसने लगे वज़्द में कली आई।
1: सुभान अल्लाह।
2: गुलाब हंसने लगे वज़्द में कली आई। और शेर मुलाहज़ा कीजिए। सितम पे सब्र जफाओं पे खामोशी आई, सितम पे सब्र जफाओं पे खामोशी आई, बिलाल जैसी कहाँ सबको आशिकी आई।
1: सुभान अल्लाह।
2: बिलाल जैसी कहाँ सबको आशिकी आई।
1: बहुत खूब।
2: तमाम जिस्म उमैया ने कर दिया जख्मी, तमाम जिस्म उमैया ने कर दिया जख्मी, जुबान से फिर भी सदाए नबी नबी आई। जुबान से फिर भी सदाए नबी नबी आई। और मुलाहिजा कीजिए।
1: इनायत।
2: जहां मैं जबरो तशद्दुद का बोल बाला था, जहां मैं जबरो तशद्दुद का बोल बाला था, हुजूर आए तो दुनिया में जिंदगी आई।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: हुजूर आए तो दुनिया में जिंदगी आई, बस उनके रहमो करम पर ही अब नजर है मेरी, बस उनके रहमो करम पर ही अब नजर है मेरी, तमाम उम्र कहाँ मुझको बंदगी आई।
1: बहुत उम्दा।
2: तमाम उम्र कहाँ मुझको बंदगी आई। और शेर मुलाहिजा कीजिए।
1: इनायत।
2: अंधेरा कुफ्र का दुनिया से दूर होने लगा, अंधेरा कुफ्र का दुनिया से दूर होने लगा, जहाँ ने शिर्क में ईमा की रोशनी आई।
1: बेशक।
2: जहाँ ने शिर्क में ईमा की रोशनी आई, मलाइका ने कहा आमना तेरे घर में, मलाइका ने कहा आमिना तेरे घर में, उतर के दोनों जहाँ की शहंशही आई।
1: बहुत अच्छा।
2: उतर के
1: अच्छा
2: दोनों जहाँ की शहंशही आई। और ये भी मुलाहज़ा कीजिए।
1: इनायत।
2: खुदा का क़ुर्ब मिला है नबी अकरम को, खुदा का क़ुर्ब मिला है नबी अकरम को, मैसर ऐसी किसी को पयंबरी आई, मैसर ऐसी किसी को पयंबरी आई। अमल नबी की हिदायत पे जो न कर पाए, अमल नबी की हिदायत पे जो न कर पाए, सब ऐसे लोगों के हिस्से में गुम रही आई।
1: बेशक बेशक।
2: सब ऐसे लोगों के हिस्से में गुम रही आई आई। दरूद पाक की महफिल सजाई थी ऐज़िया, मकता है
1: जीना।
2: दरूद पाक की महफिल सजाई थी ऐज़िया, फिर इसके बाद कहाँ घर में मुफलिसी आई।
1: सुभान
2: अल्लाह। इसके बाद कहाँ घर में मुफलिसी आई।
1: बहुत खूब।
2: एक और नाज़ शरीफ के कुछ अशार मुलाहिज़ा कीजिए। हर समत नज़र आता है एक नूर फजा में, हर समत नज़र आता है एक नूर फजा में,

0: खुर्शीद की किरणें हैं तेरी जुल्फ़े दुता में, खुर्शीद की किरणें हैं तेरी जुल्फ़े दुता में। क्या मुझको कहीं दश्ते मदीना ने पुकारा, क्या मुझको कहीं दश्ते मदीना ने पुकारा। या रब जो है पैहम सी सोजिश कफ़े पा में,
1: बहुत अच्छा है।
0: या रब जो है पैहम सी सोजिश कफ़े पा में। और शेर मुलाहज़ा कीजिए,
1: इनायत
0: ये खाक नशीनी ये दो आलम पे हुकूमत, ये खाक नशीनी
1: ये दो
0: ये दो
1: आलम पे
0: आलम पे
1: हुकूमत।
0: हुकूमत। क्या इज्ज़ है एक बंदे माबूद नुमा में,
1: सुभान अल्लाह,
0: क्या
1: क्या इज्जत है।
0: इज्ज़ है एक बंदे माबूद नुमा में। और एक शेर और देख लीजिए,
1: इनायत
0: एक बार बुला लीजिए सरकार मुझे भी, एक
1: बार
0: बार
1: बुला
0: बुला
1: लीजिए
0: लीजिए
1: सरकार मुझे
0: सरकार
1: भी।
0: मुझे भी। फुरकत का ज़माना है गुजरता है सज़ा में,
1: वाह, बहुत अच्छा
0: फुरकत
1: है।
0: का ज़माना है
1: गुजरता
0: गुजरता
1: है
0: है सज़ा
1: सजा में।
0: में। कर पाएंगे क्या साया तेरे सर पे फरिश्ते, कर पाएंगे क्या साया तेरे सर पे फरिश्ते, जो खुद हैं तेरे साये तस्लीम और रज़ा में,
1: बहुत अच्छा है।
0: सुभान जो खुद हैं तेरे साये तस्लीम और
1: तस्लीम
0: रज़ा
1: रज़ा
0: में।
1: में। सुभान अल्लाह
0: क्या फ़र्क के सिफात और कहाँ फ़र्क के खसाइल,
1: सुभान अल्लाह सुभान
0: क्या
1: अल्लाह।
0: फ़र्क के सिफात और कहाँ फ़र्क के खसाइल। हर एक मोहम्मद है मोहम्मद की रिदा में,
1: बहुत खूब,
0: हर
1: बहुत खूब,
0: एक
1: वाह वाह
0: मोहम्मद
1: वाह,
0: है मोहम्मद की
1: अच्छा
0: रिदा में।
1: कलवी का चेहरा।
0: हर वक्त देखिए, हर ज़र्रे की तकदीर ज़िया हो गई रोशन, हर ज़र्रे की तकदीर ज़िया हो
1: हो
0: गई
1: गई
0: रोशन।
1: रोशन।
0: ये कौन चला आया यहाँ ग़ारे हिरा में,
1: बहुत खूब,
0: ये
1: वाह बहुत
0: कौन
1: खूब,
0: चला आया
1: सुभान अल्लाह,
0: यहाँ ग़ारे हिरा में।
1: बहुत खूब,
0: ये कौन
1: सुभान
0: चला आया
1: अल्लाह।
0: यहाँ ग़ारे हिरा।
1: ये कौन चला आया गारे हीरा में। ये थी फरीदा बेगम साहिबा जो अभी हमारे दरमियान थे, हमें महजूस कर रही थी अशार से। और सामिन, इसके बाद अब जो प्रोग्राम की आखिरी रौनक हैं वो हैं हमारे आमिर रब्बानी साहब। मैं उनसे पुरखलूस इल्तिमास करूंगी कि अपने कलाम से हमारे सामईन को महजूज़ फरमाएं।
2: मतला हाजिर करता हूँ नाते पाक का। सोचो तो कयामत की,

0: बेशक
1: जो
0: बेशक
1: खुशी होगी और आपकी
0: जो
1: खुशी होगी।
0: उनकी खुशी होगी, रब की वो खुशी होगी। और शेर हाजिर करता हूँ कि

0: ये उनकी इनायत है जो बात बनी
1: बहुत खूब, बहुत
0: होगी।
1: खूब।
0: वाह, ये उनकी इनायत है जो बात बनी होगी।

0: वाह
1: हैं।
0: वाह, क्या कहने हैं
1: मुश्किलें हो गई आसान तेरी
0: तेरी निस्बत से।
1: निस्बत से, पहुंचा अल्लाह का फरमान तेरी निस्बत से। पहुंच

0: तेरी
1: सुभान अल्लाह,
0: निस्बत
1: वाह सुभान अल्लाह,
0: से हमको
1: हासिल
0: हासिल
1: हुआ
0: हुआ कुरान
1: कुरान
0: तेरी
1: की निस्बत
0: निस्बत
1: से।
0: से। खाक हम खाक के पुतलों की कोई होती शनाख्त,

0: बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
1: और मक्ता हाजिर है कि तेरी शिरयानों से आमिर की रगों तक पहुंचा।

0: बहुत खूब, बहुत खूब। सोचो तो कयामत की कैसी वो घड़ी होगी, सोचो तो कयामत की कैसी वो घड़ी होगी, हर एक नज़र उनकी नज़रों पे जमी होगी। ऐसे ही बेशकीमती अशार के साथ हमारे साथ थे आमिर रब्बानी साहब। सामिन, इसी के साथ अब ये आज की नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हमारे साथ जो जो शोरा हजरात इस वक्त दरमियान हैं वो हैं जनाब मज़हर अली, मोहतरमा फरीदा बेगम और जनाब आमिर रब्बानी। आप सभी मेहमान का हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हम मशकूर व ममनून हैं कि आप हमारे दावतनामे पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए।
1: जी हाँ आयशा, आपने बहुत अच्छी आज नातिया नशीस समाप्त कराई, क्योंकि जुमे की मुनासबत से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, क्योंकि आज जुमे का दिन है और ख़ास दिन होता है। इस ख़ास दिन को और आपने बेहतर बनाया और बहुत अच्छी जो शायरात हमारे शायरा थीं और शायरात शायर हजरात
0: जी,
1: थे,
0: जी।
1: उन्होंने बहुत अच्छे कलाम से इस महफिल को नूरानी बनाया। और बात करते हैं अगले जो हमारा सेशन होता
0: जी
1: है उसकी,
0: तो
1: तो
0: आज आप क्या लेकर आए फैदे
1: आज हम
0: हमारे
1: बात
0: लिए?
1: कर रहे हैं जो हमारा शहर रामपुर है, जिसकी
0: जी
1: एक अलग पहचान है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब की बदौलत यहाँ ये पहचान रखता है अपने रहन सहन, अपने पहनावे की। और आयशा, यहाँ की आबोहवा की अगर बात करें तो वो भी एक अलग ही है,
0: बिल्कुल
1: और यहाँ के अगर खान पान की अगर बात करें तो ये भी एक अलग ही है, क्योंकि यहाँ नवाबी रही और
0: जी
1: इस्टेट होने के सबब पहनावे और खान पान भी दिल्ली,
0: जी
1: लखनऊ, हैदराबाद के बाद रामपुर को एक अलग पहचान मिली,
0: बिल्कुल
1: और आज भी ये अपनी पहचान बनाए हुए है। क्योंकि आयशा देखें आप, कितनी इसकी जो रामपुर की पहचान है उसको आप कितना मतलब इसको तरक्की मिली वो देखें। रामपुर का हबशी हलवे को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर एक जनपद एक पकवान स्कीम में शामिल किया
0: जी
1: गया,
0: जी बिल्कुल
1: और
0: अभी
1: कैबिनेट
0: ये
1: में
0: ऐसा
1: जी
0: हुआ है
1: जी जी बिल्कुल
0: और इस पर बहस चल रही है
1: जी
0: कि इस
1: बिल्कुल,
0: पर जी
1: और कैबिनेट की बैठक में इसको पास भी कर लिया गया है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है और मिल जाएगी इंशाल्लाह मंजूरी।
0: जी इंशाल्लाह
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हबशी हलवे को शामिल किया गया, और इसमें जो दुकानदार हैं यहाँ के जो रामपुर वासी मतलब रामपुर के जो शहरी हैं वो बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि
0: जी
1: एक पहचान मिली रामपुर को, और ख़ास तौर से खान पान के हवाले से।
0: हवाले से। और
1: जी
0: फिर
1: बिल्कुल
0: रामपुर की तो बात ही अलग है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हलवे की तो खुशबू ही ऐसी होती है कि अगर उधर से गुजर भी जाओ,
1: जी
0: यानी
1: जी
0: दुकानों की साइड से गुजर जाओ, तो
1: हाँ,
0: इंसान का दिल चाहने लगता
1: भीनी
0: है।
1: भीनी
0: जी
1: खुशबू होती है
0: बिल्कुल
1: उसकी। और इसका अगर इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास भी लगभग लगभग 95 साल का है, या
0: जी
1: इसके इससे भी ज्यादा हो सकता है।
0: ज्यादा ही
1: हाँ
0: होगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: नवाबीन जो थे वही लेकर आए थे
1: बिल्कुल
0: अपने
1: लेकर आए थे।
0: खानसामाओं
1: जी जी
0: को
1: जी
0: और उन्होंने ही इसकी तरकीब बताई थी।
1: और ये रामपुर तक ही महदूद भी नहीं रहा, इसकी
0: जी
1: पहचान देखें, इंग्लैंड लें, अमेरिका लें,
0: जी
1: ओमान लें, सऊदी अरब या मुंबई, लखनऊ, अलीगढ़, पुणे वगैरह में इसकी बहुत मांग रहती है, क्योंकि रामपुर के जो लोग हैं बाहर
0: भी बसे
1: बहुत
0: हुए
1: बसे
0: हैं।
1: हुए हैं, जो सऊदी में तो बहुत
0: जी
1: हैं और बाकी
0: और वहां
1: कुवैत
0: से
1: में
0: फरमाइश आती है
1: फरमाइश
0: कि
1: आती
0: जब
1: है।
0: आप आए तो हलवा
1: बिल्कुल,
0: जरूर
1: वो
0: लेकर
1: अपने
0: आए,
1: बॉस के लिए, अपने जो और उनके दोस्त
0: घर
1: अहबाब
0: वालों
1: हैं
0: के
1: उनके
0: लिए,
1: लिए लेकर
0: जी
1: जाते हैं वहां पर,
0: दोस्तों के
1: तो
0: लिए।
1: बिल्कुल। और अगर आयशा, अगर हम हमारे जहन में एक चीज और आती है, यहाँ की बिरयानी और कबाब का नाम
0: जी
1: भी सबसे पहले
0: और
1: आता है।
0: अक्सर हम इसका जिक्र करते हैं वैद भाई, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: यहाँ के लोग जो हैं बहुत शौकीन मिजाज हैं,
1: बिल्कुल, और
0: क्योंकि खिलाने के भी हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: खाने
1: बिल्कुल,
0: के भी
1: और
0: हैं।
1: मतलब अब दस्तरखान पे कोई मिठास की मीठी चीज ना हो तो फिर दस्तरखान ही अधूरा
0: अधूरा
1: लगता
0: सा
1: है
0: है
1: वो
0: जी
1: तो। और उसमें जब दस्तरखान की आती है बात, तो उसमें जब उसको पूरा कर देता है हमारा हबशी हलवा,
0: जी
1: मतलब उसकी खासियत बढ़ जाती है। अगर कोई खास मेहमान या खास नहीं भी मेहमान है, अगर
0: जी
1: हमने उसको हबशी हलवा सोन रखा है तो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आपने बात की बाजार में जैसे जा रही हैं और शॉप में गुजरी बराबर में से, तो
0: जी
1: उसकी खुशबू आपको अच्छी लगी, और अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि खुशबू अच्छी लगी तो नहीं, तो आपको दिल चाहा कि लाओ
0: हम
1: खरीद
0: खरीद
1: लूं।
0: लें। और
1: हाँ
0: बहुत सा ऐसे जगह भी होता है कि हम उस जगह जैसे कहीं जा रहे हैं
1: जी
0: तो तोहफे के लिए हम हलवा
1: बिल्कुल
0: सोन लेकर जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, और इसके गहरे काले भूरे रंग और
0: जी
1: जो सौंधी खुशबू होती है ना,
0: इसके पीछे
1: ये
0: एक, हाँ जी, एक
1: जी
0: तरीका है वैद्य,
1: बिल्कुल,
0: आपको पता है
1: हाँ
0: कैसे बनाया
1: बिल्कुल
0: जाता है
1: बिल्कुल
0: ये?
1: बताऊंगा, मैं वो भी बताऊंगा। और इसके जायका जो है बेमिसाल है, और इसकी
0: जी
1: सेहत के एतबार से भी वो बहुत अहम
0: जी
1: अहमियत रखता है अपनी। तो ऐसा हुआ, मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, मतलब बच्चों को अपने जो पढ़ाता था मैं, बैज लगाया करता था उस टाइम पे, तो वो बच्चा खास मतलब वो कहते थे आप हमारे घर पे अकेले पढ़ाएंगे इसको, ठीक है हम पढ़ाने चले। जब वहाँ गए तो पता चला कि वो उसका हलवाई का काम किया करते थे वो,
0: उनके वालिद,
1: हाँ,
0: जो थे।
1: उनके वालिद जो थे, तो वहाँ पर मैंने देखा तो पीछे को एक कुंडेलियाँ हैं जो मिट्टी की होती हैं, उसमें गेहूँ भीगे हुए, धुले हुए भीगे हुए, और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखा हुआ था। हाँ, तो वो शुरू शुरू में तो आदमी को थोड़ा सा ये होता है ना, झिझक होती है तो पूछता भी नहीं है। खैर वो थोड़ा सा वक्फा बीता, चार पाँच छः महीने तक कभी प्लेट में हलवा आ गया तो कभी कुछ आ गया, रंग बिरंगी वैरायटी आती थी मीठी की, क्योंकि ऑर्डर उनको मिलते होंगे तो वो ऑर्डर जाते थे, तो वो मेरे लिए स्पेशल और अलग से एक डिब्बा या कोई भी चीज में देती थी मुझे, जरूरी
0: कि आप खातिर तवाज़ु करते।
1: मैं चाय नहीं पीता था तो चाय की जगह वो मीठा लेकर आती थी, बिस्किट नमकीन जो भी हुआ करता था। अब मैंने उनसे कोई छः सात महीने जब गुजर गए तो फिर थोड़ा सारा घुल मिल गया ना मैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि बहुत अच्छे मतलब लोग थे और बहुत अच्छी है उनकी बीवी थी जो थी वो उसकी बच्चे की वालदा, तो वो अक्सर जब प्रोग्राम मेरा ट्यूशन का प्रोग्राम वो खत्म हो जाता था ना तो उसमें फिर वो मुझसे बातें करती थी, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए आप ये क्या सीन है ये गेहूं और ये सब चीजें जो भीगे हैं, तो उन्होंने फिर बताने लगी, बोले हल्का हल्का जब गेहूं थोड़ा सारा वो हो जाता है ना, थोड़ा हल्का सारा मतलब फूटता है जैसे
0: अंकुरित
1: फूटने से पहले, तो बोले फूल जाता है तो उसको हम पीसते हैं उसको गेहूं को, और पीसने के बाद इसका हबशी हलवा। अरे मैंने कहा हबशी हलवा सोन बनता है आप क्या? अब ताज्जुब हुआ क्योंकि
0: हलवा तो क्या ताल्लुक,
1: बिल्कुल गेहूं का इससे क्या ताल्लुक, नहारी में तो थोड़ा बहुत देखा है हमने बेसन या, लेकिन गेहूं का इसमें तो फिर उन्होंने बताया कि जो चीज होती है उसकी मकदार के हिसाब से उसमें गेहूं भी ये डाला जाता है, क्योंकि दाना जो होता है वो दाना इसका आता है इसमें, लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक गेहूं की खुशबू आती नहीं है। जब आप खाना आपने खाया होगा हफ्शी हलवा सुन नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी, अब जब उन्होंने ये कहा तो हमारे पास जब हलवा आया और हमने खाया तो पता चला कि हाँ इसमें है गेहूं, कहीं ना कहीं टेस्ट आ रहा है उसमें। खैर वो दूध वगैरह सब चीजें उन्होंने उसमें कढ़ाई रखी गई उसमें सब बताया मुझे। एक दिन जाऊं तो बन रहा था आंगन में, बहुत बड़ा आंगन था उसमें, तो चूल्हे पे वो कढ़ाइया बहुत बड़ी कढ़ाई थी और उसमें दूध काफी दूध, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा लोगों का आया होगा तो वो उन्होंने तैयार कर रहे थे उसको, तो मैंने देखा वो, मैंने देखा कि गुलाबी हो गया था दूध, तो वो पकते पकते पकते पकते और वो उसको खींच रहे थे उससे जो करछुरी होती है उनकी उससे, कभी वो खुद चले जाए कभी बीवी उनकी चली जाए। अच्छा लड़की थी रानी उनकी वो, तो वो भी उसमें शामिल रहती थी, जबकि उसको बिल्कुल उस तरफ से शौक नहीं था, उसको पढ़ाई का शौक था बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको हाई स्कूल करवाया, मैंने कहा आप हाई स्कूल करें पढ़िए। बोले फरीद भाई मुझे तो ये लगता ही नहीं कि मतलब इस तरफ को जाऊं कि घर में अम्मी बनाती हैं सब कुछ करती हैं तो मैं क्यों। अच्छा ऐसी ही जो मैं पढ़ाता था जिसको ट्यूशन, वो भी यही कहता था कि मेरा सर मेरा इस तरफ को है ही नहीं ध्यान। खैर वो उन्होंने वो पक्का पकने के बाद चीनी उसमें पड़ी और फिर उसको खूब पक्का जब खूब लाल हो गया वो, तो फिर उसमें देसी घी पड़ना शुरू हुआ उसमें, और देसी घी पड़ता गया और उसको खूब वो करते गए पकाते गए खूब पकाते गए। खैर वो जब खूब हो गया
0: मुस्तकिल पकाना पड़ता
1: पकाना पड़ता है
0: और वो रुक जाए तो फिर वो लग
1: ना ना खराब हो जाएगा और जल जाएगा वो, उसको जल हल्की आँच रहेगी उसमें और हल्की आँच पे
0: चलाते
1: बिल्कुल। और वो जब खूब पक गया फिर उन्होंने अपने जो और इसकी जो होते हैं जो चीजें पड़ती हैं जैसे गेहूं था वो पिसा हुआ वो डाला, और जो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चीजें होती हैं सब पिसी भी पड़ती हैं उसमें, साबुत कुछ भी नहीं आता है उसमें, वो सब चीजें उन्होंने अब वो बताने लगे कि अब थोड़ा सा इसका जो है ना डिमांड जो है वो दूसरे टाइप की हो गई, क्योंकि अब वो अलग अलग बनने लगे, अलग अलग जायके होने लगे, बावर्ची जो बना रहे हैं हलवे वो अलग अलग अंदाज में बनाने लगे। अब जो हफ्शी हलवा सोन था वो तो है ही अपनी जगह कायम, अब उसकी शक्ल में घीघवार का हलवा आ गया अब। हाँ, और रंग बिरंगे जो थी वैरायटी, आप अगर जाएंगी शॉप पे तो एक नहीं कई आपको वैरायटी आपको टेस्ट कराएगा।
0: तो फिर देखना पड़ता है कि दुकान पर के इतनी चीजें होती हैं कि कौन सा लें कौन सा खाएं, क्योंकि समझ में नहीं आता
1: जी
0: के कौन सा लें। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी आपने
1: जी, तो ये रहा सिलसिला। अब देखिए खाने की जब बात आ रही है, हाँ, तो कम मीठा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है उसमें वो।
0: हाँ बिल्कुल सही।
1: अब देखें अब खाने की जब बात है और मिठाई की बात की हमने, तो अब हर चीज की मकदार ज्यादा अगर हम लेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसान देता है। और आजकल जो बीमारियां चल रही हैं वो बहुत ज्यादा बीमारी है, शुगर की बीमारी तो, और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, तो हमें کم ہی لینا چاہیے میٹھا, اور بس اس اعتبار سے لینا چاہیے کہ ذائقہ ہمارا چینج ہو جائے, کیونکہ بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا. یہ بھی مطلب ایک چیز ہے جو سائنٹیفک بھی ہے اور حکمت کے اعتبار سے بھی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے یہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے, کھان پان
0: بالکل صحت کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ صحت ہے تو سب کچھ
1: ہے. اب جب

0: तरबूज को हमें खाने के बाद नहीं खाना
1: जी
0: चाहिए, और खाने से पहले कम से कम, या खाने के 2 घंटे बाद
1: जी
0: खाना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: और खाली पेट खाएं तो ज्यादा फायदेमंद है। और
0: जी
1: कहते हैं कि इसको दोपहर 3 या 4 बजे तक खा लेना चाहिए, इसके बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हाजिम
0: भारी होता
1: है। जी बिल्कुल, खरबूजा है जैसे, संतरा है आजकल,
0: बिल्कुल,
1: और आड़ू है, लीची वगैरह, ये ऐसे फल हैं जो हमारे अंदर पानी की कमी को दूर करते हैं
0: जी बिल्कुल,
1: और हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं
0: बिल्कुल। और जब इसका हिकमत के एतबार से मैं आपको बताऊं, आपने जब बात की, जब नया फल कोई भी चले, तो एक हमारे संजय भाई थे, अब तो खैर वो चले गए ऊपर, तो वो कहा करते थे कोई भी फल चले तो खूब पेट भर के खाओ
1: जी।
0: एक जैसे लीची चल गई तो बोले लीची को आप पूरे आप दिन में लीची खाना खूब खाओ।
1: और इसके पीछे एक हिकमत भी है
0: जी बिल्कुल,
1: वो ये है भाई कि अगर आप दिन भर एक फल खाएंगे, आप गिजा नहीं लीजिए, यानी रोटी मत लीजिए, चावल नहीं खाइए, सिर्फ वो फल खाइए तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आपकी शुगर भी कंट्रोल
0: और अच्छी सेहत
1: अच्छी होगी आपकी। ये इसके पीछे ये हिकमत है
0: बिल्कुल,
1: जो उन्होंने बात कही ना, उसके पीछे ये हिकमत है कि आप उसको जब खाएंगे तो आपके अंदर ताकत भी आएगी और आपका वजन भी कम रहेगा।
0: और आपने डिहाइड्रेशन की बात की, तो देखिए ज्यादती जो है वो हर चीज की बुरी होती है आयशा
1: जी,
0: ज्यादती जो है, अब हम खाना पेट भर के खा लें और फिर ऊपर से फल भी खा लें, तो क्या होगा, पेट में हमारे जो एयर होती है वो बिल्कुल ठस हो जाएगा पेट हमारा, और फिर हम दूसरी
1: बदहजमी
0: हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, उसमें पानी हमारा
1: कम होता जाएगा,
0: वॉमिट भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, और लूज मोशन भी हो सकते हैं, उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं।
1: आजकल जैसे आम पन्ना है, लस्सी है,
0: क्या बात है,
1: नींबू पानी है, ये ऐसी ठंडाइयां हैं कि अगर हम इनको लेते हैं तो हम दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं।
0: आपने आम पन्ने की बात की तो मुंह में पानी आ गया, और हमारे सामीन भी सोच रहे होंगे आज के आज जो है हमें आम पन्ना ही बनाना है, क्योंकि मौसम थोड़ा सारा आज भी गर्म है तो बहुत अच्छा लगता है।
1: सुबह थोड़ी बूंदे पड़ रही थी,
0: अच्छा मौसम था सुबह,
1: और बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था जिस टाइम मैं आ रही थी,
0: बिल्कुल सही,
1: हल्की हल्की बूंदे पड़ रही थी
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि देखिए जिंदगी का जब ही मजा है फहीद भाई, जब हम सेहतमंद हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और जिंदगी भी जब ही खूब से खूबसूरत है कि जब तक हमारे अंदर ताकत है
0: और हमारी सेहत है
1: जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है,
0: बिल्कुल बिल्कुल यही बात, क्योंकि हमें सेहत का पूरा ध्यान रखना है। मौसम आजकल धूप होती है, एकदम बादल आ जाते हैं, और एकदम आंधी तूफान में बदल जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि अगर आंधी या तूफान है तो हमें अंदर चले जाएं, सड़क पे ना खड़े हों। अभी रामपुर में ही कितना जबरदस्त, जो शहबाद गेट के बाहर मार्केट बनी हुई है, छज्जा इतना नीचे आ गया एकदम, जो रात को आंधी आई है उसमें, और आपने ये महसूस किया होगा आयशा कि दिन था और सुबह का टाइम था 10 बजे, और ये लग रहा था जैसे रात के 10 बजे
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल ऐसा हो गया।
0: यहाँ का गांधी समाधि का फोटो दिया था, वो लग रहा था कि बिल्कुल जैसे अब रात हो गई, रात के 10 बज रहे हैं,
1: तो एहतियात रखें थोड़ा, क्योंकि मौसम जो है उसका मिजाज कभी ठंडा है
0: कभी
1: गर्म है, तो सामीन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम सेहतमंद हैं तो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं
0: बिल्कुल, और अगर कमजोर होंगे तो बीमारी हमारे ऊपर जरूरी आएगी
1: जी। अच्छी से अच्छी गिजा का इस्तेमाल करें कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं आ सके
0: बिल्कुल।
1: वैसे भी आजकल जिंदगी जो है बहुत कीमती है, भाग दौड़ वाली है, और इसमें सेहत का जो हम ख्याल रखते हैं ना, वो अगर अपने आप को सही रखते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती
0: है। हाँ, वो शेर है ना, जिंदगी जिंदा दिली के नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं, तो वो बिल्कुल इस पे सटीक बैठ रहा है आपका जो ये चीज आपने कही
1: बिल्कुल। और ये है ना कि वैद भाई देखिए, अगर हम अच्छे हैं तभी हमारा माशरा अच्छा है
0: बिल्कुल,
1: हमारा घर अच्छा है, सब कुछ सही है।
0: चलिए ये बात रही, अब देखिए वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, और अपने दोनों मेजबानों को यानी इजाजत दीजिए, और फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया,
1: और इस दुआ के साथ कि आपके साथ हम इस प्रोग्राम में फिर शामिल हों
0: बिल्कुल।
2: अभी आप समाज फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम, हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। इस समय सुबह के 10:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर लेकर हाजिर हूँ आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा। कबूल कीजिए प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की ये फरमाइश, पहला अनुरोध पत्र हमें लिख भेजा है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, डीएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के अन्य सदस्यों ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर ने। महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, कैशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल ने और प्रभाकर जॉन धड्डे, आरती जॉन धड्डे ने अनुरोध किया है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से फरमाइश लिख भेजिए। मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और इंशा खान ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंग से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा ने। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, असद भाई। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकार, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नंदेश्वर नगर नरवेल से पी एस नहावकर, विशाल नहावकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से अनुरोध करता है हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयदेव विरक और मीका विरक। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में फिल्म तीन देवियां का ये गीत।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम का अगला अनुरोध पत्र, गांधी समाधि रोड रामपुर जिला अस्पताल के पास से गफार खान गर्जन का। राजिया खान, शमा परवीन, सिमरन खान, शमशाद अली अजम, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, कुलफशन, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफार, हबीब अहमद इदरीसी, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शुएब खान, मुश्ताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से अनुरोध करता है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से फरमाइश लिखवी जी है।

कोर्ट में नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, डाबरतला गोलोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, वरीम मुश्रा, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अनुरोध करता है अदर सिंह सैनी, मीना मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश और इनके माता पिता, रंगली छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मीरा जहां ने फरमाइश की है, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, तेलगाना भूंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा अजमीन, गुड़िया, अब्दुल बाबा अंजाना, स्वाति, रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और अहमद ने आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सभी की पसंद पर।

मोहम्मद रफी के गाए इसी खूबसूरत नगमे के साथ कार्यक्रम आपके अनुरोध पर यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 10:30 में हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: नंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
1: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
3: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
4: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
3: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी

0: जादूगर बनूंगी आपकी तरह, वे कहते हैं।
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
5: सैनिक भाइयों,
4: जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: भतीजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल, सो निहाल।

0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
1: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick any.
1: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। और इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं और ये समय है हमारे अगले कार्यक्रम धरोहर का। इन दिनों आप तक पहुंच रहा है धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज सुनिए इसकी कड़ी संख्या 2 का प्रसारण।
1: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं। जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी झांकते हैं।

0: श्रोताओं, सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य के यशस्वी रचनाकार और हिंदी साहित्य यात्रा के सजग यात्री डॉक्टर कामता कमलेश जी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी अपनी पहचान है, साहित्य की बात हो, शिक्षा जगत की बात हो, हिंदी के उन्नयन की बात हो, लेकिन एक पक्ष और है डॉक्टर कामता कमलेश के व्यक्तित्व का। इस नाम के साथ जब तक विश्व यात्री न जोड़ा जाए तब तक बात बनती नहीं है, कुछ अधूरेपन का एहसास होता है। ऐसे विश्व यात्री डॉक्टर कामता कमलेश आज हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। डॉक्टर कमलेश, स्वागत है आपका आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में, जहां आप स्थापना के बाद से लगातार आ रहे हैं।
1: अरे सौभाग्य है मेरा।
0: आकाशवाणी में आपकी यात्रा कब से आरंभ हुई?
1: हमारी यात्रा, प्रथम यात्रा जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र था, ये 1958 की बात है। और समय आकाशवाणी केंद्र के निदेशक थे और परम पूजनीय मेरे बहुत ही श्रद्धा के साथ सुमित रंजन पंत जी।
0: अच्छा।
1: का सौभाग्य है मेरा कि उनके साथ मुझे अपनी टाक देनी पड़ी थी वहाँ। ये
0: कुछ याद है विषय क्या था उस वार्ता का?
1: विषय साहित्य कविता पर था या उपन्यास पर था, एक साहित्य कैसा है। मैं भी एक छात्र था और अच्छा छात्र, तो सारे हमारे गुरु जानते थे। पंत जी को कैसे पसंद आया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको मैंने अपने यहाँ बुलाया था विश्वविद्यालय में, तो हमारे व्याख्यान से प्रभावित हुए, तो कहा आप आकाशवाणी आइए। तो मैं आकाशवाणी गया था, तो बहुत ये काफ़ी दिन की बात है, तो कविता मेन था। हा? और विशेषकर उन्होंने भी, पूजनीय मेरे बहन मैं भी कहूँगा, उन्हें दो बातें कही थी, एक महादेव वर्मा के बारे में और निराल जी के बारे में। तो निराल जी के साथ तो मेरा बड़ा निकट का संबंध रहा, लेकिन इस पर उन्होंने लिखा भी है अपने लेख, और महादेवी के साथ भी था। तो ये विषय था और ये बड़ी पुरानी बातें हैं।
0: हिंदी साहित्य के प्रति रुझान आपका किन परिस्थितियों में हुआ और कब से हुआ?
1: ऐसा है कि मैं एक ऐसी जगह का जन्म लिया हूँ जहाँ हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, और हम अमेठी के रहने वाले हैं, अमेठी नरेश
0: जी जी,
1: और हिंदी साहित्य में उनका नाम है, और वहीं पर मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान भी है, कब्र है, और उनका मजार भी है। तो हम सब लोग बचपन में जो पढ़ते थे हाई स्कूल में उधर, तो लोग कहते थे और मलिकन चले हैं वहाँ, उस समाज की परिक्रमा करेंगे तो शायद अच्छे नंबर मिल जाएं। तब इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो हमने कहा मलिकन, तो हम चलते थे जाते थे, लेकिन जब हम मलिकन कुछ आगे हम थोड़ा सा उस पर सोचे, तो हमने कहा मलिकन नहीं है ये मलिक है, मलिक मोहम्मद जायसी है, लेकिन हमारे वहाँ के लोग जो है मलिकन चलना है, आज भी मलिकन चलना है। अब उस समाज के हम लोग वहाँ के लोग लगाते हैं, तो ये साहित्य का रुझान है। और फिर हमारे पिताजी जो थे वो रामायण के बहुत बड़े गायक थे और अध्येता थे, और उन्होंने मुझे इस ओर ज़्यादा झोंका। जब वो कलकत्ता में थे तब रामायण की बात कही थी उन्होंने, कि रामायण में कहाओ और सुनो की बात से शुरू करो, हैं कहाँ से कितनी चौपाई कितने दोहे हैं,

0: 1939 को ग्राम कुड़वा अमेठी सुल्तानपुर में आपका जन्म हुआ।
1: जी जी
0: पिताजी का प्रोत्साहन मिला,
1: जी
0: घर में बड़ों का आशीर्वाद मिला
1: जी,
0: और आपकी साहित्य के प्रति अनुराग की यात्रा आरंभ हो गई।
1: जी
0: अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और डॉक्टरेट तक आपने शिक्षा किस तरह से कहाँ कहाँ पूरी?
1: अब देखिए, पहले प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गांव में प्राइमरी में है, सारदन है, जो हमारे पूर्वजों ने बसाया हुआ सारदन है, वो एक ही मकान था, सारदन देवी का मंदिर, तो सारदन कहते हैं शारदा के, तो वहाँ से हुआ प्राइमरी। उसके बाद फिर मैं अमेठी चला गया, रामनगर चला गया, वहाँ फिर जूनियर हाई स्कूल किया, फिर हाई स्कूल किया रणबीर रणजय इंटर कॉलेज से, राजा साहब का था। फिर उसके बाद मैं सुल्तानपुर चला गया, सुल्तान इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया, उसके बाद फिर इलाहाबाद चला गया। ये तब था जबकि सन 1957 में हमारे 3-4 जिलों में डिग्री कॉलेज नहीं था, हम दिशाहीन थे, लेकिन एक अच्छा इच्छा थी कि चलो भाई आगे बढ़ें, ना सुल्तानपुर, ना प्रतापगढ़, ना रायबरेली हैं, इन सब में ना जौनपुर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, हाँ, तो हम इलाहाबाद गए थे पढ़ने के लिए। इलाहाबाद में सन 1957 की बात है, तब डिग्री कॉलेज नहीं था, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक बहुत बड़ा गौरव होता था। जो एक बात बताऊँ शिक्षा जी, बड़ा अच्छा लगता था, हमने तब सुल्तानपुर बिजली नहीं थी, तो मैं प्रयाग स्टेशन उतरा बक्सा लेकर के और थोड़ा सा और सामान लेकर, तो हमारे हाथ में लालटेन थी, किसी ने बताया नहीं था, तो जब मैं पहुंचा तो लोग हंसने लगे, अरे भाई ये लालटेन ले क्यों आए हो? हमने कहा है क्यों भाई, लालटेन क्यों पूछते हो? हमने पढ़ने के लिए कहा, यहाँ तो बिजली है, तो ये लालटेन का जो है तो लालटेन लेकर चला, तो हमने कहा जब बिजली चल जाएगी तो लालटेन जलाऊंगा। और ये सक्षा जी बहुत बड़ा अच्छा है कि जब हॉस्टल में रहता था तो वो जब एक बार लाइट चली गई है तो हमने अपनी लालटेन जलाई है, तो लोग कह रहे भाई लालटेन, हमें कहा भाई एक ही लालटेन, तो लालटेन रखता था उसमें 3-4 लोग आ जाते थे, लेकिन फिर एक घंटे बाद तो ये लालटेन का जो महत्व, हंसते थे, फिर हमने कहा बोलो, हंसते थे भाई इसका कहा आपकी, तो हमने हमारे यहाँ नहीं था भाई, सन 1957 के बाद बिजली आई सुल्तानपुर में। तो ये लालटेन की कहानी है, ये हमारे इलाहाबाद प्रवेश की कहानी जो है।
0: अच्छा, इलाहाबाद में आपने निराला जी का जिक्र किया और इलाहाबाद पहचान है
1: जी
0: निराला जी से भी, और महादेवी जी का भी वो स्थान है, तो इनका सानिध्य आपको किस तरह से प्राप्त हुआ, किस रूप में मिला?
1: जी मैं साहित्य से जुड़ा रहा था, हमारे पिताजी आते जाते रहते थे, तो हम वहाँ एक साधना संस्था कायम की, हिंदी साहित्यिक संस्था साधना थी, तो उससे एक पत्रिका निकालते थे मंजरी, तो उस पत्रिका की शुभकामना के लिए निराला जी के पास गए, और निराला जी के पास पहुँचे हैं, अब मैं साहित्य मंत्री था, साहित्य मंत्री था, डेलीगेशन साहित्य मंत्री था, तो हम इस बहाने में चलो पहुँचे, निराला जी को देखे वहाँ बैठे, दारागंज गया तो महाकवि को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, तो एक बात सक्षा जी बहुत अच्छी कही, वो मुझे वही प्रेरणा दे थी, हमने कहा महाकवि, तो बड़ी आवाज़ उन्होंने कहा क्यों आए हो, हम चरण से हमारी घिघी बंद गई डांट के आवाज से, डरे नहीं लेकिन आवाज से, व्यक्तित्व उनका 6-7 फुट का है, क्यों आए हो? हमने कहा महाकवि मुझे शुभकामना चाहिए, एक पत्रिका निकाल रहा हूँ, तो कहा शुभकामना लेने क्यों आए हो, तुम इसे बनो शुभकामना देने के लायक बनो, तुम आए हो शुभकामना लेने के लिए, तुम शुभकामना बनने के योग्य बनो, तो ये वाक सक्षा जी मुझे हमारे जीवन को मोड़ दिया कि शुभकामना लायक बनो, तो हमने वो फिर वो शुभकामना दिया, उन्होंने जो कुछ किया वो हमने लिखा है उसी निराला को सेहतनामा है, तो उसमें सब उल्लेख किया, तो वही है कि हम योग्य बने, तो हमारी साधना जो है इस ओर बढ़ गई, भाई इस योग्य बनना चाहिए, कुछ दृष्टांत लायक, दृष्टांत बनो, दृष्टांत दो नहीं, दृष्टांत लायक बनो है, तो हम चरणचिन्ह नहीं गए, हम चरणचिन्ह बनाते हैं, ये मेरा आप सब लोगों का माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, क्योंकि शारदन देवी जो है शारदन सरस्वती से बना हुआ है, हमारे पूर्वजों में बसाया हुआ, तो वो शारदन सरस्वती का है कि ऐसा पूजा करो, ऐसी साधना करो कि आपका उदाहरण दें, तो जिन संकटों में नहीं आया बल्कि संकटों में हमने राह बनाई और राह आज तक बनाया, कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ क्या हुआ, सारी दुनिया में इस हिंदी की कश्ती पर बैठ करके सारी दुनिया, 5 महाद्वीप देखा मैंने और वहाँ पर सारी काम किया मैंने, विजिटिंग प्रोफेसर भी रहा, और उसमें कितना काम किया ये तो आप हमारे साहित्य को अगर पढ़ें तो जानेंगे।
0: कमलेश जी, विश्व यात्री
1: जी
0: आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि विश्व के 5 महाद्वीपों की आपने यात्रा की, तो किस तरह से ये तार जुड़े?
1: तार इसलिए जुड़ा कि मैं पहले सोचता था पत्र कैसे भाई विदेश आया जाए, विदेश का एक मोह था तो पत्र डालते थे, लेकिन अच्छा। एक बार ऐसा हुआ कि ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कई वहाँ निकली, तो वहाँ मैंने अप्लाई कर दिया कि साहब विदेशों में हिंदी प्रोफेसर की जरूरत है, मैंने अप्लाई किया और संयोग से वो मेरा चुनाव हो गया, तो वो एम्बेसी में था विजिटिंग प्रोफेसर, तो एम्बेसी में 3rd सेक्रेटरी का रैंक होता था और हिंदी का पढ़ाने का था, तो इस तरह से मैं जुड़ता चला गया, वहाँ भी हमारा सुरीनाम में 2 साल रहा, 2 साल बड़ा बहुत काम किया अकेले, हालांकि परिवार को मैं जाने का परमिशन

0: थी कि आप जा सकते हैं, मैं पासपोर्ट बनवाया सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको हमने कहा यहीं करो, यहीं रहो, पढ़ो लिखो। फिर हमने उसका रहा, तो ये मैंने इतना काम किया वहाँ पर चल करके, अब वहाँ चलने लगा तो ये बड़े गर्व की बात नहीं बल्कि हमारे कार्यों का मूल्यांकन वहाँ के लोगों ने किया कि मेरे चलने के पहले ही वहाँ पर दो विद्यालय कायम कर दिया हिंदी पर, डॉक्टर कामता कन्वेंस हिंदी स्कूल और पुस्तकालय।
1: क्या बात,
0: ये जो है
1: निश्चित रूप से उपलब्धि है,
0: हिंदी का साहित्य उसके नाम पर हिंदी का एक विद्यालय बन जाना और पुस्तकालय बन जाना तो वहाँ की जनता ने बनाया, तो ये बहुत मतलब नहीं, ये हमारे कार्यों का मूल्यांकन किया, हम इसको नहीं कहते कि ये हमारे कार्यों का मूल्यांकन किया, तो जनता ने बनाया, जनता के लिए था मैं, और अब सारे परिवार छोड़कर गांव-गांव घूमता रहा तो कंट्री साइड देखने का आनंद आया।
1: तो सूरीनाम के बाद ये यात्रा कहाँ पहुँची?
0: सूरीनाम के बाद फिर उसके बाद फिर मैं मॉरिशस गया, श्रीलंका गया, वेस्ट इंडीज गया, अमेरिका, फिजी गया, फिजी के बाद सिंगापुर गया, हांगकांग गया है, और जमैका गया है, और अरूबा गया, और बहुत सी जगह गया है, तो ये सब यात्राएं ऐसी होती रही।
1: इन देशों में आप गए हिंदी के सिलसिले में?
0: जी हाँ,
1: हिंदी के प्रचार प्रसार और उन्नयन के सिलसिले में। क्या स्थिति आपने देखी, क्या मूल्यांकन रहा आपका, और क्या प्रयास आपने विशेष रूप से वहां पर किए?
0: देखिए, फिजी की जो यात्रा हुई मेरी, तो वहां के साहित्यकारों ने मुझे बुलाया था। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आज आकाशवाणी के माध्यम से कि जो विदेशों में भारतीय हिंदी है, निवासी जो है प्रवासी भारतीय जो बोलते हैं, वो हिंदी नहीं, वो हिंदी को दूसरे रूप में सोचते हैं, वो सांस्कृतिक भाषा है, उनकी संस्कृति है। अगर उनको जो काम करना पड़ता था तो उस कहते थे हमें रामचरितमानस पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना है, ये पूजा पाठ करना है, शादी ब्याह करना है, तो कौन से में पढ़े? तो हिंदी उनकी सांस्कृतिक भाषा है, ना कि साहित्यिक भाषा। संस्कृत से जुड़ा उनका संस्कार की भाषा है उनके, वो कहते हैं कि अगर हिंदी मिट गई तो हम मिट, तो हिंदी की संस्कृति है। अगर उनके यहाँ विवाह होगा तो वो श्लोक पढ़ा जाएगा, रामचरितमानस पढ़ा जाता। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ जो मेरा मानस कोश बना हुआ है, मैं सारे देशों में सब रामचरितमानस का अखंड पाठ मैंने सूरीनाम में कहा। जब पहले जानते नहीं थे, 24 घंटे में जब मैंने घोषणा की थी सक्सेना जी, तो आप स्पष्ट करूँ कि हमने 24 घंटे में रामायण खत्म कर दूंगा, तो लोग बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बुलाया गया, सारे प्रेस बोल रहा है आप 24 घंटे में खत्म कर देंगे, इतना बड़ा सारे भारतीय लोग चकरा गए, कहा क्यों भाई आप 24 घंटे में कैसे खत्म कर? हमने कहा बड़ी सामान्य सी बात है, तो वो जानते, कहा हमारे अपेंती रेडियो में, हमारे के वहाँ के रेडियो में कहा 12 साल में खत्म हुआ तो आप 24 घंटे में खत्म कर देंगे हैं? हमने कहा बिल्कुल। तो लोग तो एक वहाँ पर ठाकुर साहब थे डंडा लेके बैठे, वो रामचरितमानस जानते थे, कमले जी आप करेंगे? मैं बैठूंगा। हमने कहा ठीक है बैठिए आप। तो जब मैंने शुरू किया अखंड पाठ, तो वो भगवान की कृपा 23.5 घंटे में खत्म हो गया, हनुमान जी की कृपा से सब, बहुत आदर सत्कार हुआ, बड़ा आश्चर्य रहा उनको, वो शैली नहीं जानते थे कैसे अखंड पाठ होता। हमारे देश में, अपने देश में आप जानते हैं अखंड पाठ चलता है, 24 घंटे खत्म करते हैं, सामान्य सी बात है, लेकिन जो लोग वहां जाते इसका कभी कहते नहीं थे। वो रामचरितमानस के कह दिया, लेकिन उसके बाद वो आगे क्या किया जाए, वो काम करने नहीं गए थे, वो देखने गए थे, माँ सरस्वती के पास में काम करने गया था, देखने नहीं गया था।
1: आपने हिंदी को विदेशों तक पहुंचाया?
0: जी जी।
1: लगभग कितने वर्षों तक आप इस विश्व यात्रा में रहे?
0: मैं अगर सब जोड़ लिया छोटे मोटी सारी बात तो 8 साल से हो जाता है लगभग,
1: अपने जीवन के 8 साल
0: लगभग सब जोड़ लिया जाए, इकट्ठा 2 साल 3 साल तो अलग रहा, फिर फिजी में रहा, फिर लंका में रहा, मार्शल्स में रहा, ट्रिनिडाड में रहा, अमेरिका में रहा, लंदन में।
1: लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है।
0: जी जी।
1: एक सम्मानित पत्रिका है हिंदी की, उसमें मैंने आपका एक लेख पढ़ा था, आपने कहा फिजी ना जइयो को।
0: हाँ, फिजी ना जइयो, क्यों फिजी ना जइयो को, ये बहुत बढ़िया है, जो मैं ऐसा जानती है, फिजी आए दुख होए तो नगर हिमरा पीड़ती, फिजी ना जइयो को, क्योंकि सकने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसलिए मैंने कहा संस्कृति की भाषा है। यहाँ जब लोग वो बहका करके फुसला करके चलो भाई हैं आप यहाँ के, हम तुम्हें ऐसी जगह लेंगे जहाँ तुम्हें सोना मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो लोग चले गए। अब वो कलकत्ता में बैठा दिए गए हैं पानी के जहाज में, पानी के जहाज में वो मजदूर के रूप में ले गए, साहब चलो वहाँ मेहनत कर, उन्हें पता, उन्हें कहा चलो अभी 2 दिन पहले तुम्हें बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया पैसा मिलेगा, अच्छा सोना मिलेगा, माला माल हो जाओगे। इस प्रलोभन में, इस दीवा स्वप्न में वो लोग चले गए। जब 1 महीने के बाद हैं, लगभग 20-25 दिन के बाद जब फिजी पहुंचे हैं, रास्ते में कैसे कैसे हुआ, वो तो जहाजी भाई बन गए, उसे कैसे कैसे खाना मिला वो अलग, बहुत समय का जब इतना संचार व्यवस्था नहीं थी, तो वो जब उतरे वहां पर, उतरते ही वहां पर एक लाइन में खड़े हो गए, खड़े हो गए सब। अब बहुत से लोग वहां गए, भाई ये मजदूर हमें दो, तो वहां मेरी नीलामी होने लगी मजदूरों की, अब उनके साथ जाना, उनके साथ जाना, सबको नीलाम हो गए। जब वहां पहुंचते ही कहा ये फावड़ा लो, ये कुदाल लो, ये इस खेत में काम करना है, हाँ? तब वहां पर जब काम करना है तो कहा ये तो हमें कहा था यहाँ सोना मिलेगा, क्या काम करना, तो

0: रात दिन मेहनत करते थे लोग, रात दिन उन बोयतियों को, उन उसको कुलीलेनों को मैंने देखा फिजी में है, कितना वो लोग जो खरीदार थे वो लोग हैं, वो एक तरीके से ठेकेदार जिसे समझिए हैं, मजदूर करते, मजदूर बिकते थे, आदमी बिकते थे, तो वो तो निर्दयी थे। अब वहाँ से ना आप लौट सकते हैं ना वहाँ रह सकते हैं, तो उनसे रात दिन मेहनत लिया जा रहा था, उनको खाना दिया जाता, थोड़ी तनख्वाह दी जा रही थी, और मिल नहीं सकते थे, कहाँ भेज दिया गया, अगर पता भी नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए तो कष्ट देते। अब खाना खाना है, खाना 10 मिनट खाइए, 10 मिनट कोई खाना खा सकता, आधे घंटे मिलता उसमें खाना बनाइए खाइए, तब वो था वो एक महिला ने कहा था कि अगर ऐसा जानती तो फिर नहीं यो खोए, तो ये है कि ऐसा ना हो दिवा स्वप्न नहीं बल्कि सोचना चाहिए, तब सोचने का समय नहीं था।
1: डॉक्टर कामता कमलेश, आपका संबंध अमरावती विश्वविद्यालय से भी रहा, मेरठ विश्वविद्यालय से भी रहा, और भी कई विश्वविद्यालयों से आप जुड़े रहे, लेकिन जेएस हिंदू कॉलेज अमरोहा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को आपने बखूबी संभाला और बहुत सारे विद्यार्थी तैयार किए जिन्होंने आपके

0: तो वहाँ जब यहाँ वहाँ निकली
1: अमरोहा में,
0: अमरोहा में तो मैंने अप्लाई किया
1: जी।
0: इसके पूर्व मैं सखना जी साहित्य संदेश संपादक रहा हूँ, ये आप बताऊँ साहित्य संदेश का संपादक मैं रहा जब आगरा में था, तो उसके बाद साहित्य संदेश संपादक हुआ, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं वहाँ से जब वहाँ निकली तो मैं यहाँ पर आया, जब मैंने अपने सारे प्रकाशन दिखाए साहित्य संदेश संपादक, तो मेरा चयन यहाँ हो गया। और इससे बड़ी कृपा रही कि मैं वन मैन डिपार्टमेंट था, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी था, सब कुछ था, कॉलेज छोड़ा था, तो मैं यहाँ आ गया और यहीं से फिर हमें काम करने का अवसर मिला साहित्य के क्षेत्र में। फिर अमरोहा देख, मेरे साहित्य को देख करके, अरे आपने कैसे लिख दिया, साक्षात्कार पूछा कि इतना कैसे लिख दिया आप, तो बहुत छोटे हैं। हमने कहा साहित्य का छोटे बड़े से नहीं होता है, रुचि से होता है।
1: जी, जी।
0: अभी आपने, हमने कहा था अपने पूर्व व्याख्यान में कि अमेठी की बात कर, तो मलिक मोहम्मद जायसी मैंने लिखा था, पहले लिखा था कि वो वहाँ का गौरव है, उनके नाम से अमेठी जाना जाए। अब तो दूसरे ढंग से जाना, उस विषय में नहीं बोलूंगा,
1: जी, जी।
0: लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वहाँ का है, तो वहाँ से जुड़ा मैं अमरावती विश्वविद्यालय यहाँ आया, फिर यहाँ रहा मैं, यहीं से फिर रुचि रही। मैं मार्शल्स करस्पॉन्डेंस किया है, वहाँ किया है, क्या सब चलता रहा, सब हमारे लेखन सब लोग प्रभावित थे, पत्रिकाएं जाती रहती थी, बहुत से लोगों मैंने लेख भी छापा था। तब तो वहाँ जब चुनाव हो गया मेरा, तो अमरोहा आया, अमरोहा से फिर मुझे जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा, और विदेश जा करके मैंने बहुत देखा कुछ करना। मेरी एक बेटी है, पहली बेटी है जयश्री, तो उसने एक बात हवाई अड्डे पर कही थी, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर
1: जी,
0: तब वो पालम एयरपोर्ट था, बात को हुआ कि पापा आप जाते रहे, कुछ ऐसा नाम करके आना कि जो लोग आप जाने। ये चेतना हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चों ने, हमारी बेटियों ने सबने दिया, ऐसा काम करके आना हा? कि लोग जाने। तो उस दृष्टि से मैंने ऐसा काम करने का कोशिश किया कि जो कुछ हो सके। तो मैं अकेला रहता था, लेकिन अपनी गाड़ी लेकर चारों ओर घूमता था, गांव-गांव जाकर के मैं बताता था कैसे कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, लिखा जाए। वहां से पत्रिका मैंने शुरू करवाई, श्रीनाम दर्पण जो, उसका पत्र अभी मेरे पास रखा हुआ है, पहला अंक मैंने वहां शुरू कराया था, है अब चल भी रही है। कैसे कैसे स्वागत सत्कार हो, कैसे लिखा जाता, कैसे पढ़ा जाता है, और क्यों लिखा जाता, वहां किस ढंग से करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, घर से बाहर बहुत दिनों तक रहे आप,
0: जी जी
1: सालों साल घर से बाहर रहना हुआ, तो इस बीच में आप अपनी जो जिम्मेदारियां थी परिवार के प्रति, उन्हें किस तरह से पूरा कर पाए, और किस तरह का सपोर्ट आपको अपनी सहधर्मिणी से मिला?
0: ऐसा है कि बड़ा भावुक प्रश्न है ये। मैं जब जाने लगा थे, मेरे समय चार पुत्रियां थी और अब भी जा रही हैं। सबसे छोटी बेटी थी इलाश्री, तो मेरी बड़ी बेटी, मेरी पत्नी शांति देवी है। जब वहाँ हुआ तो बच्चे रोने लगे, पापा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाऊँ, बच्चे रो रहे हैं, पापा कहाँ जा रहे हो? तो ऐसा होता है कि पति ने मेरे कहा आप जाइए, मैं इनको संभाल लूँगी, जबकि इन तीनों बच्चों, चारों बच्चों को गवर्नमेंट दे रही थी एयरपोर्ट, पासपोर्ट बन गया, टिकट भी सब कुछ था, लेकिन कहा
1: उस वक्त बच्चे भी छोटे छोटे
0: छोटे थे, लेकिन हम कहा ले जाऊँगे दो साल, फिर लौटना तीन साल में है, तो ना इधर के रहें ना उधर रहेंगे। तो हमने कहा, तो पत्नी ने कहा मैं संभालूंगी जाओ। तो जब हमारी पत्नी ने उनको संभाला है, पढ़ाया लिखा सब कुछ हमें सब कुछ मिलता था, लेकिन इन बच्चों ने, इसलिए मैं, हमारी सबसे छोटी पुत्री है, हैं बहुत छोटी थी वो, तो पड़ोस में रहती, तो बच्चे को डांटे डपटे कर, तो लिखती चिट्ठी पापा जल्दी आओ, मुझे ये बच्चा ऐसा मारा, ऐसा ले आना, ये कर, तो वो नहीं समझ आया सूरीनाम कहाँ है। तो ये सब भावना नहीं, बल्कि ये था कि हमें कुछ करना है, और साहित्य के क्षेत्र में ये सब एक अंतर आत्मा, हमें ये नहीं था कुछ करना है पैसे के लिए, नहीं था हमें कुछ करना है कि लोग जाते हैं रहे होटल में और चले आए, कुछ करते नहीं, बस आप ऐसा कमाया चले आए, नहीं कुछ करके जाओ कि आपको याद करें, तो याद करने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिवार ले जाए तो उनको पालन पोषण लगा रहता, तो मुझे पूरा रात दिन 24 घंटे मिल जाता था कि मैं खूब घूमूं, खाऊं पीऊं और सब कुछ काम करूं, ये सब चाल।
1: हिंदी साहित्य को आपने लगभग लगभग सभी विधाओं में कुछ ना कुछ सौंपा है
0: जी,
1: आपने उपन्यास भी लिखे हैं, आपने कहानियां भी लिखी हैं, निबंध एवं गद्य भी लिखे हैं, बाल साहित्य के प्रति भी आपका रुझान रहा है, और सबसे बढ़कर अनुवाद कार्य आपने किए हैं। इन सब विधाओं में आपके दिल के करीब कौन सी विधा है?
0: सबसे हमारे दिल के करीब तो हमारी कहानी विधा है।
1: अच्छा,
0: कहानी मैं जीवन के लिखता हूँ, और बड़ा गर्व है कि आज इस आकाशवाणी बैठा हूँ कि पेट की आग मेरी कहानी यहाँ से प्रसारित हुई थी है?
1: जी।
0: और वो कहानी तब आकाशवाणी पत्रिका निकलती थी, उस आकाशवाणी पत्रिका में भी छपी थी है? और ये अब वो आकाशवाणी पत्रिका बंद हो गई शायद है?
1: जी, आकाशवाणी पत्रिका बंद हो गई, लेकिन आकाशवाणी अभी भी नियमित रूप से कार्यक्रमों में कहानियों का प्रसारण करता है।
0: प्रसारण तो करता है, लेकिन पत्रिका नहीं है, तो उस पत्रिका में भी सबसे अच्छी कहानी थी पेट की आग, तो उसने उन्होंने छापा था, तो पेट की आग पर मैंने एक कहानी संकलन पूरा तैयार कर लिया
1: तो इसमें किस तरह की मनोदशा वाली कहानियां हैं, क्या विषय हैं, क्या संवेदना है?

0: है कि आपके जीवन में क्या होता है, परिवार के साथ क्या होता है, समाज में क्या होता है। जैसे मैं एक बात बताऊं कि पेट की आग कहानी है छोटी कि एक नौकरानी है, वो नौकरानी देख रही है आज साहब बड़ा खाना पीना बन रहा है
1: जी जी,
0: तो उसके मन में लालच आया कि भाई आज तो हमें भी खाना मिलेगा, हमें मिलेगा है, आज बढ़िया सेठ जी के यहाँ काम हो रहा है। तो एक उसके एक स्वभाव होता है नौकरों का, भाई हमें भी मिलना चाहिए। तो उसके मन में क्या क्या भावना उठी कि अब पूरी तली जा रही, महक आ रही, अब सब्जी चली जा रही, अब खीर बन रही है, ऐसा भी हो रहा है, तो वो देख देख करके प्रसन्न होती थी। तो अब जब मैं आपको इस कहानी थोड़ा सारांश बता दूं, जब सब लोग खाने लगे तो वो सोचे कि यार सब लोग तो खा रहे हैं, अब पता नहीं मेरे लिए कुछ बचे कि ना बचे, ये मन में था। तो वो मन में बैठे बैठे वो कहानी की नायिका जो थी, तो वो जो है कि हमें मिले ना मिले ये मन में था, तो मन में था तो वो सोची नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या क्या भावना उठती है, अब मिलेगा तो कैसे मिलेगा, होता है सर जूठन मिल जाता था अच्छा था वही अच्छा रहे, अब जो आपस में मेहमान लोग जब बात कर रहे थे बड़ा सब्जी अच्छी बनी साहब, खीर बहुत अच्छी बनी, तो ये सुन करके वो अरे भाई बड़ा अच्छा हो रहा है, तो ये जब हुआ तब वो पेट की आग कि हमें भी मिल जाता अच्छा था। लेकिन एक स्तर का भाई उनको साथ खिला नहीं सकते थे उनको उस तुरंत, तो हमारे यहाँ रिवाज अपने आप भाई नौकरों को बात तो खिलाते हैं, ये हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर आप नौकरों को सदैव रखना है तो पहले उनका पेट भर दो तब अपना काम करो। ये आज तक मुझे एक भाई नौकर को पहले संतुष्ट कर दो, नहीं नौकर वो कुड़ता रहेगा वो आप बात कर, तो इसलिए जो है तो ये सारी एक बात, अभी महादेवी बात आई, महादेवी ने अपने संस्मरण लिखा है कि नौकर को आप कहते साहब दूध लाओ चाय लाओ आप खाने का, तो कहते अरे भाई आपको चाय की इच्छा, तो क्या नौकर को चाय की इच्छा नहीं है क्या, खाने उसको ज्यादा लग रहा है नहीं लग रहा, उसे भी ज्यादा लग रहा
1: है, इंसान है
0: वो भी इंसान है, ये महादेवी ने कहा था, महादेवी को दर्शन मेरे हुए थे है? तो यह है कि आप नौकरों को भी सोचा करो, लेकिन बहुत अरे भाई तो अभी क्या ज्यादा लग रहा है, अभी कहाँ इतनी ठंड आप तो एसी में बैठे हो, नहीं उन्हें तो ठंडक लग रही है, तो उन्हें भूख लग रही है, ये सारी स्थितियों को देख करके तो ये तो अब कहानी का मैं कहानी अच्छी है तो दो एक कहानी और भी आप यहाँ पर, अब तो आप लोगों ने हमें दूसरे सब क्षेत्रों में कर लिया है। ये
1: आपका व्यक्तित्व है कि हर विधा में आपकी दक्षता है और आदर के साथ आपका नाम, चाहे निबंध का क्षेत्र हो, उपन्यास की बात हो, बाल साहित्य की बात हो, अनुवाद की बात हो, उसमें डॉक्टर कामता कमलेश का नाम बड़े ही आदर के साथ सम्मान के साथ लिया जाता है। आपका एक उपन्यास है कि उसका नाम विनय था, तो विनय के माध्यम से आपने क्या कहने की कोशिश,
0: विनय का एक कहानी का नायक है। देखिए मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ और मैं उस समय जब शिक्षा का प्रसार नहीं था और इतना अधिक संचार व्यवस्था नहीं थी, तब तार जाता चिट्ठी जाती थी, चिट्ठी के लोग लिखाने आते थे, लिख दो चिट्ठी, आज की स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग थी। तो वो विनय था, तो विनय को ने बड़ा संघर्ष किया है, शादी ब्याह और उसके पिताजी बड़े वो थे, गरीब थे हैं, तो वो विनय कहे मैं दहेज नहीं लूंगा, पिताजी को सबको साफ दहेज लेना चाहिए हैं, तो पिताजी कर्ज लेकर के शादी ब्याह करने की तैयारी थे, कराऊंगा सोना चांदी मिलेगा जो कुछ होगा। जब वो लूट लिया जाता है उसका पिता, जब जाता है बाजार में अमेठी के बाजार में जाता है, बाद में उसी जंगल में जहाँ जो जंगल पहले रामनगर का जंगल था, जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी जंगल जंगल रामनगर कहते हैं, तो बड़ा घना जंगल था, वहाँ पर भेड़िया उड़िया सब मिलते थे, सब कुछ मिलता था, तो उसी जंगल में उसे लूट लिया गया। तो वो कहता था कि अब जब लूट लिया गया तो विनय ने कहा लूटे अब मैं शादी अब मुझसे करूँगा, तो विनय ने कैसे संघर्ष किया इस अंधविश्वास नहीं बल्कि रीति रिवाज जो चल रहा था कि दहेज लेना चाहिए, सौगात मिलनी चाहिए, सौगात के लिए जो है सौगात प्रेम से दिया जाए, बंधन से ना दिया जाए। तो विनय एक बात और बताऊँ, इसका कुछ पोर्शन थोड़ा सा फिजी की यात्रा में वहाँ के एक अच्छे फिल्मकार थे, उसका कुछ पोर्शन का वहाँ फिल्मीकरण किया है।
1: अच्छा।
0: कुछ फिल्मिंग थोड़ा सा, अब वो खत्म हो गया तो थोड़ा सा
1: टेली
0: उसमें मैं भी थोड़ा सा बताया, उसमें से बताया है, तो ये है, लेकिन वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो ये नहीं, उसको देख करके कैसे संघर्ष किया है ये सब।
1: अपने अनुवाद कार्यों के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए, किन किन भाषाओं के आपने अनुवाद हिंदी में किए हैं?
0: जी देखो मैंने अनुवाद किया गंकी है, अच्छी नेपाली का है, दूसरा स्वामी का बड़ा अच्छा उपन्यास है,
1: तो आप इन सब भाषाओं के जानकार भी रहे होंगे, अध्ययन भी किया होगा आपने।
0: देखो अनुवाद करते समय आपको अध्ययन करना, गंकी नेपाली का है, धुरस्वामी जी वहाँ अच्छे साहित्यकार हैं, अब तो नेपाली के साथ साथ वो अंग्रेजी में भी आया है, अंग्रेजी के माध्यम जो नहीं समझ पाए, तो बहुत से शब्द होते हैं जो नहीं समझ पाते, हमारे अवधि के शब्द हैं, भोजपुरी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, लोग नहीं समझ पाएंगे, ठेठ शब्द, अभी एक बात हो रही थी यहीं पर, तो कोई वो शब्द चले जो जनता जाने, लेकिन वो उसका अनुवाद नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन कैसे चाहे तो अंग्रेजी के माध्यम से हैं उसको देखा, फिर हिंदी के माध्यम से देखा, उसको अनुवाद किया और बड़ा अच्छा लगा वो, तो गंगी का अनुवाद मैंने किया। और बहुत सी उसका, जैसे मेरी कहानी का अभी आप बताऊं कि मेरी कहानी अभी मैं आकाशवाणी से कई केंद्रों से दिल्ली से तो बर्मी सेक्शन में गया था। तो हमारे पूर्वज जो कुछ लोग हैं बर्मा में पहले रहे
1: जी जी,
0: तो चंद्र प्रकाश प्रभाकर जी देहांत हो गया उनका, बर्मी सेक्शन के इंचार्ज थे दिल्ली में। तो बर्मीज का जब हमारी कहानी का अनुवाद होने लगा, इसी पेट की आग का उन्होंने किया है, तब मुझे वहाँ बर्मीज का वो आया, ध्यान आया। तो अनुवाद से जो होता है एक होता है कुछ पढ़ने का अवसर मिल जाता है।
1: बाल साहित्य हिंदी साहित्य का वो पक्ष है जिस पर आज बहुत कम काम हो रहा है, ना के बराबर काम हो रहा है। बाल साहित्य को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। तो डॉक्टर कामता कमलेश जी ने ऐसी क्या जरूरत महसूस की कि इसकी तरफ भी कोशिश की?
0: ऐसा होता है कि बाल साहित्य जो होता है बहुत ही भावुक होता है, उसकी भावना को समझ, लोग सोचते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ,
1: अपने धरातल से नीचे आना पड़ता है, बच्चों के मानसिक
0: मानसिक हमारी जो है अब काना कौआ है और कहानी इसमें
1: नटिया चला ननिहाल है,
0: माटी घोड़ा माटी की लगाम, ये सब ये कहानियां हैं, सब जानते हैं, लेकिन कैसे माटी घोड़ा माटी की लगाम है, बच्चा लगाम बना लिया है माटी घोड़ा पर बैठ रहा है, अब डंडे बैठ चल टिक टिक टिक टिक टक चल घोड़े, तो वो उसको आपको सोचना पड़ेगा, आप ड्राइंग रूम बैठ करके नहीं लिख सकते बाल साहित्य, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। आलोचना करते समय आलोचना की स्थिति में आप आइए, बच्चे बनिए, बच्चा वही बने जब आप बच्चों के साथ रहें, बच्चों की भावना के साथ। बाल साहित्य मेरे मार्शल की बाल साहित्य, विश्व की बाल साहित्य पर सब काम किया है, मार्शल बाल कहानियां हैं, नेपाली बाल कहानियां हैं, जो हमारी चार पांच किताबें हैं बाल साहित्य पर, तो बाल साहित्य काना कौआ है, काना कौआ लेकिन कौआ हमारा बड़ा कई पक्ष है इसके, है कौआ काना होता है, एक आंख इधर से होता है, लेकिन कौआ कितना हमारा धार्मिक पक्ष भी उसमें आ जाता है। नाटिया चल ननिहाल, ननिहाल जाकर कितनी खुशी होती है भाई, ननिहाल की बात बताऊं सक्सेना जी, ननिहाल रह करके वहाँ ब्याह भी बन जाता है, वहाँ कोई डांटने वाला है नहीं, माँ बाप तो यहाँ डांट देते, वहाँ नानी नाना तो बड़ा प्यारा होता है। ननिहाल का तो बड़े बड़े, अभी ननिहाल वाले प्रश्न कर लो तो नमालूम कितने बड़े बड़े लोग हैं ननिहाल में, आगे बढ़े
1: जी जी,
0: क्योंकि उस विषय को लूंगा तो ननिहाल पक्षी अलग हो जाता, ननिहाल तो बड़ा अच्छा होता है, है? नानी घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, है? है? मोटे होके आएंगे, तो ये सब चीज नानी के यहाँ होता है, अपने यहाँ नहीं हो पाता।
1: डॉक्टर कामता कमलेश, आपने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और बहुत सारे आपके लेख भी आए हैं इसके संबंध में। व्यवहारिक हिंदी को लेकर आजकल ये कहा जाता है कि हिंदी बहुत क्लिष्ट भाषा है और इसको वो स्थान दिलाने में उसकी क्लिष्टता आड़े आ रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
0: देखिए मंधुवर, हमारी हिंदी क्लिष्ट नहीं है, अभी आपको स्पष्ट करूं, आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी शब्द आप समझे ये प्रयोग में आ गया, व्यवहार में आ गया, व्यवहार आकाशवाणी सब समझते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पहले था, है ऑल इंडिया रेडियो में आया है, तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पंची ने नाम दिया था, ये आपको पता, दूरदर्शन और आकाशवाणी शब्द जो है ये पंची का दिया हुआ है, ये बहुत से कम लोगों को मालूम होगा, तो आकाशवाणी है पर नववाणी नहीं है, है? बहुत से लोग नववाणी चलाए कोश चलाए वो नहीं, लेकिन आकाशवाणी से तो व्यवहारिक जो व्यवहार में चले, राष्ट्रपति भवन सभी समझते हैं, प्रेसिडेंट हाउस नहीं समझ पाएंगे
1: जी जी,
0: समझिए आप ध्यान रखें अब, लेकिन व्यवहार जो चले, कोई भाषा किसी से प्रतिबद्ध नहीं है, रेल का टिकट ले आओ भाई, टिकट ले आओ, टिकट तो है लेकिन टिकट का हिंदी करोगे, जो व्यवहार में आ जाए जो हम समझ सकें, लाउड स्पीकर है लगा दो, माइक लगा दो, अब इसको ध्वनि विस्तारण यंत्र लगा दो, हाँ तो नहीं चलेगा, लेकिन व्यवहार में माइक है, लाउड स्पीकर है, तो व्यवहार का है, व्यवहारिक हिंदी चलना है, क्लिष्ट नहीं होती, क्लिष्ट को तो हम अच्छा शब्दकोश, जो शब्द बनते हैं कोश के लिए नहीं है, प्रयोग के लिए, फिर अभी बताता हूँ आपको स्पष्ट, आप रेल की यात्रा करते हैं, हैं एट वंस नहीं समझते आप कुछ
1: जी जी जी,
0: लेकिन अब हमारे यहाँ तत्काल टिकट चल गया, तत्काल सभी समझते हैं
1: जी जी जी,
0: तत्काल ऐसा होगा हर आदमी समझता है, लेकिन एडवांस लाओ, एडवांस टिकट ले लो, एडवांस टिकट नहीं मिलेगा, तत्काल जो हिंदी का शुद्ध हिंदी का है, और आप क्रिस्ट, तो ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, क्रिस्ट क्रिस्ट नहीं होता, हम प्रयोग में लाना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए।
1: तो आपने इसको भी पुस्तक का एक रूप दिया है?
0: हाँ जी हाँ, इसको भी दिया है, प्रयास किया है कि सब चीजें आ जाएं।
1: और आप जो रामचरितमानस की संख्या के बारे में बता रहे थे कि आपने उसमें संख्या वर्णित की है, तो उसके बारे में
0: हाँ
1: संक्षिप्त हो
0: जाए। देखिए ऐसा है कि रामचरितमानस सात कांडों का है, तुलसीदास जी का है, इसमें कितनी चौपाई, कितना दोहा, कितना छंद, कितना सोठा, कितना श्लोक है, ये लोग बहुत नहीं जान पाते हैं, तब दिया तो गया है लेकिन कौन कहाँ है भाई, रामचरितमानस में देख लो, रामचरितमानस इतना बड़ा काव्य कहाँ देखें, तो आप अगर उसको गिना जाए कि हर वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाए, अब कोश को कैसे बनाया जाए, तो उन चौपाइयों को गिना गया है, दोहों गिना गया और सौठों गिना गया, पहले उस कांड को गिना गया, कितने कांड है, 7 कांड है, उस कांड में कितने दोहा चौपाई सोठा छंद श्लोक है वो, और फिर रामचरितमानस में कितने हैं, यानी रामचरितमानस में गिनेंगे आप तो उसका कितना होगा, उत्तर कांड तक गिनेंगे आप कितने दोहे आए, आप मेरी बात समझिए कि उत्तर

0: बालकांड से लेकर वहां तो उत्तरकांड तक कितने दोहे आए, ये हमारी किताब में दिया गया है। और बालकांड में कितने दोहे हैं, अयोध्या कांड में कितने दोहे हैं, सुंदरकांड में कितने हैं, उत्तरकांड में कितने, ये सारी चीजें दी गई।
1: कितना समय लगा डॉक्टर साहब
0: इसमें? इसमें 5 साल लगा करीब। और एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैंने अकेला प्रोजेक्ट है।
1: अच्छा।
0: रात दिन मेरी पत्नी ने उसमें बड़ा सहयोग किया, हमेशा 4 घंटे बैठ करके मेरे पैर सूज जाए। और एक बात और बताऊं कि इस कांड इस कोर्स को लिखने के लिए मैंने सब पहले उनकी यात्रा की, अयोध्या की यात्रा किया, चित्रकूट की यात्रा किया, भरद्वाज आश्रम की यात्रा, लंका की यात्रा, रामेश्वरम की यात्रा किया, जहां जहां हो सका है यात्रा करने के बाद उसको शुरू किया है। क्योंकि इसका एक इतिहास है सक्सेना जी। लोग कहते हैं हिंदी क्या है, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ हिंदी के बल पर मैंने 7 महाद्वीपों को देखा, 7 महासागर में मैंने अपने पैर धोए हैं हिंदी के बल पर। हिंदी के बनो तो पहले।
1: जी जी जी, हिंदी की इतनी आपने प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं की, अपना सब कुछ कहेंगे समर्पित कर दिया
0: जी,
1: पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया, तो निश्चित रूप से बहुत उपलब्धियां भी आपके हिस्से में आई होंगी, बहुत सम्मान भी इस रास्ते में आपको मिले होंगे
0: जी। हाँ,
1: तो उसके बारे में
0: थोड़ा ऐसा है कि अभी अभी पिछले 1 साल पहले बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का हिंदी सलाहकार समिति का मैं सदस्य मनोनीत किया गया भारत सरकार के द्वारा। ये एक एक
1: उपलब्धि की बात,
0: उपलब्धि की बात। और पुरस्कार छोटे मोटे बड़े सब मिलते रहते हैं। अभी पिछले 30 मई को पत्रकार दिवस पर विष्णु प्रभाकर सम्मान मिला, अब बहुत सम्मान मिले, सम्मानों की तो एक है, सम्मान नहीं वो तो एक प्रकार से हमें और उत्साहित करते और करो।
1: डॉक्टर कामता कमलेश, बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं भी होती हैं और बहुत सारी अभिलाषाएं भी होती हैं जिनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कौन सी अभिलाषा जो अभी पाठकों के सामने आनी है?
0: अभिलाषा यही है कि हम ये चाहते हैं कि हर भाषा जो है, हर बोली जो है वो मधुर होती है, जहाँ जैसा प्रयोग में हो, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, है जिसमें आपका काम चल जाए, जिसकी जरूरत के अनुसार बोलो। आज जरूरत नहीं है, है यहाँ पर तो हम उसे क्यों बोले, यहाँ हिंदी जरूरत है, यहाँ मैं और शब्दों का प्रयोग करूँ, नहीं है, जो आपका पेट भर दे वो भोजन अच्छा है।
1: डॉक्टर कामता कमलेश, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, आपके ज्ञान सागर में से कुछ मोती हमने अपने श्रोताओं के लिए चुने, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके, धन्यवाद।
2: श्रोताओं, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत, तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत जिंदगी के आईने में की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती है आज की आपकी रेडियो साथी सुरिंदर कौर। साथियों, वन भवन में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ही शीर्षक पर आधारित कुछ हिंदी फिल्मी गीत और आज का शीर्षक है सनम। कार्यक्रम का पहला गीत दीवाना फिल्म से आप सुनेंगे, मुकेश की आवाज़ है और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

ये गीत आप सुन रहे हैं जहां आरा फिल्म से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की। इस गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने।

ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं चोरी चोरी फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर और मन्ना डे की। इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुरेंद्र कौर के साथ सुन रहे हैं मन भावन कार्यक्रम, और आज आपको हम सुनवा रहे हैं एक ही शीर्षक सनम पर कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत तीसरा कौन फिल्म से सुनिएगा। RD बर्मन के संगीत से सजा ये गीत गाया है आशा भोसले ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा यह खूबसूरत सा गीत है बिरजू उस्ताद फिल्म से, जिसे गाया है मुकेश ने।

0: प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते हैं एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संभल जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि कुमारी रिंकी पुत्री ब्रह्म सिंह निवासी शहजादी सराय थाना संभल जनपद संभल ये विगत 5 सितंबर 2024 से घर से लापता हैं। इनकी आयु 10 वर्ष है और शरीर की बनावट पतला शरीर है, गोल चेहरा, आंखें सामान्य हैं और रंग गोरा है, बाल काले हैं। जिन किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है अथवा मिले तो कृपया

क्षेत्राधिकारी भैजोई जनपद संभल को। इनका मोबाइल नंबर है 9454457659। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9454457659। एक अन्य फ़ोन नंबर पर भी आप इनको सूचित कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है प्रभारी निरीक्षक थाना AHT जनपद संभल। मोबाइल नंबर है 7839860093।

एक अन्य सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना गुन्नौर जनपद संभल हमें सूचित करते हैं। प्रियंका सिंह पुत्री दिनेश कुमार, जिनकी आयु 15 वर्ष है और ऊंचाई है 4 फुट 7 इंच, रंग गोरा है और ये 5 सितंबर 2019 से अपने घर सैजना मुस्लिम से लापता हैं। जिन किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। दिनेश कुमार, आधाराम सैजना मुस्लिम, मोबाइल नंबर इनका है 9759132724। मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9759132729। इनका हुलिया इस तरह से है, रंग गोरा है, कद 4 फुट 7 इंच है, नीले शर्ट, काली पैंट और पैरों में हवाई चप्पल ये पहने हुए हैं। एक अन्य पते पर भी आप इनको संबंध में कोई सूचना दे सकते हैं। सुभाष तोमर, उप निरीक्षक जांचकर्ता थाना गुन्नौर जनपद संभल, इनका मोबाइल नंबर है 7830007273। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है और इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं हमारी प्रथम सभा के प्रसारणों का। कार्यक्रमों की श्रृंखला का हमारा अगला कार्यक्रम है आप श्रोता साथियों का पसंदीदा लोकप्रिय फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

साथियों, आप सभी श्रोताओं के बीच हम आते हैं ये कार्यक्रम लेकर, और ईमेल पर आपकी फरमाइशें हमें मिलती हैं और हम कुछ गीत आपके नाम करने के लिए इस कार्यक्रम में हाजिर हो जाते हैं। तो हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी रेडियो साथी सुरेंद्र कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके बहुत से ईमेल संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। बस आपसे अनुरोध यही है कि कार्यक्रम के साथ शुरू से ही

जुड़े रहिएगा ताकि आप अपने संदेश को सुन सकें। तो चलिए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। इस पहले गीत को सुनने की फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुडाना जी, हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजिल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया हमें ये मैसेज कर रहे हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू और करण राहुल साहू और चंपा साहू हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है कुमार गली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुमार जी ने। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, आशु बबली और प्रियांशु साहू हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और सत श्री अकाल के साथ आप हमें खूबसूरत सा मैसेज लिख रहे हैं, आपका हर पल खुशियों से भरा हो यही अरदास और कामना करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार। मारहरा दरवाज़ा एटा के हमारे श्रोता नवी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, राशिद बारसी और अनम अब्बासी और साथ में हैं यशफ अब्बासी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब के साथ आपने ये खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुंचाया है। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से जुड़े हैं शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। और ये खूबसूरत सा मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोता दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से आप हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। और हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार के साथ आप हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले श्रोता कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू आप हमें मैसेज कर रहे हैं धनौरी तेलीवाला से। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोताओं ने मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी और शिवन्या गोस्वामी के साथ अन्नू गोस्वामी इस मैसेज को कर रहे हैं। गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन के साथ आप हैं मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर के हमारे श्रोता मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर साहिबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये मैसेज गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से आपके साथ राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रुधान खुराना हमें मैसेज कर रहे हैं नमस्कार के साथ। और साथियों इससे पहले कि कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचे, हम एक छोटी सी बात आपसे करना चाहते हैं। बात तो बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी छोटे से थोड़े से शब्दों में उसको निपटाते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी श्रोता जैसे कि जानते ही हैं कि हमारी आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो चले हैं और इन गौरवशाली वर्षों में हम अपने मन की भावनाओं के साल आकाशवाणी के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े रहे हैं लगातार और कहीं ना कहीं हमारा पूरा जीवन आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद लेते लेते सुनते सुनते गुजरा है और ये सुनहरा दौर हमारे जीवन का खजाना है। 90 वर्षों की इस आकाशवाणी को तहे दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं और आप सभी श्रोताओं को भी शुभकामनाएं और अपनी प्यारी प्यारी आकाशवाणी को हम सब

पहला गीत आप सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें थी और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आपकी हमें प्राप्त हुई है जनकपुरी सारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो, पल डिकास्ट्रो और विलीस डिकास्ट्रो हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता, आप कहां से हैं ये आपने लिखा नहीं है, और ये अगला मैसेज पहुंचाया है इंदिरा विहार दिल्ली के श्रोताओं ने, बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी और साथ में चंद्रनगर महाराष्ट्र से पथिक और आशा जाधव हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज टांडा शेरगढ़ से इकरार इदरीसी और सोनी इदरीसी का हमें प्राप्त हो रहा है। ये मैसेज भेजने वाले मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोता भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और साथ में हैं नगमा नाज मंसूरी। मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद के हमारे श्रोता शेख ज़ियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता पुराना तालाब डूमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी जी का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। बुल्डाना वर्षिंगी महाराष्ट्र के हमारे श्रोता अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार हमें नमस्कार के साथ ये मैसेज कर रहे हैं। और आपका मैसेज पाकुड़ झारखंड से हमें प्राप्त हो रहा है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सुअर्णव आनंद, सत्या आनंद और आपके साथ कुछ और नाम भी, वोड़छागासी पश्चिम बिहार के हमारे, पश्चिम बंगाल के हमारे ये श्रोता हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। और नमस्कार के साथ ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले श्रोता बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकम

गढ़ मध्य प्रदेश की हमारी श्रोता विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष ये मैसेज हम तक नमस्कार के साथ भेज रहे हैं। और जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े नमस्कार के साथ हमें मैसेज कर रहे हैं। ये अगला मैसेज भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से हमें प्राप्त हो रहा है, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग जी का। और ये अगला मैसेज ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें प्राप्त हो रहा है, श्री सुधाकर जादे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद और इनके साथ हैं कुमारी सानवी देशमुख और समस्त राजे जाधव और देशमुख वयाल परिवार। छत्रपति शंभाजी नगर से सुरेवाड़ी औरंगाबाद के हमारे श्रोता सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर और साथ में हैं सदानंद, विराज, अशुभन और ओवी। ये मैसेज हमें किया है भागलपुर बिहार के हमारे श्रोताओं ने, दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह जी ने। और अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता, नमस्कार के साथ आपने ये खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुंचाया है, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुल निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी जी ने आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है बाजार रोड मुंगीसापुर से। और ये मैसेज शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हो रहा है, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी जी का। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के नाम, राजपूत फिल्म से हमने ये गीत लिया है और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और साथियों ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर, रही सरिता गावणकर, प्रणीता, सिद्धांत गावणकर, अर्जुन गावणकर, टुक टुक, और आप ही के साथ हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के हमारे श्रोता वैशाली, शैलेश गावणकर, एकांश, सुमित गावणकर और कुमारी ध्वनि गावणकर परी। और ये अगला मैसेज पहुंचाया है हमारे श्रोताओं ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राय में राजहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से नमस्कार के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। शीशगढ़ बरेली के हमारे श्रोता इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम और असद बाबू आदाब के साथ ये मैसेज हम तक भेज रहे हैं। विनेश कुमार रागनी और मुस्कान बरेली कैंट चनेटी से हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र के श्रोताओं का, नासिर शेख, नाजिया नासिर और शाजिद शाहिद नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।

चंद्रनगर कॉलोनी से ये मैसेज कौशल्या जोशी, प्रमिला जानी और सोनाली, अंबाला से आशा और सुरेश का हमें मैसेज प्राप्त हो रहा है। और आप हैं पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा और हबीबा। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये मैसेज पोफाली ज़िला यवतमाल से हमें प्राप्त हुआ है, जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी का। और आप हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा से मऊ से आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। और ये मैसेज पहुंचाने वाले श्रोता वैष्णव कॉलोनी सनाबत से जुड़े हैं, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की हमें फरमाइश प्राप्त हो रही है। और ये मैसेज पहुंचाने वाले श्रोता गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छेलाल राय और बुल्की वाली फलना झा हमें मैसेज कर रहे हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से जुड़े हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र, देवेंदु भूषण और साथ में हैं संस्कृति और पौरुष। और ये मैसेज, इसमें कोई नाम नहीं है आपका। और आपका मैसेज कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें प्राप्त हुआ है, सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय नमस्कार के साथ हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और बीट शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेत्रे, अंजलि करवा और बाला साहिब करवा हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और आपका मैसेज हमें प्राप्त हुआ है भोपालगढ़ राजस्थान से, आपका ये दोबारा मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार जी। बिहार से रविंद्र मोहन और आशा देवी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ से रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, लड्डू जाटव और टुक टुक जाटव, उमरखेड़ से सिराज खान और शबाना खान हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज रघुवीर नगर से हमें प्राप्त हुआ है, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार हमें ये मैसेज नमस्कार के साथ भेज रहे हैं। और आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, जिसके बोल हैं सुन साहिबा सुन, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और साथी, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से आपके साथ अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है कोली नादेड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओंकार गायकवाड़ साथ में हैं, साईं गायकवाड़ जी। और ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं ग्राम नथाना पंजाब के हमारे श्रोता हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता। सेव वाटर सेव लाइफ इस मैसेज के साथ आप हैं गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन अफरीदी साहब। आप ही के साथ हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। और ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओं के हमारे श्रोता कमल पाठक और सुनील पाठक। चंद्रनगर सहारनपुर से प्रभा रानी जटोलिया, आशा सोनाली, सुरेश पथिक और रायगढ़ बिहार से उमा पवन, प्रभा रानी और आपके परिवार के सभी सदस्य। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है नरहन स्टेट जिला समस्तीपुर बिहार के हमारे श्रोताओं ने। विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन छोटू, अमन परासर, बेबी आराध्या, नूतन मिश्रा और ललन मिश्रा। जिला अमरोहा नई बस्ती पदे खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी साहब, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सिफान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया, अलीशा, शकील, फहीम और यासीन अंसारी, साथ में हैं सुदेश चौहान। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले हमारे श्रोता जुड़े हैं मोहाली चंडीगढ़ से सेक्टर 67 से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और आप ही के साथ कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

हिंगोली महाराष्ट्र के हमारे श्रोता शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, अंबेडकर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। तो आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा अगला गीत गुलामी फिल्म से, जिसे हमने लिया है। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार, और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रमेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और इनके साथ हैं निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और इनका समस्त कठेरिया परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा हमें मैसेज कर रहे हैं और ये मैसेज हम तक पहुंचाया है श्राफ रोड राजकोट के हमारे श्रोताओं ने, प्रेमा रानी, जाटव, जॉली डॉली और साथ में हैं सुरेश, गंज डुंडवारा से मास्टर फरहत और चमनपुरा से प्रमिला, दीपक और आशु जेटली हमें मैसेज कर रहे हैं और तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से हमें मैसेज किया है त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय राठौर, विकास राठौर, आकाश, शिवांशी और साथ में है प्रियंका और शिवाय राठौर। और सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगड़ा, अनुश्री ढींगड़ा, प्रमिला देवश्री ढींगड़ा और साथ में सहारनपुर से सुरेश डोम और आशु डोम हमें मैसेज कर रहे हैं और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनना चाहा है हमारे आप सभी श्रोताओं ने और आप सभी के नाम कार्यक्रम का ये अंतिम खूबसूरत सा गीत जिसे हमने लिया है प्यार झुकता नहीं फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और शबीर कुमार। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कुछ और मैसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं। आप हैं ग्राम जाखौत के हमारे श्रोता शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।

हमारे जो भी श्रोता जिस भी रूप में गीतों फरमाइशों के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आकाशवाणी रामपुर को यूं ही श्रोताओं सुनते रहिएगा और अपना प्यार का ये खजाना हम तक यूं ही भेजते रहिएगा। अब सुरेंद्र कौर को गीत आपके नाम कार्यक्रम से दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

हमारे श्रोताओं ने सुना फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर से प्रस्तुत किया जा रहा था। अपराह्न का एक बजने वाला है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते हैं एनटीए ने थोड़ी देर एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 1:05 और 7 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के विषय में संक्षिप्त जानकारी।

हमारे श्रोता आपसे बस थोड़ी ही देर बाद यानी 1:15 पर सुनेंगे नात कव्वाली का कार्यक्रम। आज इसमें फनकार होंगे इफ्तिखार अहमद और साथी। महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम कुमकुम हम लेकर आएंगे 1:30 पर। आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा भारतीय परंपराओं में वट अमावस्या, और इसके साथ साथ एक परिचर्चा भी आपको सुनवाई जाएगी। विषय होगा विश्व पटल पर भारतीय बेटियों के बढ़ते कदम। इसमें भाग लेंगे सरताज फातिमा, इरम जाहिद और सानिया जहरा। इनसे बातचीत करेंगी दीपशिखा। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए होंगे आपके लिए कुछ गीत। सुनहरा दौर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे।

6:10 पर चित्रपट संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे और 6:20 का समय है किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का। रात्रि 7 बजे सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत क्लारनेट वादन, राग होगा अहिर भैरव और कलाकार होंगे माबूद हुसैन। 7:31 पर सुनिएगा रेखा भारद्वाज और गुलाम अली की गाई हुई कुछ गजलें। गीत गाता चल रात्रि 8 बजे सुनिएगा फिल्म फरमाइशी फिल्मों का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम। आज इसमें ईमेल पर संदेश आपके आमंत्रित होंगे, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईमेल पर हमें फरमाइशी अपनी भेजिएगा। और 9:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स राउंडअप और रात्रि 10 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश हो, माफ़ कीजिएगा हेलो रामपुर आप सुनेंगे।

श्रोताओं, ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें नश्र होंगी। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ रुपए के 79 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रियासत में डबल इंजन की सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को रिहाइश, बेरोजगारों को नौकरी फराहम कर रही है।
1: आज बनटांगिया गांव में वो सब सुविधा है जो एक सामान्य राजस्व गांव में है। हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा है, हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत की सुविधा है, नौजवान के लिए रोजगार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब भर्ती हुई मैं देख रहा था कि महाराजगंज के भी है कि नहीं है, मैंने देखा कि सैकड़ों नौजवान महाराजगंज जिले से भी भर्ती हुई।
0: वज़ीर-ए-आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और टूल किट्स भी तकसीम करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासत में शदीद तूफान ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी और माली नुकसान के रद्देअमल में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासर इलाकों में जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम करने की हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब इम्तिहानात बगैर किसी फीस के होंगे। हम इस बात को

0: बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तुलबा पर माली बोझ न पड़े। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। जनाब प्रधान ने कहा कि आइंदा इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफियों से कहा कि अगले साल से नीट का इम्तिहान कम्प्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड के जरिए लिया जाएगा। वहीं एनटीए ने हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है। दोबारा इम्तिहान 21 जून 2026 को होगा। इससे कबल 3 मई को हुए इम्तिहान को पेपर लीक होने पर मंसूख कर दिया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शहरियों से ईंधन को बचाने की अपील के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन को बचाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई मुतबादिल तवानाई के जरिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कारपोलिंग को अपनाने पर जोर दिया है। लखनऊ में एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम से खिताब करते वजीर आला ने कहा कि बुहरान के वक्त कौमी मफाद को मुकदम होना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कौम के साथ खड़ा हो और अपना हिस्सा डाले। एलपीजी पर इन्हिसार कम करने के लिए बायोगैस प्लांट्स पर मबनी कम्युनिटी किचन मॉडल तैयार करने पर खसूसी जोर दिया गया। दरियास्ता मुल्क के जरात और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपीलों के जवाब में अपनी मुतालिका वजारतों और महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि वजीर आजम की अपील के मुताबिक वजारत की सतह पर 1 साल तक सोना खरीदने से बाज रहने का फैसला लिया गया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी काउंसिल की पार्लियामानी कमेटियों के तमाम पहले से तयशुदा दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया है। रियासत में देसी दूध की पैदावार को फरोग देने के लिए कल आगरा में एक डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद सम्मेलन। रियासत के मवेशी परवरी और डेयरी तरक्यात के वजीर धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बेसहारा मवेशी हुकूमत की तरजीह हैं। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद तेल कंपनियों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। महकमा मौसमियात ने आज से 18 मई तक रियासत में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने दिन के वक्त कुछ इलाकों में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले हफ्ते के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं टूर्नामेंट आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से 7:30 बजे लखनऊ में होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव और एफएम पर आप श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी का रामपुर केंद्र। श्रोताओं, समय हुआ है 1:15:24। आइए अब सुनते हैं नात कव्वाली। आज इसमें फनकार हैं इफ्तिखार अहमद और साथी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे इफ्तिखार अहमद और साथियों से नात कव्वाली। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव और 102.9 मेगा हर्ट्ज पर एफएम पर आप तक पहुंच रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। लीजिए अब शहरी महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम कुमकुम।

बट वृक्ष की जड़ों सा गहरा हो आपका प्यार, हर संकट में मिले जीवन साथी का साथ अपार। बट अम्बावसी के पावन पर्व पर यही है अरदास, सुख समृद्धि से महके आपका जीवन हर बार। नमस्कार सखियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम कुमकुम, और मैं हूं आपकी अपनी प्यारी सखी रजनी। भारतीय परंपराओं में बट अम्बावस्य, बट सावित्री का विशेष महत्व है, जो 16 तारीख यानी कल मनाया जाएगा। यह पर्व पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और नारी शक्ति के अटूट विश्वास का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति उस पावन आंगन में आप सभी का स्वागत है, जहां हर व्रत एक कथा है और हर परंपरा एक गहरा विश्वास। सखियों, जेठ मास का महीना हो, तपती दोपहरी लेकिन मन में श्रद्धा की शीतलता। आज बात कर रहे हैं उस पर्व की, जो अटूट सुहाग और नारी के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, बट सावित्री अम्बावस। सखियों, कहते हैं कि जब सती सावित्री ने अपने सत्य और तप के बल पर यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था, तब इसी बट यानी बरगद वृक्ष ने उस दिव्य घटना को अपनी आंखों से देखा था। आज भी हजारों सालों बाद सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर अपनी श्रद्धा और प्रेम की गांठ बांधती हैं। सखियों, बरगद का वो विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें पाताल और शाखाएं आकाश तक फैली हैं, हमें सिखाता है कि रिश्ते भी इसी तरह गहरे और मजबूत होने चाहिए, जो हमें सिखाता है कि प्रेम और संकल्प में कितनी शक्ति होती है। जेठ मास की अम्बावस और चारों ओर बरगद के वृक्षों के नीचे सस्ती महिलाओं की टोली। जी हाँ, ये एक व्रत नहीं है, ये उत्सव है उस सावित्री का, जिसने अपनी बुद्धिमता और दृढ़ता से नियति को बदल दिया था। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जब हम अक्सर रिश्तों की गहराइयों में भूल जाते हैं, ये पर्व हमें बरगद की जड़ों की तरह मजबूत बने रहने का संदेश देते हैं। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूजा के लिए सिर्फ बरगद यानी बट वृक्ष को ही क्यों चुना गया है? सखियों, शास्त्रों में बट वृक्ष को अक्षय माना गया है, जिसका कभी विनाश ना हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास इसमें माना जाता है। कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इसकी लंबी उम्र हमें रिश्तों में स्थिरता की सीख देती है। सुहागिन महिलाएं जब इसके पास सब महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, आज के आधुनिक युग में कुछ लोग इसे सिर्फ एक कर्मकांड कह सकते हैं, लेकिन गहराइयों से सोचें तो यह पर्व संयम और समर्पण का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि परिवार की नींव विश्वास की कच्ची डोर पर नहीं, बल्कि संकल्प के वो मजबूत धागों पर टिकी होती है। सखियों, आज की महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं, ऐसे में व्रत उनकी आंतरिक शक्ति का उत्सव है। सखियों, इस पर्व की आत्मा बसी है सावित्री और सत्यवान की कथा में। यह कहानी उस समय की है जब प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व के लिए लड़ जाना था। मध्य देश की राजकुमारी सावित्री जितनी सुंदर उतनी ही गुणवान, उन्होंने अपना जीवन साथी चुना सत्यवान को, जो एक वनवासी जीवन जी रहे थे। जब नारद मुनि ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु केवल एक वर्ष शेष है, तो सावित्री के कदम डगमगाए नहीं, उन्होंने कहा, पिताश्री, संकल्प एक बार किया जाता है और पति का चुनाव भी एक बार ही होता है। और एक सरल सी बात हो गई, वो जेठ अम्बावस की काली दोपहर थी, सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे थे, और सती सावित्री जो जानती थी कि आज का दिन भारी है, उनके साथ चल पड़ी। अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा हुई, वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी चारों ओर सन्नाटा छा गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं और सावित्री ने देखा कि सामने साक्षात यमराज खड़े हैं।
यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने मुड़कर कहा, हे पुत्री लौट जाओ, अब तुम्हारा साथ यही था। लेकिन सावित्री ने बड़े शांत भाव से कहा, प्रभु जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी को जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यमराज उनकी निष्ठा देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने चतुराई और विवेक का परिचय दिया। उन्होंने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज तथास्तु कहते गए। अंत में सावित्री ने कहा, प्रभु मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दे। यमराज ने बिना सोचे कह दिया, तथास्तु। सावित्री तुरंत मुस्कुराई और हाथ जोड़कर बोली, हे न्याय के देवता, एक सती स्त्री अपने पति के बिना पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है? आपने ही मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो आपको अपना वचन निभाने के लिए मेरे पति के प्राण लौटाने होंगे। यमराज शांत थे, वे सावित्री के प्रेम साहस और बुद्धि के आगे हार गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उसी बट वृक्ष के नीचे लौट आई जहां उनके पति का शरीर पड़ा था। सत्यवान ऐसे जाग गए जैसे वो गहरी नींद में सो रहे थे। यही कारण है कि आज भी स्त्रियां बट की पूजा करती हैं और सभी मिलकर यह गीत गाती हैं।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है

0: तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियों, आज का हमारा यह खास अंक समर्पित है उन हौसलों को जिन्होंने रूढ़ियों की बेड़ियां को तोड़कर अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो खेल का मैदान हो या अंतरिक्ष की अनंत यात्रा। भारतीय बेटियों के बढ़ते कदम इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और आत्मविश्वास का संगम होता है तो इतिहास रचा जाता है। आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में परिचर्चा। परिचर्चा में शामिल है हमारी बहन सरताज फातिमा जी, इरम जाहिद और सानिया जहरा, और संचालन कर रही हैं हमारी बहन दीपशिका। परिचर्चा का विषय है विश्व पटल पर भारतीय बेटियों के बढ़ते कदम।
6: देखिए, आज हम यहाँ पर जुड़े हैं एक विषय पर परिचर्चा के लिए, और वो विषय है विश्व पटल पर भारत की बेटियाँ। हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं सरताज फातिमा जी। सरताज फातिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद।
6: हमारे साथ हैं इरम जाहिद जी। इरम जी, आपका भी बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है।
8: धन्यवाद।
6: और सानिया जहरा जी, आपका भी स्वागत है।
9: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
6: इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में कौन कौन है, कि कौन कौन ऐसे हैं जिनके पास बेटियां हैं। सरताज फातिमा जी,
8: जी
6: आपके परिवार में कौन कौन है?
7: मेरे परिवार में मेरी भी दो बेटियां हैं, और माशाल्लाह खूब पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, और खुद जॉब भी करती हैं। अच्छा लगता है उनको देख के।
6: अच्छा, तो सानिया जहरा जी, आपके परिवार में भी बेटियां हैं?
9: जी, मेरे एक बेटा है और एक ही बेटी है। अभी मेरी बेटी 11 साल की है।
6: अच्छा।
9: लेकिन उसके होने से ही कितनी खुशी मुझे मिलती है, जब वो मेरे आगे पीछे दौड़ती है, भागती है, स्कूल जाने के लिए रेडी होती है।
6: मेरा प्रश्न इरम जाहिद जी आपसे है पहला, कि देखिए, जब बेटी हम खुद होते हैं, अब तो हम बड़े हो गए, शादी हो गई तो हम दूसरे घर चले गए, लेकिन जब आप बेटी थी तो किस तरह का माहौल था आपके घर में, किस तरह की परवरिश आपको मिली?
8: मैडम, मैं जब छोटी थी तो कुछ ऐसा माहौल था समाज का कि लड़कियों का जब पैदा होती थी लड़कियां, तो लोग अच्छा नहीं समझते थे। जिस घर में बेटी होती थी उसे बोझ समझा जाता था कि अब इसकी परवरिश करना है, फिर इसकी शादी करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो माँ बाप के लिए एक बोझ समझा जाता था बेटी को। लेकिन आज के समय में जो बेटियों की स्थिति है वो काफ़ी बदल चुकी है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। आप चाहे राजनीति हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। देश के हर नागरिक को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करा रही हैं।
6: अच्छा सरताज फातिमा जी, जैसे आपने बताया कि आपकी बेटियां हैं, तो जो आपने जो परवरिश पाई और जो आपने परवरिश दी, उसमें क्या अंतर महसूस करती हैं आप?
7: अंतर बहुत है। पहले हमारे माँ बाप का थोड़ा हम पे प्रेशर है, तो दबाया जाता था एक तरह से कि बाहर ना निकलो या किसी जेंट्स के सामने ना निकलो, थोड़ा दब के रहो टाइम टू टाइम। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। आज का समय हम तो खुद चाहते हैं कि अब हमारी बेटियां आगे बढ़े। माहौल देख के आजकल के समाज का, जो हमारा वक्त था वो हम जो हमने देखा वो हम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते।
6: अच्छा सानिया जी, जैसे आपने कहा कि आपकी एक बेटी है और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपके आगे पीछे घूमती है मम्मा मम्मा करके, आज जब हम जो परवरिश दे रहे हैं और जो हमारे माता पिता ने हमें परवरिश दी, उसमें अगर हम कोई कहें कि कोई बहुत बड़ा फर्क अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आया है वो परवरिश में?
9: मैं छोटी थी, हम चार बहनें हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त में भी हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी। हम इतनी दूर बस से पढ़ने जाया करते थे, और आज मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो ये परेशानियाँ मैंने झेली उसके बावजूद एजुकेशन हासिल करी, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करे। और मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया मुझे, और मैं चाहूँगी कि मैं भी अपनी बेटी को उसी तरह सपोर्ट करूँ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तालीम हासिल करे, बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हो।
6: इरम जाहिद जी, जैसा आपने कहा कि जब वो समय था जब आपका जन्म हुआ था, तो थोड़ा सा हम कहें कि जो मानसिकता थी वो ये थी कि अब बेटी है तो इस

0: कि शादी के लिए दहेज जोड़ना शुरू कर
1: जी
0: दो,
1: जी
0: बेटी आ गई है। लेकिन आज के समय में आपको क्या लगता है कि जो हमारी सोच है या समाज की सोच है, उसमें कितना परिवर्तन आया है?
1: देखिए, हमारी और समाज की सोच में तब से लेकर अब तक काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। तब लोग ये समझते थे जब बेटी पैदा होती थी कि उसकी शादी के बारे में, उसके परवरिश के खर्च के बारे में, लेकिन आजकल के लोग ये मानते हैं कि हमारी बेटी को खूब पढ़ाना लिखाना है,
0: जी,
1: उन्हें हर क्षेत्र में आगे
0: अच्छा,
1: बढ़ाना है।
0: पढ़ाई भी देखिए, पहले जो पढ़ाई होती थी बेटियों की, वो बस ये मान के चलते थे कि चलो बीए एमए कर लिया तो बहुत है।
1: जी
0: अब लेकिन जो पढ़ाई है उसमें भी लड़कियां जो हैं वो टेक्निकल जो
1: जी
0: विषय
1: जी
0: हैं
1: जी
0: उसकी भी पढ़ाई करती दिखाई देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम जो लड़कियों के कदम बढ़े हैं टेक्नोलॉजी की तरफ,
1: जी
0: वो कितना बड़ा परिवर्तन है?
1: देखिए, वो तो काफी बड़ा परिवर्तन है कि आज देश की बेटियां जो हैं बेटों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आप देख लिए, चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेटियां हर जगह टॉप कर रही हैं, वहां ओलंपिक्स में भी मेडल जीत रही हैं देश की बेटियां।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल। अच्छा देखिए, सरताज फातिमा जी, अकरम जी ने जिक्र किया कि जो बेटियां हैं उनके कदम खेल से लेकर और हम कहें अंतरिक्ष तक हर जगह पे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ी हैं वो?
2: जब हम विश्व पर भारतीय महिलाओं की बात करते हैं तो कल्पना चावला का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचकर भारतीय बेटियों के लिए सपनों का एक नया द्वार खोला। उनके बाद सुनीता विलियम्स ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में इसरो में मंगलयान और चंद्रयान महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका ने दुनिया को एक संदेश दिया कि जटिल तकनीकी और वैज्ञानिक गणनाओं में भारतीय मस्तिष्क अग्रणी है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाने वाली रितु करदियाल जैसी महिलाएं आज दुनिया भर के शोध संस्थानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
0: जैसे आपने इतने बड़े बड़े नामों का जिक्र किया, कल्पना चावला हो गई हैं आपकी, महिलाओं में जो प्रेरणा का स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है? क्या वो एक माँ है, या वो पिता है, या वो समाज है? आपको क्या लगता है इरम जी?
1: बेटियों को प्रेरणा, देखिए, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी बताती थी कि जब तुम पैदा हुई थी तो मतलब लोगों को बहुत बुरा लगा था कि बेटी हो गई है तो इसका कैसे होगा पालन पोषण, फिर इसकी शादी के लिए खर्च। तो मेरी मम्मी ये नहीं चाहती थी कि जो बातें वो सुन रही हैं वो कल को मैं भी सुनूं।
0: बिल्कुल
1: जी, तो वो ये चाहती थी कि मैं अच्छी एजुकेशन लूँ, आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ।
0: जी, एक महिला ही महिला को हिम्मत देती है, जिससे जो आज हम कहते हैं कि ना विश्व में हमारी जो स्थिति है, जो महिला की एक स्थिति मजबूत हुई है, वो कहीं ना कहीं एक महिला के आत्मविश्वास या उससे कहेंगे उसके आपसी सहयोग की वजह से ही हुआ है। तो सानिया जहरा जी, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, तो आप क्या कहेंगी कि ये जो क्षेत्र हैं ये महिला के लिए कितने मुश्किल रहे होंगे, या हम कहेंगे इसमें अपनी छाप छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करी होगी
1: देखिए,
0: उन्होंने?
1: जब एक टाइम था जब दुनिया के बड़े हिस्से में बेटी का जन्म वो समझा जाता था, घर में ही उनके जीवन का अंत कर दिया जाता था, लेकिन फिर एक नई सोच का उदय हुआ कि जैसे कुछ 44 देशों में ये माता पिता की जनसंख्या इस बात को मतलब फर्क नहीं समझती है कि मेरा बेटा हुआ है या बेटी हुई है। अब इस फर्क को बहुत हद तक मिटा दिया गया है। इस बदलाव के पीछे शिक्षा सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी है। जब जब लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर मिले, उन्होंने न केवल अपनी क्षमताएं सिद्ध की बल्कि समाज की शिक्षा की दिशा भी बदली। भारत सहित कई देशों में बालिका शिक्षा, छात्रवृत्ति, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में लड़कियों के जीवन पथ को बहुत आसान बना दिया है। अब जैसे भारत की बेटियां अब राजनीति में, प्रशासन में, कॉरपोरेट में अग्रिम पंक्ति में हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सेनाओं में नेतृत्व कर रही हैं, वैज्ञानिक में हैं, खोजों में अगुवाई कर रही हैं और वैश्विक संस्थानों में नीति निर्धारण का भी हिस्सा हैं। ये परिवर्तन इस बात का सबूत है कि अवसर मिलने पर प्रतिभा लिंग नहीं देखती कि वो बेटा है या बेटी है, बल्कि वो सिर्फ सफलता निश्चित करती है।
0: अच्छा देखिए, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनके कदम रुक ही नहीं रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। अब अगर खेल जगत की ही बात कर लें तो पीवी सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं, मैरी कॉम हैं, तो ये वो नाम हैं जो कि हम कहें कि जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि इंसान शक्ल सूरत सब भूल सकता है लेकिन ये नाम शायद कभी नहीं
2: जी
0: भूल पाएगा। सरताज फातिमा जी, खेल जगत में उसके जो कदम हैं वो इतने मजबूती से पड़े हैं।

0: कितनी लड़कियां आपको लगता है कि प्रभावित होंगी इन नामों से?
1: खेल के मैदान में भारतीय बेटियों ने उन रूढ़ियों को तोड़ा है जो ये कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो पहले जमाने में लोग कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगी, लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, कुछ गेम में नहीं आगे बढ़, लेकिन आजकल के माहौल देखिए तो पीवी सिंधु है, सायना नेहवाल है, मेरी कॉम है और मीराबाई है जैसी एथलीटों ने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत कर तिरंगे का मान बढ़ाया है, अपने भारत का मान बढ़ाया है, भारत का नाम रोशन किया है। क्रिकेट के मैदान में मिताली राज और हरमनप्रीत कौर ने महिला क्रिकेट को वो पहचान दिलाई कि आज दुनिया भर में भारतीय महिला क्रिकेट को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये बेटियां केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों उन लड़कियों की उम्मीद है जो छोटे गाँव से निकलकर विश्व विजेता बनने का सपना देखती है।
0: सही कहा आपने कि देखिए जो भारतीय बेटियां हैं वो सिर्फ खेल कूद के मैदान में नहीं है, बिजनेस भी चला रही हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था कि एक औरत तो घर ही चला सकती है ना, वो बिजनेस क्या चलाएगी। सानिया जी आप क्या कहेंगी इस पर?
2: देखिए मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय महिला उद्यमियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। फाल्गुनी नायर जैसी महिलाएं भारत की सबसे सफल स्वनिर्मित महिला अरबपतियों में शामिल हैं। किरण मजूमदार शॉ हैं, बायकॉन में बायोटेक क्षेत्र में वैश्विक मान्यता हासिल की है। वैश्विक संस्थाओं में भारतीय नारी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो वैश्विक आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रही है।
0: जी अच्छा सरताज जी देखिए जैसे एक समय था जब ये कहा जाता था कि महिला बहुत कमजोर है
1: जी,
0: कि वो अपनी रक्षा, आप क्या कहेंगे इस पर?
1: देखिए मैम भारतीय साहसी छवि प्रस्तुत करती हैं
0: कि जब इतने सारे बदलाव हो रहे हैं हमारे आसपास तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। इरम जायदा जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की
2: है, लेकिन उन्हें अभी भी सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिससे समाज में आज भी बेटों को बुढ़ापे का सहारा और बेटियों को पराया धन या बोझ समझने की रूढ़िवादी सोच है। भेदभाव और समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम आंका जाता है जिससे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सी लड़कियों को पढ़ाई या करियर के बीच में शादी कर दी जाती है जिससे उनका करियर वहीं रुक जाता है। घर से बाहर निकलने पर छेड़छाड़, अन्य अपराधों का डर लड़कियों की शिक्षा और रोजगार में सबसे बड़ी रुकावट है। और परिवार में कभी कभी असुरक्षित रास्ते का कारण भी लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती हैं, तो यही छेड़छाड़ अन्य अपराधों का डर लड़कियों की शिक्षा और रोजगार में सबसे बड़ी रुकावट है। और परिवार में कभी कभी असुरक्षित रास्ते का कारण भी लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती हैं, तो यही सारी चुनौतियां लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा कारण है।
0: जी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सानिया जहरा जी आपसे कि आप अपनी बेटी को इस विश्व पटल के लिए किस तरह से तैयार कर रहे हैं?
2: देखिए सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि जो शिक्षा की पहुँच है वो बहुत आसान होनी चाहिए, ना कि बहुत मुश्किल है कि फिर बच्ची परेशान हो। तो ग्रामीण इलाकों में कभी कभी शहरी इलाकों में भी जो उसकी शिक्षा की जो कमी है या उसका दूर होना है उसको सबसे पहले हमें ख़त्म करना होगा। और दूसरी बात है कभी कभी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होते हैं उनमें लड़कों की शिक्षा को तो प्राथमिकता दी जाती है लेकिन लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनकी पढ़ाई या तो
0: अच्छा। और ये कहा जाता है कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम्हें तो भाई घर ही देखना है, बच्चों को ही संभालना है। तो ये जो एक सोच हम कहेंगे कि अभी भी कुछ घरों में, मैं ये कहूंगी कि कुछ घरों में है, ऐसा नहीं है कि काफी लोग तो इस सोच से उभरे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि तुम पढ़कर क्या करोगी, कौन सा तुम्हें जाके देश को चलाना है। तो जो राजनीति है उसमें भी हम देख रहे हैं आजकल की जो महिलाएं हैं वो सक्रिय होती जा रही हैं। तो जो राजनीति है, इरम जाहिद जी आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में जो महिलाएं आ रही हैं तो वो क्या सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छा कर रही हैं, देश को एक महिला अच्छे से चला सकती है क्योंकि वो ये समझती है कि भाई एक परिवार की सारी जो भी लोग हैं उनके मन की बात अगर वो समझ सकती है तो ये जो देश है एक परिवार ही है, बड़ा परिवार है।
2: बेटियां नई ऊंचाई पर है लेकिन उसके साथ ही उनके सामने कई बार गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। खेल में, विज्ञान में, राजनीति हो, कॉरपोरेट हो, उसमें सफलता के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी सामाजिक ढांचे और पेशेवर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने कार्यस्थल पर जहां वो काम कर रही हैं वहां ऊंचे पदों पर काम करने के बावजूद भी सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए।
0: जी
1: देखिए वैश्विक राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भारतीय मूल बेटियों ने वो मुकाम हासिल किया है जो पहले असंभव माना जाता था। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का इस पद पर तक पहुंचना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसी

0: प्रकार निकी हैली जैसे नामों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी गहरी पैठ बनाई। भारत की अपनी राजनयिक महिलाएं जैसे कि रुचिरा कम्बोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष दृढ़ता से रख रही हैं, जिससे वैश्विक नीति निर्माण में भारतीय नारी की आवाज गूंज रही है।
1: बिल्कुल, अपनापन दे पाए, जिससे कि वो ये महसूस कर पाए कि हम भी जरूरी हैं। एक बेटे की तरह एक बेटी को भी वो साहस देना जरूरी है कि तुम भी जरूरी हो। ये पहचान, ये सम्मान उसके लिए बहुत जरूरी है। और आज आप लोग सरताज फातिमा जी, रमजाहिद जी, सानिया जहरा जी, आप इस परिचर्चा में शामिल हुई और आपने अपने इतने अनमोल विचार हम तक पहुंचाए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
3: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी परिचर्चा। परिचर्चा में शामिल थी सरताज फातिमा जी, इरम जाहिद जी, सानिया जहरा जी। परिचर्चा का संचालन कर रही थी हमारी बहन दीपशिखा सक्सेना। परिचर्चा का विषय था विश्व पटल पर भारतीय बेटियों के बढ़ते कदम। अपनी सखी रजनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम कुमकुम। कुछ ही पलों में 2 बजेंगे और आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात

0: भारत, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर की। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स परेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं।

0: अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विद्युत सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला

0: ग्रुप फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की अलीना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की ईगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप श्रोता जुड़े हैं आकाशवाणी रामपुर की पहली सभा के कार्यक्रमों से। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 और 20 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज आपके लिए इसमें होंगे 2000 दशक के कुछ हिंदी फिल्मी गीत।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। स्वीकार कीजिए सुरेंद्र कौर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आपको आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।

अभी श्रोता सुन रहे थे चलते चलते फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था अभिजीत ने और अलका याग्निक ने। गीत में संगीत दिया था जतिन ललित का था संगीत, और वो लिखे थे जावेद अख्तर ने। अब कार्यक्रम का अगला गीत फिदा फिल्म से, गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक।

कार्यक्रम में अब सुनिए हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से, अलका याग्निक की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, जिसे संगीत दिया है अनु मलिक ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

हमारे श्रोता सुन रहे थे अभी क्या कहना फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत, और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हमने लिया है देवदास फिल्म से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल। इस गीत को संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

इसी गीत के साथ सुनहरा दौर कार्यक्रम से अब सुरिंदर कौर को दीजिएगा अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर से आपके लिए कुछ गीत लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे 2000 दशक के कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न की 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। अब से लेकर संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। संध्या 5 बजे अपनी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना।
0: जी,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को
0: जी
1: चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं
0: परिवार
1: आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
0: सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों
0: बिल्कुल
1: को संभालने
0: बिल्कुल
1: के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत निश्चिंत होके बेफिक्र होके मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है, और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
2: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
1: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
2: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
1: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
2: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
2: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
1: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
2: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
1: और सच
2: ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
1: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
2: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
2: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
1: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
2: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ,
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: इसके लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी। परिवार
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं के
0: जी
1: आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। बहुत
0: जी
1: महत्व है सभी के लिए
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना।
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी, बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी, बिल्कुल शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, अंबिका
0: क्या नाम है आपका?
1: विजय मारवाड़ी,
0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से, शिरपुर
0: शिरपुर से फोन लगाए।
1: जैन।
0: जी
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं चलाती।
0: मेस चलाती हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके।
1: हाँ, खुशी मिलती। खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने को तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं
1: खुश हो
0: लगता कि मैं
1: जाते,
0: इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। और रेडियो सुनती हैं आप? कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको? हेलो
1: तो हेलो फरमाइश,
0: फरमाइश।
1: गाने सुनते हो तो रहता रेडियो है दिन
0: दिन भर
1: भर।
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो
1: हाँ,
0: सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव।
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं,
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है। जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सच मुझे यानी
1: हाँ
0: परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे। देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए,
1: और
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं,
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, क्या
1: नमस्ते। मेरा
0: नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है। हाँ
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए
1: हाँ
0: सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना?
1: बहुत
0: और रेडियो सुनना पसंद है आपको? कौन
1: बहुत पसंद है हमको।
0: सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: हाँ, लक्ष्मी विलास भोले,
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम खाली।
0: घर का काम करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती हैं कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप, कभी खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, मैं तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चे का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए न माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें।
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद हाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में।
1: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोयम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
1: हाँ
0: घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना।
1: हाँ हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर
1: मशीन से।
0: है ना।
1: हाँ हम अकेले ही सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
1: हाँ कही
0: खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूं, तो ऐसा कुछ करती हैं आप।
1: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
0: और उसमें आपको
1: और
0: खुशी
1: जब
0: मिलती है।
1: खुशी मिलते हैं। हाँ अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी
1: हाँ
0: खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ
1: हाँ
0: जीवन
1: हाँ
0: जीते हैं।
1: हाँ जी
0: तो बस खुश रहिए,
1: हाँ
0: मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
1: हाँ
0: आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी,
0: जी, और आपने
1: 2 महीना
0: पसंद
1: से छटपटा रहे थे। हाँ जी कब 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो
1: सत्यम
0: बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं।
1: शिवम सुंदरम
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए अपने
1: हाँ,
0: बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है जी,
0: जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी, हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी ली, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी
1: हाँ,
0: ना आज कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी
1: मैं
0: बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और
1: जी,
0: आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: मेरा 57 एज है दीदी, 57।
0: अच्छा।
1: मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ, साड़ी
0: क्या बात है।
1: सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और
1: हाँ
0: स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल सोया है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है, 11:30 बजे तक। हाँ, गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं
1: हाँ,
0: प्यारे प्यारे गीत सुन के।
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है,
0: क्या
1: उससे
0: बात है,
1: काम मेरा चल जाता हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है। नहीं तो देखिए, लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे
1: नहीं
0: सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
1: जरूरी है, बराबर है दीदी।
0: जी, बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
1: बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग काला।

0: ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867028 2867028 2867028 2। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थी। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपी आने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

लगता। स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, यह वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े

याते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहां हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाक्य अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए।
सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की

की परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी। और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: इश्क से

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम पर अभी एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है एफएम संगीत का दैनिक कार्यक्रम आज शाम।

आज शाम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम इस खूबसूरत शाम में बात करेंगे उन ख्वाबों की जो आंखों में चमक बनकर रहते हैं, जो हमें गिरकर फिर उठना सिखाते हैं और जो जिंदगी को एक मकसद देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत खूब कहा था, ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो है जो नींद ही उड़ा दे। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ जो हर सपने देखने वाले के दिल के बहुत करीब है।

श्रोताओं, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा कर लेने के लिए हर रोज खुद से लड़ना पड़ता है। किसी ने बहुत खूबसूरत एक कविता लिखी है, कुछ ख्वाब अधूरे होकर भी जीने की वजह देते हैं, कुछ रास्ते मुश्किल होकर भी मंजिल का पता दे जाते हैं। हिम्मत रख ए मुसाफिर, अंधेरों के बाद ही सवेरा होता है और हर सपना सच होता है अगर दिल से उसे चाहा होता है। तो दिल कभी छोटा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे सपने हमें हिम्मत देते हैं और कहीं ना कहीं जब हम मेहनत करते हैं तो विफलता भी हाथ आती है, लेकिन हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा जो हमारी उम्मीद और उड़ान दोनों को हमें एहसास कराता है।

आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं पहचान बनाना चाहता है, वो अपने सपनों को जीना चाहता है। किसी ने सच ही कहा है, अगर अपने सपने सच नहीं हो रहे तो रास्तों को बदलो, इरादों को नहीं। ख्वाबों की कीमत वही समझता है जिसने रातों को जाकर मेहनत की हो। और किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो श्रोताओं, आज की इस शाम, या कहें कि आज के इस आज शाम कार्यक्रम से जो भी आपने सीखा, उसको कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में उतारिए। सपनों को देखना कभी मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए। कभी भी सपनों को छोटा मत समझिए, क्योंकि हर बड़ी शुरुआत से पहले एक छोटे से ख्वाब से ही होती है। तो इसी उम्मीद के साथ आप सपने देखते रहेंगे और अपने मंजिलों को पाने के लिए कोशिश करते रहेंगे और सुनते रहेंगे आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रमों को इसी प्रकार से, और अपना प्यार देते रहेंगे। इजाजत दीजिए मुझे, यानी रोहित कुमार कुकरेती को कार्यक्रम से विदा लेने की इस खूबसूरत नगमे के साथ।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: सदियों की आवाज़ हैं हम, हर घर का साज हैं हम। वक्त बदला, दौर बदले, पर नहीं बदला वो एहसास हैं हम।
1: जी हाँ दोस्तों, हवा के झोंकों पर तैरती एक ऐसी आवाज़ आकाशवाणी, जिसने कभी आज़ादी की गूंज आप तक पहुँचाई तो कभी बदलते भारत की हर धड़कन को समेटा।
0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी रेडियो साथी नव्या अग्रवाल
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी।
0: हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे और सुन रहे होंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।
1: तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। और आज का हमारा सवाल है, MIRV सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ? साथियों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए।
0: साथियों, हमारा सवाल है, MIRV सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने जवाब, और सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
1: अरे नव्या, कभी कभी सोचती हूँ हम आज इतनी खुली हवा में जी पा रहे हैं, अपनी बात खुलकर बोल पा रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानी होगी।
0: बिल्कुल खुशी, और उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक नाम है सुखदेव थापर जी का, और पता है आज उनकी जयंती है।
1: हाँ नव्या, लोग अक्सर भगत सिंह और राजगुरु का नाम लेते हैं, लेकिन सुखदेव थापर जी का योगदान भी उतना ही बड़ा था। वे सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और देश के लिए पूरी तरह समर्पित इंसान थे।
0: खुशी, सुखदेव जी का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का काम किया,
1: और फिर उनकी दोस्ती हुई भगत सिंह और राजगुरु से। तीनों की सोच एक जैसी थी, देश को आजाद कराना।
0: सुखदेव जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। वे युवाओं को जोड़ते थे, योजनाएं बनाते थे और क्रांति की आग को फैलाने का काम करते थे।
1: नव्या, जब अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या का मामला सामने आया तब सुखदेव जी भी उसमें शामिल थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था,
0: लेकिन खुशी, इतनी कम उम्र में भी वो बिल्कुल नहीं डरे और उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी स्वीकार कर ली।
1: 23 मार्च 1931, वो दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई, लेकिन उनकी सोच और हिम्मत आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है।
0: सच में सुखदेव जी हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखनी चाहिए, और युवा अगर ठान ले तो देश बदल सकते हैं।
1: तो दोस्तों, आज उनकी जयंती पर सिर्फ उन्हें याद ही मत कीजिए बल्कि अपने देश, अपनी जिम्मेदारियों और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प भी लीजिए,
0: क्योंकि असली श्रद्धांजलि वही होती है जब हम उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश करें।
1: महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर जी को शत शत नमन। साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के पार आपके लिए है बहुत कुछ खास।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक।

0: मत कीजिए, RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से सुन रहे हैं आप अपना फेवरेट कार्यक्रम युववाणी। बढ़ते हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर, और जानते हैं आज का दिन हमें क्या खास बता रहा है।
5: कुछ ख्वाबों की बात,
6: कुछ अपनों का साथ,
5: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
6: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
5: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
6: वाकई कुछ खास है आज,
5: कुछ खास है आज।
4: साथियों, आज का दिन खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रिश्ते की जो हमारी पहली पहचान होता है, हमारा परिवार। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
5: साथियों, परिवार एक घर में साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो हर खुशी में हमारे लिए ताली बजाते हैं और हर मुश्किल में हमारा हाथ पकड़ लेते हैं।
4: दोस्तों, इस दिन की शुरुआत साल 1994 में यूनाइटेड नेशंस ने की थी ताकि लोगों को परिवार की अहमियत समझाई जा सके, क्योंकि बदलती दुनिया में हम सब अपने काम और मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कभी कभी अपने ही लोगों को समय देना भूल जाते हैं।
5: साथियों, पहले लोग शाम को साथ बैठकर बातें करते थे, दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे, लेकिन अब हर किसी के हाथ में फोन है और बातचीत कम हो गई है।
4: लेकिन परिवार की असली ताकत क्या है जानते हैं? एक सब ठीक हो जाएगा वाला भरोसा, माँ की डांट में छिपा प्यार, पापा की चिंता, भाई बहन की नोक झोंक और दादा दादी का आशीर्वाद।
5: और दोस्तों, रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों का परिवार मजबूत होता है वे मानसिक रूप से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी होते हैं। यानी कि परिवार सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि हमारी ताकत भी है।
4: दोस्तों, आज के दिन एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताइए, एक साथ चाय पीजिए, बातें कीजिए, हंसिए, क्योंकि यही पल आगे चलकर सबसे

0: रिश्तों की गर्माहट हमेशा बनाए रखेंगे,
1: क्योंकि आखिर में दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो वो है अपना परिवार।
0: साथियों, आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने हिंदी भाषा को नई पहचान दी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की।
1: साथियों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि वे हिंदी साहित्य के मार्गदर्शक, शिक्षक और समाज सुधारक भी थे। उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का निर्माता भी कहा जाता है।
0: दोस्तों, उनका जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने रेलवे विभाग में नौकरी की, लेकिन उनका मन साहित्य और समाज सेवा में ज्यादा लगता था।
1: और साथियों, यही वजह थी कि उन्होंने हिंदी भाषा को सरल, प्रभावशाली और लोगों के करीब बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उस समय हिंदी साहित्य में कई बदलावों की जरूरत थी और त्रिवेदी जी ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई।
0: उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया, जो उस समय हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक थी। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने कई नए लेखकों को आगे बढ़ाया।
1: और साथियों, महान कवि मैथिली शरण गुप्त जैसे कई साहित्यकारों को प्रेरणा और पहचान दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए हिंदी साहित्य के एक पूरे दौर को द्विवेदी युग कहा जाता है।
0: दोस्तों, उनकी लेखनी सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थी, वे समाज में शिक्षा, महिलाओं के सम्मान और देशभक्ति जैसे विषयों पर भी खुलकर लिखते थे।
1: और दोस्तों, सबसे खास बात, उन्होंने हमेशा सरल भाषा का इस्तेमाल किया ताकि आम लोग भी साहित्य को समझे, ताकि आम लोग भी साहित्य को समझ सके और उससे जुड़ सके।
0: दोस्तों, आज के समय में जब लोग अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, तब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना सिखाते हैं।
1: तो आज उनकी जयंती पर हम यही संदेश लें कि भाषा सिर्फ बोलने

0: साथियों, अब बात करते हैं एक ऐसे महान विचारक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता को जिन्होंने समाज को नई सोच देने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जी की।
1: साथियों, देवेंद्र नाथ टैगोर जी को लोग प्यार से महर्षि भी कहते हैं। वे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता थे, लेकिन उनकी अपनी पहचान भी बहुत बड़ी और प्रेरणादायक है।
0: दोस्तों, उनका जन्म 15 मई 1817 को कोलकाता में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों से बहुत दुख होता था,
1: और साथियों इसी सोच के साथ उन्होंने समाज सुधारने के कामों में हिस्सा लिया और ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये संस्था लोगों को सादगी, शिक्षा और एक ईश्वर में विश्वास का संदेश देती थी।
0: देवेंद्रनाथ टैगोर जी मानते थे कि शिक्षा और अच्छे विचार ही समाज को बदल सकते हैं। उन्होंने लोगों को जात पात और अंधविश्वास से ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा भी दी,
1: और यही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए। कहा जाता है कि उनके शांत और आध्यात्मिक स्वभाव का ही असर था कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि और विचारक का निर्माण हुआ।
0: दोस्तों, आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, तब देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन हमें इंसानियत, शिक्षा और एकता का महत्व सिखाता है।
1: दोस्तों, उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनना सिखाए, और यही सोच आज भी हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है।
0: तो आइए उनकी जयंती पर हम ये संकल्प लें कि हम भी अच्छे विचारों को अपनाएंगे, शिक्षा का सम्मान करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे।
1: क्योंकि महान लोग सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रहते, उनके विचार हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं।
0: महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन।
2: साथियों, कुछ खास है आज में, बस इतना ही।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।

0: साथियों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है युद्ध अंत्याक्षरी, जिसे खास तौर से तैयार किया है हमारी टीम युववाणी ने। तो अपनी सुरीली आवाज और याददाश्त को कर लीजिए तैयार, क्योंकि
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो लेके युवाओं का नाम।

0: आइए जानते हैं हमारे साथ धुन टीम में कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं।
1: मैं हूं मोनिका कुमार।
2: मैं हूं फातिमा खान।
3: और मैं हूं आफताब खान।
0: आइए अब जानते हैं हमारे साथ तरंग टीम में कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं।
4: मैं हूं असरार मियां।
5: मेरा नाम है हुमा सलीम आफाकी।
6: मैं हूं तरुणा जोगेश।
0: तो आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत है और आइए आज शुरू करते हैं ये अंताक्षरी। मैं आपको सबसे पहले रूल्स बता दूं, कोई भी लेटर किसी टीम के पास आता है तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड का ही टाइम रहेगा और अगर वो इस समय में वो सॉन्ग नहीं गा पाए या नहीं गाने को ढूंढ पाए तो वो सॉन्ग दूसरी टीम को ट्रांसफर हो जाएगा। हर सॉन्ग के लिए आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर दूसरी टीम पर ये सॉन्ग ट्रांसफर होता है या आपका चांस दूसरी टीम पर ट्रांसफर होता है तो दूसरी टीम को 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं?
1: यस।
0: तो आइए शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि सुनते रहिए लफ्जों की ये मधुर कहानी, हर शब्द में छुपी है दिल की रवानी। हम यहाँ हवाओं में बात कर रहे हैं, ये आकाशवाणी है, दिल से जुड़ रही है जुबानी। तो आप सबसे पहले धुन टीम के पास हमारा वर्ड है ना, तो आपका समय शुरू होता है अब। आपको ना शब्द से गाना गाना है।
7: नैनू वाली नी, नैनू वाली नी, छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन रैन साथ ले गया। नैनू वाली नी, नैनू वाली ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया।
0: बहुत अच्छे, धुन टीम को मिलते हैं 5 पॉइंट। आपका आखिरी वर्ड था या। अब बारी है तरंग टीम की और तरंग टीम के पास लेटर है या। आपको गाना है या से।
8: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का

0: बहुत अच्छे, तरंग टीम ने भी अच्छे से इस गाने को गाया है, और फिर से वर्ड छोड़ा है धुन टीम के लिए। या आपको गाना है 5 सेकंड के अंदर अंदर गाना ढूंढना है, और गाना है
1: यादें याद आती हैं, बातें भूल जाते
0: हमें ऐसा
1: हैं।
0: लगता है कि ये गाना यहाँ से शुरू नहीं है, तो इसलिए आपका ये पॉइंट, ये राउंड ट्रांसफर होता है तरंग टीम पर। तो आपको गाना है या से।
1: याद

0: तो ये था हमारा दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में 3 नंबर से बढ़त हासिल की है तरंग टीम ने, जो कि ट्रांसफ़र हुआ था धुन टीम से। तो अब बारी है हमारे धुन टीम की। तरंग टीम ने वर्ड छोड़ा है ना, तो आपको गाना है ना से।
1: नैना जो साजे ख्वाब देखते थे, नैना।

0: है, ये भी कोई मरना यारा, सीली सीली बिरहा की रात का जलना।
1: तो तरंग टीम ने वर्ड दिया है ना, काफी सीला हुआ गाना इन्होंने गाया। धुन टीम को अब गाना है ना से।
2: ने

0: लब तक आते आते हाथों से सागर
1: सागर
0: छूट
1: छूट
0: जाता
1: जाता
0: है,
1: है,
0: छूट
1: छूट
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। तो तरंग टीम ने वर्ड दिया है धुन टीम को हा, तो आपको गाना है धुन टीम हा से।
0: हम तो

0: सलाम।
1: दुन टीम ने तरंग टीम को वर्ड दिया है माँ, तो आपको अब गाना है माँ से।
0: मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक
1: एक
0: दिल
1: जुल्बा
0: रुबा
1: है,
0: है,
1: एक
0: एक
1: दिल
0: दिल
1: रुबा।
0: रुबा।

0: तो तरंग टीम आपके पास वर्ड है ना, आपको गाना है 5 सेकंड के अंदर अंदर ना वर्ड्स।
1: नशे से चढ़ गई ओए
0: कुड़ी
1: कुड़ी,
0: नशे
1: नशे
0: से
1: से चढ़
0: चढ़ गई
1: गई पतंग।

0: जादू चुनरी
1: हूँ तो पे कुंडी लगा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के आधी आधी आधी रात में होले होले जिंदगी।
2: तो तरंग टीम आपके पास वर्ड आया है गा, आपको गाना है गा वर्ड से।
3: गुन गुन।

0: गली गली गली गली गली गली गली।
1: तो गली गली इन्होंने वर्ड छोड़ा है धुन टीम के लिए ला। आपको गाना है 5 सेकंड के अंदर अंदर ला वर्ड से गाना।
0: लग

तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट्स टेबल की ओर और देखते हैं हमारे दोनों टीम्स के पास कितने कितने पॉइंट्स हैं और कौन इस आज अंताक्षरी का विनर है। तो आइए काउंट करते हैं तरंग टीम के पास कितने पॉइंट्स हैं। तरंग टीम के पास पॉइंट्स हैं 48। आइए अब काउंट करते हैं धुन टीम के पास कितने पॉइंट्स हैं। धुन टीम के पास पॉइंट्स हैं 45। तो आज की हमारी विजेता टीम है तरंग, जिसके पास है 48 पॉइंट। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको तरंग टीम। और दोस्तों इसी तरह हार जीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, और क्या खूब किसी ने कहा है कि हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। तो कोई निराशा की बात नहीं है कि कोई टीम हारती है, कोई टीम। दोनों टीम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए साथियों अंताक्षरी के इस सेगमेंट में चलते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। है सीख

0: वाह, क्या सुर सजे, क्या महफिल जमी और क्या कमाल का मुकाबला रहा। सच में जब युवा दिल मिलते हैं तो सुर अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। इसी के साथ समय हो चला है हमारे आज के इस मज़ेदार सेगमेंट युद्ध अंत्याक्षरी को यहीं पर थामने का।
1: उम्मीद है हमारी टीम युववाणी की यह सुरीली कोशिश आपके चेहरों पर मुस्कान छोड़ गई होगी। तो साथियों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब बताने पर। और हमने आपसे सवाल किया था, MIRV सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ है। और साथियों, इस सवाल का सही जवाब है ओडिशा। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी।
0: नज़मुल हुदा जावेद, हाजी गफ्फार खान, गंगा सिंह रावत, फागुराम यादव, भाई रफत साहब, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद आमिर अंसारी, रवि रस्तोगी, नरीन नेतम, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, जॉन्डे कैस्ट्रो, सुनील पाठक, देवशंकर तामूरिया, अजीत कसाना, बलवंत कुमार वर्मा, नितेश कुमार देवांगन, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मिसबा शमशी, रिहाना खान, चौधरी राजवीर सिंह, शाहजी बोटके, मोहम्मद खलील कुरेशी, लाल बाबू दीवाना, मोहम्मद रफीक पनवार, धीरज भाई राबरी, रविंद्र दास, लाल मोहम्मद अंसारी, राम कुमार रेवर, हुकुम करमारकर, भुवन प्रकाश, लक्ष्मण, सुरेश गगनेजा, किशन सपकाल, नारायण प्रधान, पुंजजी नवकर, विथल सुरेशे, अनिल जैन, राष्ट्रपाल, BL धाकड़, शनरूर नूर अंसारी, अनिल बी गोटके, विजय सुरालकर, बालकरण वर्मा, हीरामणि वर्मा, शमशुल कुमार राही, प्रवीण चौहान, भागवत चौबे लाडला जी, ताज अंसारी, प्रवीण सोनी, नानक खन्ना, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हनमत शिंदे, संजय धिंगिया, गुरमीत सिंह मीता, दुर्गरम साहू, श्री कृष्ण बाथे, कमल सिंह, पंजाब रामटेके, राजवीर सिंह यादव, सुरेश जायसवाल, उत्तम कुमार भागत, राम शरण, नवी हसन अब्बासी, विनोद मुन्नत, आकाश रस्तोगी, सोहन जोशी, जाकिर मंसूरी, नंद कुमार ठाकुर, धर्मेंद्र छिपा, सुरेश राठौड़, मुकेश कश्यप, राजू मिगलानी, फैसल इमाम, राजकुमार गजनन येले दरियापुर, निसर सलमानी, मोहम्मद सईद अब्बासी, राधेश्याम पांडे, सुदर्शन शाह, जगदीश धाकड़, रवि कुमार राहुल।
1: आप सभी ने दिए हैं हमारे सवाल के सही जवाब। इसी खुशी में आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे पते पर। हमारा पता है केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901। आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर सुन लीजिएगा साथियों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com। ईमेल एड्रेस फिर सुन लीजिए patramila@rampur.gmail.com। दोस्तों, अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त खुशी
0: और नव्य अग्रवाल को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आपके साथ थे आपके युवा मित्र खुशी और नव्य अग्रवाल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुमलालाउथ वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी सूचनाएं। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज किसी तकनीकी कारण से व्हाट्सएप के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम गीत गाता चल, जिसमें आपके अनुरोध गीत हम आप तक पहुंचाते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु आपके पत्रों के माध्यम से, ईमेल पत्रों के माध्यम से, यानी कि आप ईमेल के माध्यम से हमें अपने गीत, जो पसंदीदा गीत हैं, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आप नोट कर लें, ईमेल है गीत आपके नाम AIR रामपुर, गीत GEET आपके APKE नाम NAAM AIR RAMPUR @gmail.com। ईमेल के माध्यम से जितने भी हमारे पास अनुरोध पहुंचेंगे, हम प्रयास करेंगे उन सभी गीतों को उन सभी श्रोताओं तक पहुंचाने का। आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम गीत गाता चल, जैसा आप सभी जानते ही हैं, संध्या 8 बजे होगा।

0: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
1: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज है दिन शुक्रवार और आज हम आप तक पहुंचाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो रामपुर, जिस कार्यक्रम में आप सभी फोन कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने पसंदीदा गीतों को सुनते हैं। तो हमारा नंबर नोट कर लें, जिससे कि आप हम तक फोन कॉल के माध्यम से आज रात्रि 10 बजे से 11 बजे के बीच में जुड़ें। फोन नंबर है 0595-2324-326। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 0595-2324-326। हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

0: कौमों को नाज है वतन पर मर मिटने वालों पे।
1: उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहाँ की, कौमों का ढंग क्या है।

0: जय हो।
1: हमारा अभिमान है
2: हमारी एकता,
1: हमारा मान है
2: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
1: हमारी शान है
2: इस एकता की सुदृढ़ता।
1: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बनें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत नीरज श्रीधर के स्वरों में, फिल्म तुम मिले से।

फिल्म तुम मिले किसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनन को आपकी बहन दीपा
7: और आपके भैया जसविंदर की
6: राम राम। जसविंदर भैया, सुबह को समय हो, खेतों की मेड़ पर चलती ठंडी हवा हो और दूर दूर तक फैली हरियाली हो तो मन अपने आप ही गांव की मिट्टी से जुड़ जाता है। इन दिनों गांव में फिर से खेती किसानी की चर्चाएं तेज होने लगी है। कोई खेत की तैयारी में जुटो है तो कोई बीज और खाद की व्यवस्था कर रहा है।
7: बिल्कुल सही बात कही आपने दीपा बहन। खेती केवल मेहनत को काम ना है बल्कि समझ और अनुभव को तालमेल भी है। समय के साथ खेती के तौर तरीकन में अब बदलाव आ रहा है, आपने देखी हुई। और किसान भैया भी नई जानकारी अपनाए कर आगे बढ़ रहे हैं। गाँव की चौपाल से लेकर खेतन तक अब ऐसी बातें सुनाई देती है ना, जैसे कम लागत में अच्छी पैदावार लीजिए और मिट्टी की ताकत भी बनी रहे।
6: बिल्कुल जसविंदर भैया, खेती तभी आगे बढ़ती है जब किसान भाई अपनी जमीन को सही से ध्यान रखते हैं। कई बार जल्दबाजी में ना हम कई तरह की फसल बार बार बो देते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है।
7: बिल्कुल,
6: शुरुआत में फर्क कम दिखाई देते हैं लेकिन धीरे धीरे उत्पादन पर भी असर पड़ता है।
7: सही कही दीपा बहन आपने। जय कारण है कि खेती में फसल चक्र को बहुत महत्व बढ़ जाता है। अगर हम बात करें ना अलग अलग फसलन की, खेती करण से मिट्टी को जो संतुलन है वो बढ़िया रहता है और कुछ फसलें तो मिट्टी से पोषक तत्व ले लेती हैं तो कुछ फसलें मिट्टी को ताकत भी देती हैं। खेती है ना बाकी तरीका लंबे समय तक लाभकारी बनाए रखने में मदद करता है।
6: बिल्कुल जसविंदर भैया, दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, उड़द खेत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है ना। किसान भाई अगर अनाज वाली फसलन के साथ दलहनी फसलें भी शामिल कर लें तो मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और रासायनिक खाद पर खर्चा कम करने पड़ता है।
7: बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर आप देखें ना, इसको एक और बड़ो फायदा है कि खेत में कीट और बीमारियों को असर कम होने लगता है। लगातार एक जैसी अगर फसलें हमारे किसान साथी बोवेंगे ना तो रोग खेत में टिक जाता है, यानी के बनो रहता है। लेकिन अगर फसल बदल दें तो उनको प्रभाव कम हो जाता है। इससे जो दवाइयों पर होने वाला खर्च है ना दीपा बहन, वो भी कम हो जाता है।
6: हाँ, आज मौसम को मिजाज भी भैया पहले जैसे ना रहो है। कभी तेज गर्मी, कभी असमय बारिश, कभी सूखे जैसी स्थिति किसानन के सामने चुनौती बनकर आ रही है। ऐसे समय में फसल चक्र अपनानो खेती को सुरक्षित रखने को एक अच्छा तरीका मानो जाता है भैया।
7: बिल्कुल।

0: यानी खाद पर खर्चों कम करने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर आप देखें ना, इसको एक और बड़ो फायदा है कि खेत में कीट और बीमारियों को असर कम होने लगता है। लगातार एक जैसी अगर फसलें हमारे किसान साथी बोवेंगे ना, तो रोग खेत में टिक जाता है, यानी के बनो रहता है। लेकिन अगर फसल बदल दें तो उनको प्रभाव कम हो जाता है। इससे जो दवाइयों पर होने वालों खर्च है ना दीपा बहन, वो भी कम हो जाता है।
0: हाँ, आज मौसम को मिजाज भी भैया पहले जैसे ना रहो है। कभी तेज गर्मी, कभी असमय बारिश, कभी सूखे जैसी स्थिति किसानन के सामने चुनौती बनकर आ रही है। ऐसे समय में फसल चक्र अपनानो खेती को सुरक्षित रखने को एक अच्छा तरीका मानो जाता भैया।
1: बिल्कुल सर, राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया जाता है,
0: हाँ
1: और जो दिन हमें परिवार की अहमियत याद दिलाता है। परिवार केवल रिश्तन को नाम ना होता है, बल्कि अपनोपन, सहयोग, विश्वास, इन सबको आधार मानो जाता है।
0: बिल्कुल जसविंदर भैया, गांव में आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है। घर के बड़े बुजुर्ग अनुभव से परिवार को दिशा देते हैं और बच्चे उन्हीं संस्कारन से सीखते हैं।
1: बिल्कुल दीपा बहन, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना, कि परिवार के साथ बैठकर बात करने को उनके पास समय ही ना रहता, यानी कि कम ही जाता है। लेकिन परिवार को साथ ही जीवन को मजबूती बना देता है।
0: हाँ भैया, जो छोटी छोटी बातन में ना प्यार और सम्मान बनो रहते हैं, घर को माहौल खुशहाल रहता है, बच्चन के लिए भी अच्छा वातावरण बनते हैं और वे अच्छे संस्कारों सीखते हैं।
1: जब परिवार मजबूत होता दीपा बहन, तो समाज भी मजबूत बनता है। गांव की एकता, मेलजोल ही ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी पहचान होती है।
0: तो किसान साथियों, खेती में समझदारी और परिवार में प्रेम, यही खुशहाल जीवन को आधार है।
1: दीपा बहन, और इसी उम्मीद के साथ कि आप खेती में नई जानकारी अपनाएंगे और परिवार में प्रेम व सहयोग बनाए रखेंगे। दीपा बहन, जो तो ही कुछ बात फसल चक्र को महत्व और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। दीपा बहन देखो, आज जैसा कि हमारे किसान साथी जानते ही हैं, महीने का तीसरा शुक्रवार है, और हम हर तीसरे शुक्रवार को लेकर आते हैं अपने किसान साथियों के लिए उनका पसंदीदा कार्यक्रम
0: लोक
1: लोक
0: मंजरी।
1: मंजरी। और लोक मंजरी के अंतर्गत आज हमें बहुत सारे पत्र मिले हैं, और उनमें कौन कौन सी फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हम तक भेजी है और कौन कौन से लोकगीत सुनने की फरमाइश भेजी है। तो दीपा बहन,
0: हाँ भैया,
1: करते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी प्रारंभ।

0: दीपा बहन, देखो लोक मंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमें बहुत सारे पत्र मिले हैं और उन पत्रन में सबसे पहलो पत्र मिला हुआ हमें ग्राम अभ्यासा पोस्ट मियाऊ तहसील दातागंज बदायूं से। लिखन वाले हैं वेद प्रकाश, पप्पू, हेम सिंह, बीरपाल, कमल सिंह, सावित्री देवी, गुड्डी, लवी और इनके परिवार वाले।
1: और भैया जय लोकगीत सुनन के लिए हमारे पास पत्र आ हुआ है, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बरवीर सिंह ने।
0: दीपा बहन, जाई लोकगीत को सुनन के लिए एक पत्र हमें और मिलो है ग्राम सुकटिया पोस्ट शेरगढ़ जिला बरेली से। लिखन वाले हैं भीमसेन, चुन्नीलाल, सचिन, पुष्पेंद्र, महेश सिंह, हेमंत सिंह और इनके साथी। दीपा बहन, इनने जो फरमाइश हमें भेजी है वो लोकगीत सुनने की भेजी है, हमरो गुलाबी दुपट्टा, जिसे आवाज दी है प्रीति शर्मा ने। तो किसान साथियों, आपकी पसंद का लोकगीत आपके रेडियो सेट।

0: दीपा बहन, और जो अगली फरमाइश हमें मिली है अमृतापुर ब्लॉक समढ़ेर जिला बदायूं से, लिखन वाले हैं कमल कल्याण सिंह, गिरीश सिंह, राम सिंह, चंद्रपाल, सोमपाल, हरीश, गजेंद्र सिंह, गजराज, हीराकली, सोमवती, हरप्यारी, सुमन, राजू, किरण और कलावती।
1: और जय लोकगीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून की।
0: और जाई फरमाइश से संबंधित एक पत्र और हमें मिलू है रामपुर लिसनर क्लब नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से, लिखन वाले हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। इन्हें दीपा बहन फरमाइश भेजी है सपेरा बीन बजा दे, जिसको मधुर आवाज दी है योगेश कुमारी ने। तो किसान साथियों सुनते हैं जो लोकगीत।

0: और अगले लोकगीत की फरमाइश हमारे पास आई है कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। लिखने वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेद राम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य ने।
1: और एक पत्र और आवे दीपा बहन ग्राम लखीमपुर पोस्ट शेरगढ़ जिला बरेली से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश, नरेश चंद्र, सुरेंद्र, सुनील, रीना, राधा, चारू, नम्रता, आराध्या, मितुल और नथो देवी को। इनने भी एक लोकगीत सुनने की फरमाइश भेजी है।
0: और जय लोकगीत की फरमाइश भेजी है भैया हमारे पास ग्राम व पोस्ट नगरिया विक्रम तहसील फरीदपुर से। राज सिंह, अनारकली, यश कुमारी, रूपेंद्र कुमार सिंह, पूजा प्रजापति, वंदना प्रजापति, दुष्यंत प्रजापति, प्रियंका प्रजापति, गार्गी और भोलू ने।
1: जो एक पत्र आओ है ग्राम पोस्ट किरा शाहबाद रामपुर से। लिखने वाले हैं टेकचंद गंगवार, दिनेश गंगवार, उमेश गंगवार, कुलदीप गंगवार, प्रदीप गंगवार, रविंद्र गंगवार, कुसुम गंगवार, दीप गंगवार, मुनीस, शिखा और सबनम को।
0: जय लोकगीत के लिए हमारे पास एक पत्र आओ है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी।
1: और एक अगलो पत्र और आओ हमें मिलो है ग्राम भैसोड़ी शरीफ तहसील मिलक विकास खंड मिलक जिला रामपुर से। लिखन वाले हैं रामेश्वर दयाल, ओमकार, परमेश्वरी उर्फ बबलू, विनोद, प्रेम शंकर, चरण सिंह और अदनान।
0: चार डोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम से आओ है दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू।
1: और एक पत्र और हमें प्राप्त भू है कस्बा जादोपुर तहसील बरेली ब्लॉक भोजीपुरा से। लिखन वाले हैं दीपक मौर्य, टेक चंद, पातीराम, खूब करण लाल, रोहित, छत्रपाल और अंकित व इनके परिवार वाले। दीपा बहन इनने जो फरमाइश भेजी है वो भेजी है क्या क्या बनाऊं साग सब्जी जिसको मधुर आवाज दी है सोनिका व अमित ने। तो दीपा बहन सुनते हैं इनकी पसंद को जो लोकगीत।

0: और भैया अगले लोकगीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है राजपूत रेडियो श्रोता संघ ग्राम ढकिया केसरपुर जिला पीलीभीत यूपी से। लिखने वाले हैं ए.के. राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल राजपूत, संतोषी देवी राजपूत, रवि वर्मा, प्रिया वर्मा और छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी व समस्त परिवार वाले इनके।
1: एक पत्र और हमें जाई फरमाइश से संबंधित मिलु है, जिसमें सबसे पहले इन्हें लिखी है आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमारा भी उन सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी, रसीद बारसी, सुहेल हसन अब्बासी, इनने जो फरमाइश भेजी है दीपा बहन ना, वो लिखिए एक लोकगीत के लिए, लाड़ो रोबे मत जिसको अपनी आवाज दी है कनक सक्सेना ने। तो आप सुनते हैं इनकी पसंद को जो लोकगीत।

0: हर के।
1: जी भैया लिख रहे हैं जयेंद्र कुमार, सूर्य प्रकाश, सुनील कुमार, भानु प्रकाश, गुड्डू और इनके परिवार वाले ग्राम ईश्वरपुर बिलासपुर रामपुर से।
2: और भैया जय लोकगीत की फरमाइश आई है छत्तरपाल, सतीश कुमार, जतिन कुमार, अतुल, हेतराम, सोमपाल और इनके साथी ग्राम धनेली उत्तरी मिलक रामपुर से। इनका कहना है कि आप हमें कोई भी लोकगीत सुनवा दें।
1: तो दीपा बहन हम इनको सुनवा रहे हैं बन्नो पीली कैसे, इस लोकगीत को अपनी मधुर आवाज दी है मोनालिका ने। तो आप सुनते हैं कुछ जो लोकगीत।

दीपा बहन देखो हमारे पास पत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हम इन्हें करेंगे अगले कार्यक्रम में शामिल, और लोक मंजरी कार्यक्रम बस अब यहीं तक।

0: भैया, अब बात करते हैं कृषि संकेत की। आज हम किसान भैया बहनन के लिए ऐसी व्यवसाय की जानकारी लेकर आए हैं जो कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मानी जाती है। आज को हमारा विषय है सूकर पालन लाभकारी व्यवसाय।
1: बिल्कुल दीपा बहन, आज के समय में सुकर पालन यानी पिग फार्मिंग ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। जाके एक मेन कारण जो है कि कम लागत है, जल्दी बढ़न वाले पशु होते हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग के कारण जो किसानन के लिए आय बढ़ान को एक अच्छो साधन बना जा रहा है।
0: जसविंदर भैया, सूकर पालन की सबसे बड़ी खासियत पता का है? इसमें कम जगह में भी व्यवसाय आसानी से करो जा सकता है। साथ ही सूकर पालन बहुत जल्दी वजन बढ़ाते हैं, जिससे कम समय में लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
1: दीपा बहन, अगर कोई किसान भाई अच्छी नस्ल के सुकर पालन को चयन करे ना, तो उन्हें लाभ और अधिक मिल सकता है। जैसे लार्ज वाइट है, यॉर्कशायर है और लैंड रेस नस्लें अच्छे उत्पादन क्षमता वाली मानी जाती हैं और इनसे अच्छा उत्पादन मिलता है।
0: हाँ भैया, सुकरों के रहने की जगह साफ सुथरी और हवादार होनी चाहिए। उनके बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था और नियमित साफ सफाई जरूरी होती है, ताकि बीमारियों से बचो जा सके।
1: बिल्कुल दीपा बहन, सूकर पालन में आहार को भी बड़ो महत्व होता है। सूकरन को संतुलित भोजन देना चाहिए जिससे अनाज, हरो चारो और पोषक तत्व शामिल हुए, ताकि उनको जो विकास है ना वो अच्छी से हो सके।
0: हाँ जसविंदर भैया, समय समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य की जांच भी बहुत जरूरी होती है। इससे सुकरों को बीमारियों से बचाव जा सकता है और उत्पादन की क्षमता बनी रहती है।
1: दीपा बहन, सूकर पालन को एक फायदा जो भी है कि जहाँ मैं एक मादा सूकर साल में कई बच्चन को जन्म देती है, जिससे व्यवसाय तेजी से बढ़ सकता है।
0: भैया, आज सरकार की ओर से भी पशुपालन और सुकर पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान भाई इन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठा सकते हैं।
1: दीपा बहन, ग्रामीण युवाओं के लिए भी सूकर पालन रोजगार एक अच्छो माध्यम बन सकता है। कम पूंजी में शुरू हुई कह और धीरे धीरे बड़े व्यवसाय के रूप में हो सकता है जो।
0: जसविंदर भैया, अगर किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन करें ना, तो अपनी आय अच्छी बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो बन सकते हैं।
1: दीपा बहन, सही देखभाल, संतुलित आहार और साफ सफाई को ध्यान रखकर सुकर पालन को सफल और लाभकारी व्यवसाय बनाओ जा सकता है।
0: तो किसान साथी, सुकर पालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में कैसे अपनाओ जाए, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही।
1: बिल्कुल दीपा बहन, और अब देखो कार्यक्रम में बहुत अधिक समय ना है, लेकिन चलत चलत हम बता दें कि कल के कार्यक्रम में का तो कल चर्चा को विषय होएगो
0: आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग।
1: और साथ ही सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता पशुओं में परजीवी संक्रमण से होने वाले नुकसान एवं रोकथाम, इस विषय पर विस्तार से भेंट वार्ता करी जाई डॉक्टर हीरा राम और हमारे भैया प्रवीण कुमार के बीच।
0: और साथ ही सुनवाओ जाए साथियों लोकगीत।
1: कृषि संकेत के अंतर्गत भी जानकारी होगी इस पखवाड़े कृषि कार्य और साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।
0: तो भैया अब दे दो कल के मौसम की जानकारी।
1: कल के मौसम के बारे में हम आपको बता दें दीपा बहन, देखो कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय आर्द्रता 34% रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। हवा की दिशा की बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा से हवा बहने की संभावना है और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की गति रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। जो तो हो हमारो आज को कार्यक्रम, हमारे किसान साथी हमें पत्र लिखनो बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सुझाव, कोई बदलाव चाहते हैं तो बाकी ले भी हमें पत्र लिख सकते हैं और हमारे कार्यक्रम को पतो बता दो दीपा बहन।
0: हमारे कार्यक्रम को पता है कृषि जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901।
1: और अब जय वादे के साथ के अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। अपने भैया जसमिंदर,
0: और अपनी बहन दीपा को देव अनुमति। राम
1: राम राम।
0: राम।
2: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
3: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
4: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
3: जल है तो कल है,
4: यही चिंतन पल पल है।
5: पानी को बचाकर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत क्लार्टीन वादन। राग है अहिर भैरव। कलाकार हैं माबूद हुसैन।

संध्या के 7:16 हुए हैं। आइए सुनते हैं जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर यानी 7:31 पर श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें, कलाकार रेखा भारद्वाज और गुलाम अली के स्वरों में। आज किसी तकनीकी कारण के चलते व्हाट्सएप के माध्यम से आपके अनुरोध हम तक नहीं पहुंच पाएंगे गीत गाता चल कार्यक्रम के लिए, इसीलिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com पे, जिसके माध्यम से आप अपने पसंदीदा गीत हम तक पहुंचा पाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके गीतों को सुनवाया जाए। ये कार्यक्रम आप तक हम पहुंचाएंगे आज शाम 8:00।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत क्लार्नेट वादन, राग था हेर भैरव और कलाकार थे महमूद हुसैन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

श्रोताओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम हेलो रामपुर, जिसमें फोन कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ते हैं रात्रि 10 बजे से 11 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। आप हमसे कॉल के माध्यम से जुड़ने के लिए नंबर डायल कर सकते हैं, नंबर नोट कर लें, 0595-232-4326। नंबर एक बार फिर सुन लें, 0595-232-4326। आपके कॉल का हमें रहेगा इंतजार। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजना

0: योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूलकिट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
1: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहे।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे

0: यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपक्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉक्टर सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
1: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है, तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कलाकार रेखा भारद्वाज और गुलाम अली के स्वरों में कुछ गजलें।

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार रेखा भारद्वाज के सुरों में कुछ गजलें। आइए सुनते हैं उनकी अगली गजल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और अगली गजल गुलाम अली के सुरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार रेखा भारद्वाज और गोलामली के स्वरों में कुछ गजलें। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है अनुरोध संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फिर आपको बता दें, आपको भेजना है ईमेल हमें इस ईमेल एड्रेस पे, गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com, गीत GEET आपके APKE नाम NAAM AIR RAMPUR रामपुर @gmail.com। हमें आपके मेल्स का इंतज़ार रहेगा।

कार्यक्रम गीत गाता चल सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र रोहित कुमार कुकृति का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे परिवार के साथ सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम गीत गाता चल में पहला नगमा जिसकी फरमाइश हम तक पहुंची है आपके ईमेल्स के माध्यम से, वो है फिल्म हम तुम से। गायक कलाकार हैं साधना सरगम और सोनू निगम। इसको सुनने की आकांक्षा रखते हैं आप सभी लोग। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राजेश डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदिबा तिवारी। इसी गीत को खुर्जा उत्तर प्रदेश से सुनना चाहा है तिलक राज अरोड़ा जी ने, प्रकाश चंदन अंकुश अरोड़ा। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके। अंबेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। इसी गीत को सुनना चाहा है बोड़ सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं जो कि मेल के माध्यम से हमें इसी गीत को सुनना चाहते हैं। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। शीतल रेडियो श्रोता संग्राम बहरामपुर। खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, समर राज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, शिखा, अंजलि, श्वेता वर्मा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म हम तुमसे सोनू निगम और साधना सरगम के सुरों में ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म काइट्स, जिसे सुर दिए हैं नासिर फिराज ने। इस गीत को सुनने की आकांक्षा रखते हैं आप सभी। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनारकली बजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गाव्य मल्होत्रा, साथ में भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं जो हमें ईमेल भेज रहे हैं। आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पे फिल्म काइट से नासिर फिराज के स्वरों में ये खूबसूरत सनकमा।

शतम कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म नमस्ते लंदन से। गायक कलाकार हैं कृष्णा और राहत फतेह अली खान। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहानाज जो कि एक शिक्षिका हैं, तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहां, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। इसी गीत को रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन, साथ में शमीम अख्तर अंसारी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, हैप्पी कुमार रॉय, अमित कुमार रॉय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। पन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं आप सभी जो आकांक्षा रखते हैं इसी गीत को सुनने की। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। दरियापुर वाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेकर, अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गोहाणकर राही, सरिता गोहाणकर, सिद्धांत गोहाणकर, प्रिंस एकांश गोहाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गोहाणकर, वैशाली गोहाणकर, श्वेता सुमित, कुमारी ध्वनि गोहाणकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गोहाणकर। ग्राम घाटमपुर से रामभजन सैनी, हरप्यारी, राजीव, संजय, मुकेश, आशा, अंशिका, पूजा और रामप्रकाश सैनी। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पर फिल्म नमस्ते लंदन से राहत फतेह अली खां और कृष्णा के स्वरों में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गाथा चल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ईमेल्स हमें किन श्रोताओं ने भेजे हैं। अगला गीत जो सुनना चाहते हैं वो है फिल्म कभी अलविदा ना कहना। फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ये गीत गाया है शफकत अमानत अली खान और शंकर महादेवन ने, और इस गीत को सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। विडोल तालुका उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक प्रियंका, लक्ष्मी भाई पोपलवाड़ और भारत धुले। अंबेडकर नगर चौक वाकोडी से उत्तम जमधाड़े। करूला मुरादाबाद से योग खान, रमगुड़िया शुएब नावेद। सिंधौली मीरगंज से जिशान वारसी। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन अल्फिया और इंशा खान। नाज मंजिल महसूल, सीतामणि बिहार से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, नदीम अक्रम, अमन अक्रम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, बच्चू शेख, ममता रानी शर्मा, आरिज वसीम और शमीम अक्रम। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, नीलम बीकेपुरी, कैलाश रमा और आरएसपुरी। सहारनपुर के हमारे श्रोता हैं आशा नारंग और सुरेश नारंग। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पे सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना से शफकत अमानत अली खान और शंकर महादेवन के सुरों में ये गीत।

कार्यक्रम में अगला नगमा फिल्म कृष्णा कॉटेज से। गायक कलाकार हैं निलेश और श्रेया घोषाल। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने चक 5MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल। इसी गीत को वडिंग खेड़ा पंजाब से सुनना चाहते हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राकेश। पंजो सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और अपा ढींगिया। सादुल शहर राजस्थान से इसी गीत को सुना चाहे रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ ने। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम्स शेख, फलक फातमा और बीबी अलिशबा शेख। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी और बॉबी खान बॉबी। मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम और निगत परवीन। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता, विशाल विवेक, सपना शिवी, सलोनी, राजू चराटे और पेंटर बाबू। श्री तुलजा भवानी माता अवार्ड खंडवा से अनिल विंचुरकर, मंगला शोभित विंचुरकर। उदयनगर से मोहित रत्नपारखी, स्वाति मिष्टी और मनस्वी रत्नपारखी। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म कृष्णा कॉटेज से श्रेय घोषाल और निलेश के सरों में गीत।

0: बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान और डिप्लोमेसी के प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष 27.8 बिलियन डॉलर का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता

0: उपलब्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों के साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप हीरो नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: युद्ध जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन

0: वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। यह निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. Is mission mein

0: runs won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69kg category snatch event by lifting 96kg in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121kg in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217kg. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153-5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Pipavav relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with a historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all with the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मौतल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुर्मुज की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
2: हुर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में

5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यगानगत का इआदा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहत

0: नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए जनाब अराक्ची ने कहा कि ईरान से मुतालिक किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान सभी बहरी जहाजों को अपने हुरमुज से होकर गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। जनाब अराक्ची ने कहा कि अपने हुरमुज की सूरत हाल अब बहुत पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया बहरान का मुजाकरात के जरिए तस्फिया करने के सिवा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान भारत के किसी भी तरह के तामीरी रोल का खैर मकदम करेगा। जनाब अब्बास अराक्ची ब्रिक्स वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए हुए हैं। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चा लीक होने से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों के मामले में कलीदी सरगाना को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने कहा है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद सरगाना पीवी कुलकर्णी को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री मजमून का लेक्चरर है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहान के अमल में शामिल था। उसे सवालिया पर्चों तक रसाई हासिल थी। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमीन में 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सीबीआई ने कहा है कि सभी 5 मुलजिमीन को दिल्ली में मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें तफ्तीश के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील में ले लिया गया। नीट यूजी 2026 सवालिया पर्चा लीक मामले में दीगर कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ और मजीद कार्रवाई जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में पुट्टपार्थी के मकाम पर जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका तैयारा प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि नए शुरू किए गए दिफाई प्रोजेक्टों से कौमी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी, सनअती तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन की बचत के ताल्लुक से कई तरह के इकदाम का ऐलान किया है। इनमें वर्चुअल समात, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम शामिल हैं। मगरबी एशिया के बहरान के तनाजुर में ईंधन की खपत कम करने के लिए मरकजी सरकार की वसी तर अपील के मुताबिक यह कदम उठाया गया है। अदालत आलिया ने सेक्रेटरी जनरल भरत पराशर की जानिब से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि अब उन मामला की समात मजीद अहकाम तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जो ज़ेली दिनों में या जुज़वी काम के दिनों में ज़ेरे समात आने थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के सिलसिले में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। इनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल, साबिक डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी और साबिक डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। इन अफसरों को अपने फराइज में मुबैना तौर पर कोताही बरतने, मुतासिरा लड़की के वालदेन को रकम की पेशकश करने और सरकार की मंजूरी के बगैर मीडिया ब्रीफिंग करने के तनाजुर में मुअत्तल किया गया है। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने नामा निगारों को बताया कि रियासती सरकार इन अफसरों के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी कराएगी। थाईलैंड ने हंता वायरस के फैलाव से मुतालिक बढ़ती आलमी तशवीश के दौरान इस बीमारी को

0: बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के सिलसिले में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। इनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल, साबिक डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी और साबिक डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। इन अफसरों को अपने फराइज में मुबैना तौर पर कोताही बरतने, मुतासरा लड़की के वालदेन को रकम की पेशकश करने और सरकार की मंजूरी के बगैर मीडिया ब्रीफिंग करने के तनाजुर में मुअत्तल किया गया है। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने नामा निगारों को बताया कि रियासती सरकार इन अफसरों के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी कराएगी। थाईलैंड ने हंता वायरस के फैलाव से मुतालिक बढ़ती आलमी तशवीश के दौरान इस बीमारी को खतकल गर्म और मरतूब मौसमी हालात की भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जजायर में कल इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। इसके अलावा केरला, माहे, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरकी खित्ते के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें 4 दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिर कुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपने रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिर कुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए दूसरा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंड अप।
2: स्पोर्ट्स राउंड अप। सभी खेल प्रेमियों को अवधेश गौतम का नमस्कार। स्वागत है आकाशवाणी रामपुर के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप में, जहां हम बात करेंगे खेल जगत की विभिन्न गतिविधियों की। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2026 की। आज तारीख है 15 मई और दिन है शुक्रवार। बाहर भले ही कितनी भी गर्मी हो, लेकिन असली पारा तो क्रिकेट के मैदान पर चढ़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 की। टूर्नामेंट अपने सबसे रोमांचक मोड़ यानी बिजनेस एंड पर पहुंच चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ताज़ा राउंड अप।

0: इस सीजन प्लेऑफ की रेस इतनी टाइट है कि अभी भी 10 में से 8 टीमों की उम्मीदें गणितीय रूप से जिंदा हैं। पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 पर नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 16 पॉइंट्स और अपने तूफानी रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर राज कर रही है। गुजरात टाइटंस लगातार जीत के रथ पर सवार होकर 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है, लेकिन कल की हार ने उनकी मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। कल रात धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे पंजाब का खेल बिगाड़ेंगे। मुंबई ने शानदार चेज करते हुए 19 ओवर और 15 बॉल्स में महज 4 विकेट खोकर 205 रन बनाए और यह मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। मैच के असली हीरो रहे तिलक वर्मा, जिनकी शानदार मैच विनिंग पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब बात करते हैं उन सुपरस्टार्स की जिनका बल्ला और गेंद इस सीजन में काफी तेजी से चला। सनराइजर्स हैदराबाद के धाकड़ बल्लेबाज हेनरी क्लासेन 12 मैचों में 508 रनों के साथ ऑरेंज कप होल्डर बने हुए हैं। हालांकि गुजरात के साई सुदर्शन 501 रनों के साथ और आरसीबी के किंग विराट कोहली 484 रनों के साथ बहुत करीब से टक्कर दे रहे हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर भी हैदराबाद का ही डंका बज रहा है। स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार शानदार स्पेल डालकर फिलहाल पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और अब बात आज के रोमांचक मैच की। आईपीएल 2026 के अंतर्गत आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस जहां आज की जीत के साथ टॉप 2 में अपनी जगह बिल्कुल पक्की करना चाहेगी, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह करो या मरो की जंग होगी। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स आज का मैच हारती है तो उनका प्लेऑफ का सफर यहीं खत्म हो जाएगा।
1: गांधीनगर में दिख रहा है ताकत, जुनून और गौरव का शानदार संगम। एशिया के सर्वश्रेष्ठ वेटलिफ्टर्स हर लिफ्ट के साथ रच रहे हैं नई कहानी। हर मुकाबला बन रहा है रोमांच से भरपूर। हर लिफ्ट में दिख रहा है जज्बा और आत्मविश्वास। गांधीनगर बन चुका है एशियाई वेटलिफ्टिंग का सबसे बड़ा मंच। भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है।

और अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर में चल रही एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की। यह भव्य आयोजन हमारे देश के लिए कई मायनों में बेहद खास है। पूरे 44 वर्षों के एक बहुत लंबे और ऐतिहासिक अंतराल के बाद भारत को इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेजबानी का सुअवसर मिला है। आपको बता दें कि पिछली बार साल 1982 में नई दिल्ली को इसकी मेजबानी का मौका मिला था। 11 मई से शुरू हुई इस रोमांचक प्रतियोगिता में 28 देशों के कुल 172 दिग्गज एथलीट शिरकत कर रहे हैं, जिनमें विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता भी शामिल हैं। गांधीनगर का अत्याधुनिक महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर इस ऐतिहासिक खेल आयोजन का गौरवशाली गवाह बन रहा है। अब रुख करते हैं आज 15 मई तक के ताजा आंकड़ों और विशेष रूप से भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन की ओर। 16 सदस्यीय भारतीय दल ने अपनी ही सरजमी पर अपनी मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा दी है। भारत के होनहार वेट लिफ्टर अजित नारायण ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व के धुरंधरों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए अजित ने अद्भुत तकनीक और असीम साहस का परिचय दिया। उन्होंने कुल 314 किलोग्राम का वजन उठाया और देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया। सफलता का यह सफर यही नहीं रुका, क्लीन एंड जर्क श्रेणी में भी उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए 174 किलोग्राम भार उठाकर एक और कांस्य पदक जीता। इस प्रकार अजित नारायण ने इस महासंग्राम में दोहरा कांस्य अपने नाम कर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 71 किलोग्राम भार वर्ग में पूरे 15 वर्षों के बाद भारत के खाते में कोई अंतर्राष्ट्रीय पदक आया है।

बात करेंगे बैंकॉक में चल रहे प्रतिष्ठित थाईलैंड ओपन 2026 की। 12 मई से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है। आइए एक नज़र डालते हैं भारतीय शटलर्स के अब तक के सफ़र और अहम आंकड़ों पर। भारत के लिए सबसे अच्छी खबर मेंस डबल्स से आ रही है। टूर्नामेंट की टॉप सीड और दो बार की चैंपियन भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सात्विक और चिराग ने जापान की ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी को मात्र 41 मिनट में सीधे गेमों में 21-12, 21-13 से मात दी। अब शनिवार यानी कि कल को होने वाले सेमीफाइनल में उनका सामना मलेशिया के गो से फेई और नूर इजुद्दीन से होगा। खिताब की हैट्रिक की ओर यह जोड़ी मजबूती से कदम बढ़ा रही है। विमेन सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सफर क्वार्टर फाइनल में एक कड़े मुकाबले के बाद समाप्त हो गया। विश्व नंबर 12 सिंधु का मुकाबला मौजूदा विश्व चैंपियन और जापान की अकाने यामागुची से हुआ। 61 मिनट तक चले इस रोमांचक मैच में सिंधु ने पहला गेम जीता, लेकिन अंततः उन्हें 21-19, 18-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने डेनमार्क की अमाइली शुल्ज को 21-13 और 21-15 से हराया था। पुरुष एकल में भारतीय चुनौतियां पूरी तरह से लक्ष्य सेन के कंधों पर है। सातवीं सीड लक्ष्य ने शानदार खेल दिखाते हुए पहले राउंड में सिंगापुर के जेसन तेह को 21-16, 21-17 और राउंड ऑफ 16 में चीन की जू जुआन चेन को 21-12, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल प्रवेश किया है। क्वार्टर फाइनल में उनका कड़ा मुकाबला थाईलैंड के घरेलू दावेदार और पूर्व विश्व चैंपियन कुनलाउत विटिडर्टसन से है।

0: विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, करोड़ों क्रिकेट फैंस का इमोशन है। लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद सवाल उठे, आलोचनाएं हैं, लेकिन किंग कोहली ने जवाब शब्दों से नहीं बल्ले से दिया। केकेआर के खिलाफ विराट ने नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली और आरसीबी को यादगार जीत दिलाई। मैच के बाद विराट ने कहा, दबाव आपको बेहतर बनाता है, और फिर उनकी वो बात जिसने हर फैन को भावुक कर दिया।
1: दिस इज ऑल आई हैव डन ऑल माय लाइफ, क्रिकेट इज एब्सोल्युटली समथिंग दैट आई ट्रूली लव एंड आई जस्ट गिव माय हार्ट एंड सोल आउट देयर ऑन द फील्ड व्हेदर आई एम फील्डिंग और बैटिंग बिकॉज़ इट्स गोना फिनिश वन डे एंड आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डे दैट आई एम ऑन द फील्ड एंड जस्ट एंजॉय माय सेल्फ एंड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड लुक फॉरवर्ड टू प्रेशर सिचुएशन लुक फॉरवर्ड टू सिनेरियोस वेयर आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ हीट एंड देन आई चैलेंज माय सेल्फ टू से यू नो व्हाट जस्ट गो फॉर इट एंड व्हेन यू क्रॉस द लाइन इट मेक्स यू अ बेटर प्लेयर and sport as you know teaches you a lot as a person as well so you build your character slowly and surely when you keep performing under pressure and for me even after all these years and numbers and whatever you said it's still the love for the game I just love hitting the ball in the middle of the bat and that joy is still there and it's all god's grace and I'm very thankful and grateful
0: main maidan par apna sab kuch jhonk deta hu kyunki ek din ye sab khatm ho jayega is ek line mein virat ki puri soch chhipi hai woh jante hain ki ek din aisa aayega jab woh cricket ke sabhi format se sanyas le chuke honge isliye jab tak woh maidan par hain हर पल को जीना चाहते हैं, हर मैच को महसूस करना चाहते हैं और अपने फैंस को यादगार लम्हे देना चाहते हैं। रिकॉर्ड्स, शतक और जीत से आगे विराट का असली प्यार है क्रिकेट। यही जुनून उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। इसलिए विराट कोहली सिर्फ खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट फैंस की शान है।
2: अब हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसके बल्ले से जब गेंद निकलती है तो पुराने रिकॉर्ड्स का टूटना तय हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के असली किंग यानी कि विराट कोहली की। आईपीएल 2026 रायपुर का मैदान और सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स की खतरनाक टीम। लगातार दो मैच में शून्य पर आउट होने के बाद हर किसी की नजरें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस धुरंधर पर टिकी थीं। कुछ लोगों ने तो सवाल भी उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन विराट ने जो किया उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रेशर उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन करने की एक वजह है। विराट कोहली T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये ऐतिहासिक कारनामा महज 409 पारियों में कर दिखाया है। उन्होंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का भी वो बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने 423 पारियों में 14,000 रन बनाए थे। डेविड वार्नर और जोस बटलर जैसे दिग्गज भी अब इस रेस में विराट से पीछे छूट गए हैं। बात सिर्फ रनों की नहीं है। रायपुर के इस अहम मुकाबले में विराट के बल्ले से निकली 60 गेंदों में 105 रनों की

0: बाद और तूफानी पारी, ये कोई आम शतक नहीं था। इस रिडेम्पशन पारी के साथ ही विराट ने अपने T20 करियर का 10वां शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वो IPL इतिहास में अपने 9वें शतक के साथ सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शान से नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे हैं। अब बात करते हैं भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ के ताज़ा अपडेट्स की। आज 15 मई 2026 और इंडियन सुपर लीग 2025-26 का ये सीज़न अपने बिल्कुल अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव पर आ पहुंचा है। इस बार का सीज़न इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस साल नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार कोई प्लेऑफ या नॉकआउट मुकाबले नहीं है, 14 टीमों के बीच सिंगल लेग राउंड रॉबिन के तहत 91 मैचों का यह मैराथन खेल खेला जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, जो टीम 21 मई को लीग के समापन पर पॉइंट्स टेबल के शिखर पर होगी, सीधे वही चैंपियन कहलाएगी। इसलिए अब बचा हुआ हर एक मैच किसी फाइनल से कम नहीं है। खिताबी जंग की बात करें तो पूरी लीग इस वक्त कोलकाता के दो सबसे बड़े फुटबॉल घरानों के इर्द गिर्द घूम रही है। टेबल के टॉप पर बैठे हैं ईस्ट बंगाल FC और डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट्स। दोनों ही टीमों ने 11 मैचों में 22 अंक हासिल कर लिए हैं, लेकिन 18 के शानदार गोल डिफरेंस के कारण ईस्ट बंगाल ने फिलहाल नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया हुआ है, क्योंकि 17 मई को होने जा रहा है वो महामुकाबला जिसका हर भारतीय फैन को बेसब्री से इंतजार रहता है, ऐतिहासिक कोलकाता डर्बी। ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान का ये एक मैच पूरे सीजन का नतीजा तय कर सकता है। क्या ईस्ट बंगाल अपनी बढ़त कायम रखेगा या मोहन बागान बाजी मार ले जाएगा? इसके अलावा 21 अंकों के साथ जमशेदपुर FC और 20 अंकों के साथ बंगलुरु FC भी गणितीय रूप से रेस में बने हुए हैं और टॉप टीमों की किसी भी चूक का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब बात करेंगे जनपद रामपुर की। रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में इम्तियाजुल रहमान खां की याद में एक हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसके संबंध में हमारे सहयोगी सुहेल जैदी ने बात की है हॉकी संघ रामपुर के सचिव मुख्तियार खां से।
1: रामपुर अपनी हॉकी के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हालात बने जिसकी वजह से यहाँ की हॉकी गर्त में चली गई, लेकिन एक बार फिर हॉकी को संवारने और सजाने के लिए कोशिश की जा रही है। रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम पर इम्तियाजुर रहमान खां, जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनकी याद में एक लीग हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। रामपुर की हॉकी और इस टूर्नामेंट और आने वाले टूर्नामेंट के बारे में हम बात करेंगे हॉकी संघ रामपुर के सचिव मुख्तियार खां से। तो मुख्तियार साहब, इस वक्त जो हॉकी है उसमें किस तरह से आप उसको करा रहे हैं, कौन कौन सी टीमें इसमें शामिल हैं?
2: इसमें इम्तियाज़ रहमान खां, जो डिस्ट्रिक्ट लीग हॉकी चैम्पियनशिप चल रही है, इसमें हमने ज़्यादातर जूनियर बच्चों को के लिए टूर्नामेंट कराए हैं, इस वजह से कि ये नर्सरी हमारी तैयार हो जाए और हमारे जनपद से लेकर मंडल तक और स्टेट तक हमारे बच्चे अच्छा खेलें, हॉकी खेलें, इस वजह से हम ये प्रयास कर रहे हैं। और रामपुर का एक हिंदुस्तान में और एक उत्तर प्रदेश में एक नाम था, हॉकी रामपुर के नाम से पहचानी जाती थी। और मैं अपने जो हॉकी प्रेमी हैं, जो सुनना है ये मेरी आवाज़, उनको ये बताना चाहता हूँ कि रामपुर में जितने हॉकी से स्पोर्ट्स कोटे में अपॉइंटमेंट हुए, शायद किसी स्टेट में नहीं होंगे। बड़े बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में हमारे लोग हैं, CRPF में, कस्टम में, रेलवेज में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और रेलवेज में, सारे लोग अपॉइंटमेंट हुए सिर्फ हॉकी की वजह से। तो एक रामपुर जो है, हॉकी एक इंडिया का तो नेशनल गेम है ही, मगर हॉकी रामपुर के हॉकी वाले इसको नेशनल गेम रामपुर का ही मानते हैं। तो हॉकी थोड़ी डाउन पे जा रही थी, तो इस बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की टीम नेशनल चैम्पियनशिप में जीती। उत्तर प्रदेश के जो हॉकी के संघ के जो अध्यक्ष हैं RP सिंह साहब और रजनीश मिश्रा हॉकी सेक्रेटरी, उन्होंने बड़े प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश की हॉकी को बढ़ाने के लिए, और उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्टों को निर्देश दिए हैं कि आप अपनी जूनियर प्रतियोगिता कराएं, और ताकि वो बच्चों नए अच्छे आएं और निकल कर आएँ और उत्तर प्रदेश के छात्रावास में जाएं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लेवल, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम अच्छा करें। तो ये सारा प्रयास चल रहा है। और अब जो ये टूर्नामेंट है, बच्चों को होंगे, उसके बाद में एक टूर्नामेंट हमारे यहाँ, मैं अभी हाल ही में महफूज रहमान खान बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे और हिंदुस्तान के एक अच्छे प्लेयर उनकी

0: ऐसा कैसे नहीं मिला, कोई ना देने वाला है ना लेने वाला, अपने आप ही करना है। जो लोग हैं, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, टूर्नामेंट करना है ताकि रामपुर का एक नाम चलता रहे, और रामपुर हॉकी से जाना जाता है, रामपुर का हॉकी में नाम जिंदा रहना चाहिए। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो जिस जगह पे भी डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छे प्लेयर दुनिया से चले गए, उनको याद रखना चाहिए, उनके उन लोगों को टूर्नामेंट कराना चाहिए उनके नाम से, ताकि एक तो नाम तो था ही उनका, मगर वो नाम जिंदा रहे। जितने भी जैसे हमारे मंडल में देखिए, बिजनौर है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, रामपुर है, इन लोगों को भी चाहिए कि जो तो अच्छे प्लेयर चले गए। मेरे रामपुर के में बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर चले गए, जफर साहब थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, मुमताज़ बाबुल ऐनी रेलवे गोरखपुर से खेलते थे, वो चले गए, महफूज रहमान खां चले गए, लड्डन खां थे, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, वो भी चले गए, तमाम अच्छे प्लेयर दुनिया से चले गए। तो कम से कम हम उनकी याद में एक टूर्नामेंट ही कर दें, जो बच्चे ये तो आने वाले बच्चे ये तो सोचें कि इन्होंने टूर्नामेंट कराया, वो कौन थे, उनकी हम फोटो लगाते हैं कि ये थे लड्डन चिदा, ये थे मुमताज़ बाबुल, ये थे महफूज रहमान खान, ऐसे लोगों का फोटो लगाते हैं तो वो बच्चे देखते हैं अरे यार बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो उन बच्चों को बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। अभी हमारे यहाँ अरशद अली खां हैं, इंडिया टीम से भी खेले, वो भी आते रहते। तो एक सीनियर प्लेयर में इकबाल अली बेग हैं, बहुत अच्छे प्लेयर, इंडिया टीम से उन्होंने टूर किया ऑस्ट्रेलिया, अरशद खान ने अफगानिस्तान टूर किया इंडिया टीम से, और इकबाल अली बेग इस वक्त सबसे बड़े प्लेयर अगर रामपुर में मौजूद हैं और सही हैं, इकबाल अली बेग साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बताते भी हैं, हमारे बच्चों को भी बताते हैं। तो अगर उस वक्त अजीत पाल सिंह नहीं होते तो ओलंपियन वो होते, वो क्योंकि अजीत पाल सिंह की इसकी वजह से कट गए। सन 1972 में वो इंडिया टीम में थे, अजीत पाल सिंह थे ओलंपिक में, लॉस एंजलिस ओलंपिक हुआ अमेरिका में, और उनका नाम कट गया, वो 70 में थे, 16 की टीम चली गई, ये उनके भाग्य ने साथ दे दिया। तो ऐसा भी हुआ, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे जो हैं बहुत कंपटीशन में रहे, अच्छे रहे प्लेयर। तो हमारा प्रयास यही है कि उन जैसे प्लेयर रामपुर में पैदा करें, अच्छे प्लेयर बनाएं, अच्छे खिलाएं। तो एक तो ये कि हमारा अब कोई दुनिया में रहा तो नहीं, हम भी चले जाएंगे, ये हमारे बड़े चले गए, तो कम से कम कोई याद करे कि कोई नर्सरी बनी थी, किसी ने बनाया। सब्स्टिट्यूट तो होना ही चाहिए हर एक आदमी का, एक आदमी का हर एक का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि अगर वो चला गया तो दूसरा उसकी तैयार हो जाए, या तो ये प्रयास है और आप उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। और आप लोगों की अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा और आप लोगों की सबके सपोर्ट मिलेगी, और जो हम चाहते हैं कि फैक्ट्रियाँ हॉकी को बढ़ावा देने के लिए स्पॉन्सर करें, उत्तर प्रदेश की हों या इंडिया की हों, ये करें तो हमारी हॉकी हॉकी बढ़ जाएगी। ध्यानचंद जैसा प्लेयर बना दें, सही शाहिद अली शाह मोहम्मद शाहिद जैसा प्लेयर बनाएं, जफर इकबाल जैसा बनाएं, मार्विन फर्नांडिस जैसा बनाएं, अशोक कुमार जैसा बने, ऐसे प्लेयर बने जो हिंदुस्तान के अच्छे, ये तो हमारे सितारे थे, मगर इन जैसा भी प्लेयर अब बन नहीं रहा जितने अच्छे ये प्लेयर थे। बहुत प्रयास है, पूरी इंडिया हॉकी इंडिया लगी है, प्रधानमंत्री जी की भी खेलो इंडिया जीतेगा इंडिया, मुख्यमंत्री जी की भी यही है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहे, रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की टीम जो है इस बार 7 प्लेयर इंडिया टीम में एशियन गेम में, एक रिकॉर्ड है। ये दोनों लोग हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आरपी सिंह साहब और रजनी मिश्रा जी, ये उनकी मेहनत से 7 लड़के इंडिया टीम में हैं, और वो इंडिया टीम से जाएंगे खेलने एशिया कप। तो हमारे 7 लड़के अगर इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आएंगे तो उत्तर प्रदेश के होंगे, तो हमारे छोटे बच्चे उनको देख के और जाएंगे ऊपर।
1: श्रोताओं, अभी थे हमारे साथ मुख्तार खां, जो कि हॉकी संघ रामपुर के सचिव हैं और हॉकी को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। अपने दोस्त सुहेल जैदी को दीजिए इजाजत।
2: आकाशवाणी रामपुर के खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप में आज इतना ही। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे खेल जगत की विभिन्न गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए अवधेश गौतम को दीजिए अनुमति।
3: स्पोर्ट्स राउंड अप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की थी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ ना कभी दूर, आपका अपना

0: आकाशवाणी रामपुर जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।
1: श्रोताओं, आपको बता दें अब से कुछ ही देर में आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो रामपुर शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपको डायल करना है 0595-2324-326 और आप सुन सकते हैं अपना पसंदीदा गीत। हमें आपके कॉल का रहेगा इंतजार।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
5: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
4: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
5: आपातकाल में साथ निभाए,
4: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
5: 112।
4: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
5: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
4: यदि चाहिए पुलिस सहायता
5: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
4: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
5: मिटाकर हर सस्पेंस को
4: डायल 112।
5: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
4: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
5: कॉल 112, एसएमएस करें या पैनिक बटन दबाएं,
4: या फिर भेजें ईमेल always use 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
5: जब घेरे कोई भी आपदा,
4: तुरंत मिले सहायता
5: डायल 112।
4: चिंता से पाएं छुटकारा,
5: पुष्पा झुकेगी नहीं,
6: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
3: हमारा अभिमान है
4: हमारी एकता,
3: हमारा मान है
4: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
3: हमारी शान है
4: इस एकता की सुदृढ़ता।
3: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बने।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
5: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपको उठाना है अपना फोन और डायल करना है 0595 2324 326।

0: कार्यक्रम हेलो रामपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार को कृति का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुन रहे होंगे आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को। तो आइए देखते हैं कि कौन है हमारे साथ जुड़ा हुआ आज पहली कॉल पे। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर, सबसे पहले रोहित कुमार जी, हमारा प्यार भरे नमस्कार।

0: नमस्कार, मेरी किससे बात हो रही है?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजिर गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: गफ्फार साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आप और आकाशवाणी परिवार में क्या हाल है?
0: सब बहुत अच्छे हैं, सब ऊपर वाले का करम है। और सुनाएं, आप परिवार में आपके सब कैसे हैं? और
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा, और बताएं थोड़ा कि आज आज इतना समय, वैसे तो आप बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे, हमेशा से ही आकाशवाणी से जुड़े हैं, आज आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: मूवी का नाम है ये रात फिर ना आएगी, और महेंद्र कपूर साहब की आवाज है और गाने के बोल है, मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको खुदा से मेरी जान जुदा होने न देगा। कुछ
0: अच्छा
1: सुनने वालों के नाम
0: जी
1: है,
0: जी बताएं बताएं।
1: सबसे पहले मेरी वाइफ है राजिया खान, सिमरन खान, इरफान खान, शमा परवीन, शाहिदा शाहनूर अंसारी, शबनम
0: जी
1: अब्बासी, मसूद हुसैन, रीना तमान, गुलक्का, आकाश रस्तोगी, सचिन पक्के बात से, अमीन और नासिर भाई रिक्शा वाले, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: चलिए, बहुत अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी मित्र, आपके परिवार के लोग हैं, वो सभी भी आप जैसे स्वस्थ हैं, वैसे वो भी स्वस्थ हों। और हमारे कार्यक्रम को उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी सुन रहे होंगे इस समय। तो ठीक है गफ्फार साहब, लीजिए। तो आपकी पसंद का ये गीत फिल्म ये रात फिर ना आएगी से महेंद्र कपूर के स्वरों में।
1: शुक्रिया।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रामपुर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है। हेलो रामपुर, हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन?
1: हम वहाँ से बोल रहे हैं, गांधी समाधि से, राजिया
0: जी। राजिया जी, बताएं कैसी हैं आप?
1: हाँ, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा, और आपके परिवार में सब कैसे हैं?
1: वही बहुत अच्छे हैं,
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं। और राजिया जी, बताएं आज कौन सा गीत सुनने के लिए आपने कॉल किया है?
1: वो इन्हीं लोगों ने, इन्हीं दुपट्टा मेरा,
0: इन्हीं लोगों ने, पाकिजा फिल्म से। तो कौन कौन कौन कौन है जो आपके आपके साथ सुनना चाहते हैं इसी गीत को?
1: वो सबसे पहले होंगी क्षमा परवीन और ऊंची मदनी सिंह, शारदा परवीन
0: जी,
1: और गुलस्तर इदरीसी
0: जी।
1: हाँ, यही सुनने वाले हैं।
0: अच्छा, चलिए रजिया जी, तो इन सभी लोगों के लिए और आपके लिए फिल्म पाकिजा से ये गीत।

0: श्रोताओं, हमसे हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो रामपुर।
1: हाँ हेलो रामपुर सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अच्छा लेते रहें, बहुत अच्छा लगता है। परिवार में कौन कौन है इशरत आपके?
1: सर हम 8 बहन भाई हैं, मम्मी हैं, पापा खत्म हो चुके हैं, 15-20 साल हो गए उन्हें।
0: अच्छा, तो रेडियो सब सुनना पसंद करते हैं या सिर्फ आप ही सुनते हैं?
1: सर सभी सुनते हैं,
0: सभी सुनना पसंद करते हैं।
1: मैं 20 साल से रेडियो सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं इशरत आप?
1: सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मेरे 8-9 जानवर हैं, उन्हें पाल लेता हूँ। साथ में आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ लगातार।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इशरत आप?
1: सर आज मूवी का नाम है हसीना मान जाएगी। सर मैं बहुत ही प्यारा सुनूंगे, बेखुदी में सनम उड़ गए जो कदम। सर आज के एलोरामपुर में एलो सॉन्ग प्ले कर देना, को सुनने वाले हैं।
0: जी बताएं कौन कौन सुनने वाले लोग हैं?
1: सर सबसे पहले ये है स्वाड से विजय राठौर, ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, साथ में आप और हम।
0: जी चलिए ठीक है इशरत,
1: थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। तो आप, आपके लिए, आपके सभी साथियों के लिए, श्रोताओं के लिए फिल्म हसीना मान जाएगी से ये गीत।

0: श्रोताओं, उम्मीद करता हूं आप सभी कार्यक्रम सुन रहे होंगे और प्रयास कर रहे होंगे कि आप कॉल करें और हम आपसे बात करें और आपका पसंदीदा गीत हम यहां से प्ले करें। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं। हेलो रामपुर।
1: हाँ हेलो रामपुर सर जी, आदाब।
0: आदाब, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेटाने से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: जी मोहम्मद कामिल साहब, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया। और बताएं आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? आपके साथ ही आपके
1: सर परिवार में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं सर।
0: बहुत अच्छा,
1: आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है। तो
1: जी
0: डेली प्रोग्राम सुनते हैं या सिर्फ हेलो रामपुर जिस दिन आता है उसी दिन सुनते
1: नहीं,
0: हैं?
1: सर डेली प्रोग्राम सुनते हैं सर, कुछ प्रोग्राम थोड़े मिस हो जाते हैं लेकिन प्रोग्राम सुनते रहते हैं आपके साथ।
0: प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
1: अनुरोध हो आपका पत्र
0: जी।
1: मिला हो युवाणी के अंदर प्रोग्राम आते सारे सुनते सर।
0: बहुत अच्छा। तो परिवार में कौन कौन है आपके?
1: सर परिवार में अम्मी है, पापा है और
0: जी
1: सिस्टर है और मैं हूँ सर।
0: अच्छा, तो आपके पापा जी भी रेडियो से जुड़े हैं?
1: जी जी
0: सुनते हैं पापा रेडियो?
1: सर पहले तो सर शुरुआत तो हमारे पापा ने की थी, उसके बाद तो हमने की है सर।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम आज भी सुनते हैं पापा जी आपके?
1: सर आज भी फोन इन प्रोग्राम भी सुनते हैं और आप पत्र मिला जरूर सुनते हैं सर।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आज आप बताएं कि कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कामिल?
1: सर एक फिल्म का नाम है सूर्या
0: जी।
1: और गाने के बोले प्यार क्या बनाया राम ने कोई आए मेरा दिल थाम लिया, इसी टाइप के बोले सर ये सॉन्ग सुनवा देना
0: जी बिल्कुल। तो
1: और साथ में कुछ सुनने वाले सर।
0: हाँ बिल्कुल, नाम ले उन सुनने वालों के।
1: मोहम्मद तालिब परवेज, बसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मीसुर रहमान, यही सब सुनना चाहेंगे सर।
0: चलिए बहुत अच्छा है। तो आप सबके लिए फिल्म सूर्या से आइए सुनते हैं गीत।

0: कार्यक्रम में अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर
0: जी। हेलो रामपुर, कौन बात कर रहे हैं? जी पनीरलाल सागर जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ मनोज बोल रहे हैं।
0: जी जी जी बताएं पनीरलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप तो ठीक हैं?
0: जी जी एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। आप बताएं घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? अच्छा तो पूरा परिवार बैठ के सुन रहा है या आप अकेले बैठ के सुन रहे हैं इसे? पूरा परिवार सुनता है। चलिए बहुत पुराने श्रोता हैं आप पनीरलाल जी, और बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपका फोन आता है और आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। आज कौन से फिल्म का गीत सुनना चाह रहे हैं? आज
1: फिल्म

0: क्या बोल रहे हैं,
1: जी
0: मेरे पास आओ मुझे अक्सर मिलाओ।
1: अच्छा, संघर्ष फिल्म से आप गीत सुनना चाहते हैं, तो कौन कौन है और श्रोता जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को?
0: हमारे घर में है तो हमारे जो आशीष कुमार हैं, हमारे टीम है हितेश कुमार सागर हैं,
1: जी
0: और देखो राजेश कुमार वर्मा हैं,
1: जी
0: जो भी भारती हैं, एकता भारती है, दीपा भारती है, ममता चौधरी हैं और अमृति भारती हैं,
1: जी
0: और अलग शगुन ऑफिसर जी।
1: चलिए बहुत अच्छा पन्नीलाल जी, तो लीजिए आपके लिए और आपके अपनों के लिए हम फिल्म संघर्ष से इस गीत को यहाँ से प्ले करते हैं।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रामपुर। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो रामपुर, हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम अपोस्ट वक्तेना डिस्ट्रिक्ट बदल रही हूँ, तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विमल ठाकुर जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आकाशवाणी रामपुर में मेरा काफी अंतराल के बाद आज फोन लगा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों के यहाँ से प्रोग्राम आते हैं तो दिल और भी खुश हो जाता है।
0: चलिए,
1: खुशी के चंद मौके पे मैं आपको दो लाइनें पेश कर सकता हूँ, आपकी इजाजत हो तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ना गीत लिख रहा हूँ ना गजल लिख रहा हूँ, ना गीत लिख रहा हूँ ना गजल लिख रहा हूँ, ना मोहब्बत भरी मैं नजर लिख रहा हूँ। कुछ लिखता हूँ तो लोग समझ लेते हैं शायरी, उसको मैं अपनी जिंदगी का कुछ सफर लिख रहा हूँ।
0: अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। आप तो कहते हैं, तो ये आपने खुद लिखा है या किसी की नज्म जो है ये आपने पढ़ी है अभी, जो ये आपने खुद से लिखी
1: सर,
0: है?
1: जी सर, मैं छोटे छोटे चंद टुकड़े मिलाकर हर शायरी को पूरा करने की कोशिश करता हूँ और वो शायरी आकाशवाणी रामपुर या नजीबाबाद हो, जितने भी प्रोग्राम सुनता हूँ हर किसी से बोलने की कोशिश करता हूँ।
0: भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस चीज़ को कायम रखिए अपने अंदर, बहुत अच्छा है। देखिए, लिखने का शौक ऊपर वाला जो है सबको नहीं देता, और आपको दिया है, और आपको जो है वो स्किल भी दिया है, वो कौशल भी आपको दिया है, तो बड़ी बड़ी सुंदर बात है। तो लिखते रहिए इसी प्रकार से। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बिमल आप?
1: जब आपकी आवाज हमारे पास आ रही है और तमाम श्रोताओं के बीच गूंज रही है तो मूवी का नाम रहेगा आंदोलन, और इसमें बेहतरीन सॉन्ग में आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आयुष मुलाकात के बाद ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। तो कुछ नाम बोल सकता हूँ अगर आप?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बोलें।
1: सबसे पहले हमारे सिस्टर रहेंगी रीना जी, उसके बाद हमारे साले रहेंगे राजभान, मेरी वाइफ सरता, शुभ लव गुनगुन रामपुर से, अहमद जी जी दिव्यांशु यादव खेर की बिजनौर से, और जितने भी सुनने वाले श्रोता सभी को ये गीत डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए ठीक है विमल ठाकुर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस खुशी से आपने बात करी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और आप और आपके अपनों के लिए। आइए सुनते हैं हम सभी फिल्म आंदोलन से ये खूबसूरत सनगमा।
1: थैंक यू सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम में अगले कॉलर हमसे जुड़ गए। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: अंकल जी, आदाब।
0: आदाब,
1: कैसे हैं सर आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं चक्रवर्त बात कर रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: सर कहते हैं कि मैं बागों की बुलबुल हूँ, सभा में उड़ना काम है मेरा। मैं बागों की बुलबुल हूँ, सभा में उड़ना काम है मेरा। हिंदू मुसलमान एक है, लोगों को यही पैगाम है मेरा। और चांद सितारे सुनाते हैं मुझको नगमा, इसीलिए तो शमा परवीन नाम है मेरा।
0: हाँ शमा परवीन जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप?
1: सर मैं अच्छी हूँ। आज आपसे मेरी काफी दिनों के बाद बात हो रही है, करीब
0: जी,
1: एक साल के बाद,
0: जी,
1: और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर।
0: नहीं, मुझे भी
1: और
0: बहुत
1: सर
0: अच्छा लग रहा
1: आपकी
0: है
1: आवाज और आपका बॉडी का अंदाज और
0: जी।
1: प्रोग्राम में आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शमा जी। तो आप इतना सुंदर बोलती हैं, तो ये मतलब आपकी हॉबी है?
1: जी सर, मैं खुद से ही शायरी लिखती हूँ
0: बहुत
1: और
0: सुंदर।
1: करीब मेरी 5,000 शायरी लिखी रखी है। और मैं नाम से जोड़ती हूँ शायरी, ये मैं अपने नाम के मायने से करती हूँ सर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपके परिवार में और कोई भी शायरी का शौक रखता है आपके अलावा?
1: नहीं सर, मेरी शायरी सब सुनते हैं और इस टाइम मेरे पापा और मेरी छोटी सिस्टर आपको सुन रही हैं सर।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। तो
1: और
0: शमा
1: सर मैं एक
0: जी
1: आरजे भी हूँ और
0: जी
1: मैंने आकाशवाणी रामपुर से बहुत कुछ सीखा है।
0: चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। और आज क्या क्या सुनना चाहेंगे शमा आप?
1: आज सर मूवी का नाम

0: है और बरसात और गीत के बोल रहेंगे नहीं हो नहीं सकता। सर सोचा मुझसे जुड़ना चाहिए तो जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है रेडियो डीएसटी वर्ल्ड, हर दिल की धड़कन आगे देर के साथ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
1: चलिए और भी श्रोता हैं आपके अलावा जो इस गीत को सुनना चाहते हैं, आप किसी का नाम लेना चाहती हैं?
0: सर मैं सभी श्रोताओं को डेडिकेट करूंगी, साथ में आपको भी शामिल करूंगी और जाते जाते दो लाइनें कहना चाहूंगी सर
1: जी।
0: सर कहते हैं कि पायल बनके हम आपके ख्यालों में खनखनाएंगे, पायल बनके हम आपके ख्यालों में खनखनाएंगे, गजल बनके हम आपके दिल में गुनगुनाएंगे और आपके होठों पे लिख देंगे हम अपना नाम, फिर देखेंगे आप हमको कहाँ तक भुलाएंगे।
1: भाई वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इसी तरीके से आप लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
0: मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपको
1: बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा ठीक है, आप इसी प्रकार से खुश रहिए, ऐसे ही लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए और आपके अपनों के लिए फिल्म बरसात से ये गीत।
0: ओके सर, अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।

0: हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो रामपुर।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ सर जी।
0: जी मकसूद साहब, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं आकाशवाणी में?
0: मैं एकदम ठीक हूँ, आकाशवाणी परिवार पूरा बहुत अच्छा है। और मकसूद जी, आज आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: सर एक फिल्म है लव इन टोकियो, उसमें लता जी का बहुत ही प्यारा गीत है, सायनारंग सायनारंग बादा निभाऊंगी मैं सायनारंग।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है हम आपको ये वाला गीत सुनाते हैं।
1: सुनने वाले थे साथ में।
0: जी बिल्कुल बताएं, कौन कौन है?
1: डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, रजा हुसैन है, गफ्फार खान साहब है, मोहम्मद इशरत है, मुकेश है, और साथ में आप भी तो है सर, आपने सुनेंगे?
0: बहुत सुंदर, बिल्कुल मैं भी सुनूंगा भाई, मेरा भी पसंदीदा ये गीत है। तो चलिए हम सभी के लिए आइए सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो से ये खूबसूरत नगमा।
1: थैंक यू सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हमसे हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर सर
0: जी। हेलो रामपुर, कौन बात कर रहे हैं
1: जी। सर कस्बा सीरियल से गुड्डू बिद्री से बोल रहे हैं सर।
0: जी गुड्डू जी, बताएं कैसे हैं आप?
1: सर बढ़िया है, आप सुनाइए सर, आकाशवाणी रामपुर में कैसे मिल जाएगा?
0: सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले का करम है। और बताएं गुड्डू जी, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: सर कुल्ली पिक्चर का सुना दीजिए सर, मुबारक सबको हज का महीना सर, ये इस टाइम हज का महीना चल रहा है सर।
0: जी जी जी जी,
1: मुबारक मौके पर सर ये गीत सुना दीजिएगा सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और श्रोता भी हैं आपके साथ जो सुनना चाहते हैं इस गीत को?
1: जी अरे सर मेरे पुराने लिसनर हैं, देखिए अगर सुनते हो मेरी आवाज तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं सर।
0: चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो
1: जी,
0: सभी श्रोताओं के लिए जी
1: जी सर, और सब बढ़िया है सर?
0: जी सब ठीक है। ठीक है गुड्डू जी, आपके लिए और आपके सभी मित्रों के लिए आइए सुनते हैं फिल्म कूली से ये खूबसूरत सनकमा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और मुझको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
1: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. Is vision mein antarrashtriya kanoon ka palan avashyak hai. Brother, Bharat har paristhiti mein UAE ke saath kandhe se kandha milakar khada hai.
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed

गीगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ उपस्थित होंगे।